हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हिसार केंद्र से एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। आज शुक्रवार है। रक संवत 1948 की वैशाख माह की 18वीं तिथि। तदनुसार 8 मई सन 2026। इस समय सुबह के 5:58 और 42 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा मंगल ध्वनि के साथ अब आरंभ होती है।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हिसार केंद्र से एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों के बाद आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई से अनुप्रसारित कार्यक्रम। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग तीन गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। अधिक खरीद, अच्छी फसल और किसानों की पर्याप्त सहायता से खाद्य सुरक्षा, किसानों के हित तथा सुरक्षित भविष्य के लिए देश की प्रतिबद्धता मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की खाद्य सुरक्षा लगातार बढ़ रही है। इस बीच सरकार ने कहा है कि 6 मई तक मंडियों से 78,96,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 75,63,000 मीट्रिक टन था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि कम आवक के बावजूद इस साल गेहूं की खरीद पिछले साल से बेहतर है। मंत्रालय ने यह स्पष्टीकरण उन खबरों के जवाब में दिया है जिनमें दावा किया गया था कि मंडियों में गेहूं की अधिकता जैसी स्थिति है। मंत्रालय ने कहा कि पंजाब में अब तक लगभग 122 लाख मीट्रिक टन गेहूं मंडियों में आया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग और उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में निर्यात और निवेश बढ़ाने, नए निर्यातकों के लिए आवश्यक अवसर तैयार करने और वैश्विक बाजारों में नई संभावनाएं तलाशने पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता जाएंगे। वे नव निर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसके बाद पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। समारोह की तैयारियों के लिए गुवाहाटी में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। उधर तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलक वेत्री कड़गम पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों की आवश्यकता है। विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय की टीवीके पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं। इस बीच केरल में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का एक बड़ा अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लाम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित हैं। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोक दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज

0: जल डमरू मध्य जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने पर बाध्य होना पड़ा है। दो अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। आकाशवाणी की स्थापना की 9वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया है। लगभग 3.5 किलोमीटर की यह दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में ही संपन्न होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य इस मैराथन में भाग ले सकेंगे। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।
2: आज का चिंतन।

आचार्य चाणक्य का कथन है कि अच्छे और ज्ञानी लोगों के साथ रहें, क्योंकि संगति का असर हमारे व्यक्तित्व पर पड़ता है। लीजिए अब सुनिए भक्ति रचनाएं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए आज दिनभर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण झरोखा के अंतर्गत। सुबह अब से थोड़ी देर बाद 6:35 पर श्री रामचरित मानस गान सुनेगा भाग 182। सुबह 6:45 और शाम 6:45 पर सुनेगा संगीत सरिता कार्यक्रम। इसके अंतर्गत सुनिए श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें। कलाकार हैं गायिका विदुषी कल्पना छोकरकर। इस श्रृंखला की 6वीं कड़ी आज सुनेगा। सात बजे से भूले बिसरे गीत कार्यक्रम। 7:30 पर हम है राही प्यार के। सुबह 8 बजे समाचार प्रभात और 8:15 पर सुनिए वंदे मातरम एक जय घोष। लेखक मिलिंद सबनीस, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए भाग 27।

9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित होगा फिल्मकार प्रकाश मेहरा पर। 10 बजे पिटारा के अंतर्गत हेलो फरमाइश, 11 बजे सुनिए रंग तरंग, 12 बजे हिंदी समाचार, 12:05 पर यादों की महफिल, 1 बजे सुरीला सफर और 2 बजे वंदे मातरम, 1 जय घोष। लेखक है मिलिंद सबनीस, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक, भाग 27 आज। पर सदाबहार नगमे, 3 बजे सखी सहेली, 4 बजे सुनिए पिटारा के अंतर्गत गीतों भरी कहानी। गीतों भरी कहानी में आज सपने में ठिठका इंतजार, लेखिका स्वर और स्वर ममता सिंह का है, संपादन सहायक काजल बदरंगी, प्रस्तुतकर्ता जुब्बार खान। 5 बजे छाया गीत, 5:30 पर तराने नए पुराने, 6:30 पर झरोखा के अंतर्गत सुनेगा कार्यक्रम विवरण। शाम 6:35 पर संध्या रंजन, 6:45 पर संगीत सरिता, 7 बजे फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला सुनिएगा, 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत गुलदस्ता, हवा महल में रात 8 बजे सुनिए नाटिका रिजल्ट का चक्कर, लेखक हरीश दीक्षित, निर्देशक गंगा प्रसाद माथुर, 8:15 पर चित्रलोक, 8:45

इस मिनट पर समाचार संध्या 9 बजे आपके लिए 9:30 पर आज के फनकार। आपको फिर से बता दें, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित होगा फिल्मकार प्रकाश मेहरा पर। 10 बजे छायागीत 10:30 पर ढलती जाए रात और 11 बजे सुनिए रंग तरंग। आप सुन रहे थे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

श्री राम लक्ष्मण तथा सीता को वन की मात्र एक झलक दिखाकर लौटा लाने में जैसा राजा दशरथ ने चाहा था सुमंत्र सफल नहीं हुए। शोक और संताप की मूर्ति सुमंत्र महाराज के सम्मुख उपस्थित होकर उस करुण दृश्य का वर्णन कर रहे हैं। श्री राम ने कहला भिजवाया है कि पिता के अनुग्रह से वन में उन्हें सभी प्रकार से सुख मिलेगा। पिता की आज्ञा का पालन कर वे सकुशल वापस लौट आएंगे। नगरवासियों के लिए उन्होंने विनय पूर्वक अनुरोध किया है कि वही लोग उनके परम हितैषी होंगे जो सब प्रकार से महाराज को सुखी और संतुष्ट रखेंगे। प्रिय अनुज भरत के लिए संदेश है कि राज्याभिषेक हो जाने के बाद भी वे नीति के मार्ग पर चलकर मन वचन और कर्म से प्रजा का पालन और माताओं का सम्मान करें।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती मुंबई से अनुप्रसारित कार्यक्रम FM बैंड 102.3 MHz पर। यह है आकाशवाणी का हिसार केंद्र। सुबह के 6:45 हुए हैं। आइए जानते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में।

अब से कुछ ही देर में यानी कि सुबह 6:55 पर आप सुनेंगे संस्कृत समाचार, 7 बजे राष्ट्रीय हिंदी समाचार सुनिएगा, 7:05 पर अंग्रेजी समाचारों का समय रहेगा। ये सभी समाचार अनुप्रसारित होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। सात बजकर 10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम लोकरंग, 7:40 पर सुप्रभात कार्यक्रम सुनिएगा। आठ बजे समाचार प्रभात आप सुनेंगे और 8:15 पर अंग्रेजी समाचारों का समय रहेगा। ये समाचार अनुप्रसारित होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

8:30 पर विविध भारती मुंबई से अनुप्रसारित कार्यक्रम सुनिएगा। 9 बजे समय रहेगा कार्यक्रम आज की फनकार का। ये कार्यक्रम अनुप्रसारित होगा विविध भारती के मुंबई केंद्र से। दस बजे आप सुनेंगे आप सभी का चहेता कार्यक्रम नमस्ते हिसार। ग्यारह बजे सुनेंगे आप रंग तरंग कार्यक्रम, अनुप्रसारण विविध भारती के मुंबई केंद्र से किया जाएगा। 12 बजे सुनिएगा विविध भारती के मुंबई केंद्र से ही अनुप्रसारित कार्यक्रम यादों की महफिल। दिन में 1:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से। एक बजकर 10 मिनट पर सुनिएगा विविध भारती की गीतमाला, अनुप्रसारण विविध भारती के मुंबई केंद्र से। 2 बजे सुनिएगा विविध भारती मुंबई केंद्र से ही अनुप्रसारित राष्ट्रीय अंग्रेजी समाचार। 2:15 पर सुनेंगे आप विविध भारती के मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित राष्ट्रीय हिंदी समाचार। 3 बजे सुनेंगे आप सखी सहेली कार्यक्रम, अनुप्रसारण विविध भारती के मुंबई केंद्र से किया जाएगा। 4 बजे समय रहेगा गीतों भरी कहानी का। ये कार्यक्रम भी अनुप्रसारित होगा विविध भारती के मुंबई केंद्र से। 5 बजे सुनिएगा अपना चहेता कार्यक्रम हेलो हिसार। शाम 6 बजे हिंदी समाचार सुनेंगे आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसार। 6:05 पर कार्यक्रम रूपरेखा के अंतर्गत सुनेंगे आप हमारे केंद्र

0: रात्रि 8 बजे पंजाबी लोकगीत कार्यक्रम आप सुनेंगे। 8:30 पर खुला आकाश कार्यक्रम का समय रहेगा। 8:45 पर सुनेंगे आप राष्ट्रीय हिंदी समाचार। अनुप्रसारण विविध भारती के मुंबई केंद्र से किया जाएगा। रात्रि 9 बजे राष्ट्रीय अंग्रेजी समाचारों का समय रहेगा। अनुप्रसारण विविध भारती के मुंबई केंद्र से किया जाएगा। रात्रि 9:15 से सुनेंगे आप विविध भारती मुंबई से अनुप्रसारित कार्यक्रम। रात्रि 10 बजे संदेश आपके गीत हमारे कार्यक्रम आप सुनेंगे और 11 बजे समय रहेगा राष्ट्रीय हिंदी समाचारों का। अनुप्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: अर्ज किया है, राजे ने हीर को कबूतर से खत भिजवाया।

0: रांझे को समझाया।
1: अरे बुद्धू, मैसेज ही भेजना था तो ईमेल से क्यों नहीं भिजवाया?
2: RADIOHISAR यानी radiohisar@gmail.com पर।
1: आप भी भेजिए अपने मैसेज ईमेल के माध्यम से अपने पसंद के गाने सुनने के लिए कार्यक्रम ई फरमाइश में,
2: हर मंगलवार शाम 5 बजे
1: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर। हिंदुस्तान जमीन है सितारों की,
3: अगर तुम्हारी आरजू एक कमीज है तो सारी जिंदगी इसी तरह जब्त करना होगा।
2: एक से बढ़कर एक उम्दा फनकारों की,
1: कोई साहित्य में सर्वश्रेष्ठ है,
4: न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता,
2: तो कोई विज्ञान में अद्वितीय है,
5: विल यू बी रिमेम्बर्ड एज अ ग्रेट साइंटिस्ट सेड थॉमस अल्वा एडिसन,
1: कोई कला में उत्कृष्ट है,
2: तो कोई संगीत का शिरोमणि,
1: किंतु कोई है जो इन सब को ले आया है आपके लिए, आपके घर में, आपके बेहद करीब।
2: कार्यक्रम एक शख्सियत,
1: हर सोमवार शाम 5 बजे
2: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर। बच्चों की एक अलग दुनिया होती है,
6: चकरकची चाचो चकलो रम गंडो वंडो लकरकटम,
2: और यदि आपको चाहिए इस दुनिया में एंट्री तो ढूंढिए अपने भीतर छुपे बच्चे को।
7: एरोप्लेन एरोप्लेन अप इन द स्काई, वेयर आर यू गोइंग, फ्लाइंग सो हाई, ओवर द माउंटेन, ओवर द सी, एरोप्लेन एरोप्लेन प्लीज टेक मी।
1: बचपन की मुस्कुराहटों और गुदगुदाहटों से भरा कार्यक्रम बाल सभा,
2: हर रविवार सुबह 10:30 पर
1: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।

अभी आपने जाने हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। यह है आकाशवाणी का हिसार केंद्र। सुबह के 6:55 होने को हैं। अब से कुछ ही पलों के बाद आप सुनेंगे संस्कृत समाचार। अनुप्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। कृपया अनुप्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग तीन गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। अधिक खरीद, अच्छी फसल और किसानों की पर्याप्त सहायता से खाद्य सुरक्षा, किसानों का हित तथा सुरक्षित भविष्य के लिए देश की प्रतिबद्धता मजबूत हो रही है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय आज कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में उद्योग परामर्श बैठक आयोजित कर रहा है। इसमें 30 से अधिक उद्योग प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के बारे में विचार विमर्श करेंगे। इंडिया एआई और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से अपनाने के लिए नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि ये साझेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और व्यापक अनुप्रयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग और उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में निर्यात और निवेश बढ़ाने, नए निर्यातकों के लिए अवसर तैयार करने और वैश्विक बाजारों में नई संभावनाएं तलाशने पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता जाएंगे। वे नवनिर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसके बाद पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। उधर असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। समारोह की तैयारियों के लिए गुवाहाटी में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलगा वित्री कड़गम पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों की आवश्यकता है। विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय की टीवी के पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं। केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल अबुधाबी में भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच हुई त्रिपक्षीय बैठक में भाग लिया। बैठक में संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री रीम अल हाशमी और फ्रांस के विदेश कार्य महासचिव मार्टिन ब्रायंस शामिल हुए। विदेश मंत्रालय ने बताया कि तीनों देशों ने स्पष्ट समय सीमा में भागीदारी मजबूत करने की कार्य योजना पर सहमति व्यक्त की। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लैम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोक दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। दो अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया है। लगभग 3.5 किलोमीटर की ये दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में संपन्न होगी। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला

माटी के गीत लोक दुना पे गांव शहर में गुंजन लाग गए। हरियाणवी फिल्मा के गीता ने हरियाणवी सिनेमा को नई ऊंचाई दी

0: कल्याणवी बोली की गीता में वो मिठास, वो सादगी, वो बानगी, इसको बनाकर रखें, सहेज कर रखें, सुरक्षित रखें।
1: इसी के साथ आज का हरियाणवी लोकरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ। सारे बहन भैया ने राम राम।

0: घरेलू उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: नया बेहतर है क्योंकि तुम ही हो,
2: किंतु पुराना बेहतरीन।
1: नया श्रेष्ठ है
2: केसरिया तेरा, किंतु पुराना श्रेष्ठतम।
1: नया उत्कृष्ट है
2: तेरी किंतु पुराना अनमोल।
1: नया अनूठा है
2: किंतु पुराना अनुपम।
1: सुनिए 80 और 90 के दशक के बेहतरीन नगमे,
2: कार्यक्रम ओल्ड इज गोल्ड में
1: हर बुधवार शाम 5 बजे
2: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।

0: का दिल टूटा हुआ है।
1: दिल के टुकड़े टुकड़े करके,
2: या आप प्यार में हैं?
1: पहला पहला प्यार है।
0: क्या आप अपने पुराने दिनों में लौटना चाहते हैं?
1: कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन।
2: तो मैसेज कीजिए 9729253272 पर,
0: क्योंकि हमारे पास है हर गाना आपके मूड और सिचुएशन के हिसाब से।
2: कार्यक्रम संदेश आपके गीत हमारे, हर मंगलवार और शुक्रवार रात 10 बजे
0: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोकरंग FM बैंड 102.3 MHz पर। यह है आकाशवाणी का हिसार केंद्र। अब समय है आप सभी के चहेते कार्यक्रम सुप्रभात का। सुप्रभात कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को आप सभी की अपनी रेडियो हम सफर प्रीति ढिंडोरिया का नमस्कार। श्रोताओं, आज है 8 मई सन 2026 वैशाख माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि। नक्षत्र श्रवण है, योग शुभ योग। सूर्योदय का समय लगभग 5:35 पर रहा और सूर्यास्त का समय लगभग शाम को 7:05 पर रहने की संभावना है। धैर्य और मेहनत से किया गया हर प्रयास एक दिन सफलता का सुंदर फूल बनकर खिलता है। बात करें मौसम की तो आज हिसार में गर्मी का असर बना रहेगा, लेकिन बीच बीच में हल्के बादल राहत दे सकते हैं। अधिकतम तापमान लगभग 39 डिग्री सेल्सियस से 41 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है और न्यूनतम तापमान लगभग 26 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावनाएं हैं। हल्की से मध्यम गर्म हवाएं चल सकती हैं। दोपहर के समय धूप तेज रहेगी, इसलिए बाहर निकलते समय पानी साथ रखें और सिर ढक कर निकलें। मौसम विभाग के अनुसार हरियाणा में कुछ इलाकों में आंधी या हल्की बारिश की संभावना भी बनी हुई है। दिन में ज्यादा पानी और नींबू पानी पिएं। तेज धूप में खाली पेट बाहर न निकलें। बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें।

0: वर्मा जी को चाहिए सुबह सुबह ताजा खबरें।
1: और मिसेज वर्मा को सिर्फ संगीत।
2: मैं अकेली घूमूं अकेली।
0: दादा दादी को मिल जाए कोई ऐसा जो उनके साथ उनके समय की बातें करे।
3: अभी न जाऊं छोड़ कर।
1: और बच्चों के लिए जरूरी है ज्ञान।
0: कैसा हो यदि सब कुछ मिले एक ही जगह एक ही समय पर?
1: सुनिए संपूर्ण पारिवारिक कार्यक्रम नमस्ते हिसार
0: रोज सुबह 10 बजे से 11 बजे तक
1: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।
4: न जायति मिर्यति वा कदाचित नाय भूत्वा भविता वा न भूय। भगवत गीता के अध्याय 2 का श्लोक 20 है ये। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। शरीर बदल जाता है लेकिन आत्मा हमेशा अमर रहती है। श्रोताओं, इससे हमें ये सीख मिलती है कि मुश्किल समय में भी कभी भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि आत्मा अजर अमर है। उसी तरह से आपकी कोशिशें भी अजर अमर हैं। जहां चाह वहां राह। एक छोटे से गांव का लड़का रोज कई किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाता था। घर की आर्थिक स्थिति भी कमजोर थी लेकिन पढ़ने की लगन बहुत थी। उसने कभी हार नहीं मानी और बाद में वही लड़का मेहनत के दम पर बहुत बड़ा अधिकारी बना। ये बात हमें सिखाती है कि कभी भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। परिस्थितियां चाहे कोई भी हो, कैसी भी हो, क्योंकि ये जीवन है और जीवन में विपरीत परिस्थितियां आती जाती रहती हैं। बस हमें हमारा धैर्य बनाए रखना है, हमें हमारी इच्छाएं बनाए रखनी है, हमें हमारी कोशिशें जारी रखनी है। अगर हम ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं से राह अपने आप निकल आती है, क्योंकि जहां चाह वहां राह। अगर मन में सच्ची इच्छा और मेहनत हो तो मुश्किल रास्ते हमेशा आसान बन जाते हैं।

है, क्योंकि छोटी छोटी सी कोशिशें ही आपका बड़ा सागर बनती हैं। जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है, वैसे ही जो छोटी छोटी कोशिशें हैं, छोटी छोटी बचत है, वो एक दिन बहुत बड़ी सफलता बन जाती है।

तो दोस्तों, जीवन की ये छोटी छोटी कहावतें, छोटी छोटी कोशिशें हमें बहुत बड़े जीवन के सूत्र सिखा जाती हैं। कभी मेहनत का महत्व तो कभी एकता की ताकत, तो कभी अच्छे कर्मों का फल। हर कहावत अपने भीतर अनुभव और सीख का खजाना छुपाए होती है। अच्छे विचार और अच्छे कर्म ही जीवन को सुंदर बनाते हैं। इसी सकारात्मक सोच के साथ आज के सुप्रभात कार्यक्रम से दीजिए इजाजत। FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हिसार केंद्र से। सुबह के 8 बजे हैं। अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात, आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित।

0: में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी। सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर वीसी के सीपीआई और सीपीआईएम के विधायकों की आज बैठक। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने मुंबई में व्यापार फोरम में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत और वियतनाम की भूमिका पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के उपायों की समीक्षा की। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोकी। और आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने डकवर्थ लुइस नियम से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के दौरान पार्टी विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यू टाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा, जिसमें विधायक दल के नेता का औपचारिक चयन किया जाएगा। अमित शाह केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में बैठक में मौजूद रहेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप अंदाज गुप्ता, कोलकाता।
0: उधर तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलग वित्री कड़गम टीवीके को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरुथाईगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
2: AIADMK और DMK के विधायक दल की बैठक का नतीजा भी महत्वपूर्ण है। DMK प्रवक्ता TKS एलेंगोवन ने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी का यह कर्तव्य है कि वह अपना बहुमत साबित करे, और साथ ही यह भी कहा कि DMK प्रमुख MK स्टालिन कोई संवैधानिक संकट नहीं चाहते। गौरतलब है कि विधायक दल की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए पुद्दुचेरी AIADMK के सचिव ए अनबाजगन ने कहा कि फैसला लेने का अधिकार पार्टी के महासचिव को दिया गया है। उन्होंने बहुमत के मुद्दे पर राज्यपाल के फैसले की सराहना की और कहा कि मौजूदा राजनीतिक अनिश्चितता में प्रत्याशित फैसले भी हो सकते हैं। उन्होंने मीडिया को यह भी बताया कि उनके नेता स्टालिन की चुनाव में हार से दुखी हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: उधर असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के लिए विभिन्न उपायों की समीक्षा की है। उन्होंने भारतीय खाद्य और कृषि चैंबर के अध्यक्ष डॉक्टर MJ खान के साथ बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि बैठक में किसानों के जीवन को बेहतर बनाने, देश की कृषि व्यवस्था को मजबूत करने और अफ्रीकी क्षेत्र के साथ सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि सहयोग बढ़ाने के नए उपायों पर भी विचार विमर्श हुआ। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। इस बीच सरकार ने कहा है कि 6 मई तक मंडियों से 78,96,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 75,63,000 मीट्रिक टन था। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय आज कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में उद्योग परामर्श बैठक आयोजित कर रहा है। 30 से अधिक उद्योग प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के बारे में विचार विमर्श करेंगे। इंडिया एआई और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से अपनाने के लिए नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि यह साझेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और व्यापक अनुप्रयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का महत्वपूर्ण अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित हैं। वर्ष 2016 के बाद से ये संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारत और वियतनाम के प्रौद्योगिकी तथा विनिर्माण क्षेत्र के उद्यमी, निवेशक और पेशेवर एशिया के भविष्य को आकार देंगे।
4: इंडिया एंड वियतनाम ऑफर समथिंग इम्पोर्टेंट।
5: भारत और वियतनाम दुनिया को कुछ महत्वपूर्ण चीजें देते हैं, एक भरोसेमंद साझेदारी, स्थिर शासन, आर्थिक गतिशीलता और दीर्घकालिक रणनीतिक विश्वास। एशिया का भविष्य भारत और वियतनाम जैसे देशों के उद्यमियों, इनोवेटर्स, निवेशकों, टेक्नोलॉजी लीडर्स, निर्माताओं और युवाओं के मिलकर काम करने से बनेगा।
4: इंडिया एंड वियतनाम वर्किंग टुगेदर।
3: सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच पर रोक लगा दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अब अपना ध्यान राजनयिक माध्यमों पर केंद्रित कर दिया है। उन्होंने ईरान के साथ हाल की बातचीत को संतोषजनक बताते हुए किसी स्थायी समाधान निकलने की आशा व्यक्त की।
6: ईरान अब युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका द्वारा 14 सूत्री प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने संवाद और कूटनीति का आह्वान किया है। प्रस्तावित ढांचे के अंतर्गत शत्रुता को विराम दिया जाएगा और अंतिम वार्ता के लिए 30 दिन की अवधि दी जाएगी। हालांकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित प्रमुख मुद्दों को बाद की वार्ताओं के लिए छोड़ दिया जाएगा। कूटनीतिक स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है क्योंकि ईरान ने सार्वजनिक रूप से किसी भी शर्त को स्वीकार करने की पुष्टि नहीं की है और ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद वगैर कलिबाफ ने कुछ मीडिया रिपोर्टों को फर्जी बताकर खारिज कर दिया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
3: अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए वैश्विक टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमरीकी

0: संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया। लगभग 3.5 किलोमीटर की ये दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में संपन्न हुई। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन तथा दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों ने इस मैराथन में भाग लिया। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी। यह देश का सर्वाधिक विश्वसनीय प्रसारण माध्यम है, जो विभिन्न भाषाओं में समाचार बुलेटिन के अलावा संगीत, मनोरंजन और जन उपयोगी कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। आईपीएल क्रिकेट में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। और अब मौसम की जानकारी। मौसम विभाग ने आज केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, तटीय कर्नाटक और रायलसीमा में आज गरज के साथ बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है। मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: जी विशाल, हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में सरकार गठन की प्रक्रिया पर आज के अधिकांश समाचार पत्रों की नजर है। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है, तमिलनाडु में विजय के लिए बहुमत का क्लाइमेक्स बाकी। राज्यपाल ने कहा टीवीके के पास पर्याप्त विधायक नहीं। पार्टी प्रमुख विजय ने मांगा लेफ्ट दलों से समर्थन। दैनिक जागरण ने लिखा है राज्यपाल ने भंग की बंगाल विधानसभा। चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की करारी हार के बावजूद भी ममता बनर्जी ने नहीं दिया इस्तीफा। अमर उजाला ने लिखा है पश्चिम बंगाल में पहली बार बन रही भाजपा की सरकार, शपथ ग्रहण समारोह कल। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा पर पंजाब केसरी संपादकीय में लिखता है इस हिंसा ने राजनीति के रक्त चरित्र को एक बार फिर उजागर किया है। सत्ता में आने वालों के चेहरे तो बदलते रहे लेकिन खूनी सियासत का चरित्र नहीं बदला। लोकतंत्र में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। राज्य में भाजपा की नई सरकार के सामने राजनीतिक हिंसा, आपराधिक तत्वों और गुंडा संस्कृति पर लगाम लगाने की बड़ी चुनौती होगी। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 100 जवान मारे, 13 विमान गिराए। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र सेनाओं का यह बयान दैनिक भास्कर के मुख्य पृष्ठ पर है। देश में सड़क हादसों में रोजाना औसतन 546 लोगों की मौत, राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के हवाले से जनसत्ता लिखता है तेज गति से गाड़ी चलाना है सड़क हादसों का सबसे बड़ा कारण। बड़ा बदलाव शीर्षक से राजस्थान पत्रिका की खबर है, देश में मुफ्त एंटरटेनमेंट पर लगेगी लगाम, बंद होगी फ्री चैनल स्ट्रीमिंग, सरकार की शुल्क लगाने की तैयारी, रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य। केंद्र सरकार की ओर से 40 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों के लिए बड़ी सौगात, अमर उजाला में है कामगारों की अब हर साल होगी मुफ्त स्वास्थ्य जांच।
0: धन्यवाद निखिल। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह आज कोलकाता में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी, सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर बीसीके, सीपीआई और सीपीआईएम के विधायकों की आज बैठक। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने मुंबई में व्यापार फोरम में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत और वियतनाम की भूमिका पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के उपायों की समीक्षा की। और सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोकी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। बीजेपी सेंट्रल ऑब्जर्वर फॉर वेस्ट बंगाल अमित शाह टू मीट न्यूली इलेक्टेड पार्टी एमएलएस इन कोलकाता टू इलेक्ट लेजिस्लेटिव लीडर टुडे। Deadlock continues in Tamil Nadu over government formation as MLAs of VCK, CPI and CPIM to meet on lending support. President of Vietnam Tho Lam emphasizes India-Vietnam role in global supply chain at business forum in Mumbai. Commerce Minister Piyush Goyal reviews initiatives to strengthen India's position in global agriculture landscape. Saudi Arabia suspends US military access to its bases and airspace. And in IPL cricket, Lucknow Super Giants beat Royal Challengers Bengaluru by 9 runs using DLS method at Ikana Stadium. BJP Central Observer for West Bengal and Union Home Minister Amit Shah will meet newly elected party MLAs in Kolkata to elect legislative leader today. We have more from a correspondent.
3: After a sweeping victory in Bengal, the BJP is seeking to turn the swearing-in ceremony into a political event of national significance. The first BJP government in West Bengal will take oath on Saturday, the Puchisha Boishak, at the Brigade Parade Ground. Preparations for the stage and security arrangements at Brigade began on Wednesday itself. According to BJP sources, Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, Nitin Gadkari, JP Nadda, BJP President Nitin Naveen and several other central ministers may attend the ceremony. Chief ministers and deputy chief ministers of various BJP and NDA ruled states are also being invited. On Friday, a meeting of the newly elected BJP MLAs will be held at Bishwa Bangla Convention Center in New Town, where the leader of the legislative party will be formally elected. Amit Shah will be present as the central observer. Since the oath-taking ceremony is being held on the occasion of Rabindra Jayanti, special emphasis is also being given to cultural performances. The BJP is planning to showcase Bengali culture through Rabindra Sangeet and other cultural presentations. Shondipan Dashgupta, Akashvani News, Kolkata.
2: In Tamil Nadu, with the formation of the new government getting delayed, talks have been held to reach the magic number of 118 to prove the majority. The DMK and the AIADMK held the legislative party meetings of the newly elected MLAs yesterday. AIADMK General Secretary Edappatti Palaniswamy has been elected as a leader of the legislative party during the meeting at Puducherry. The crucial meeting of the newly elected MLAs of VCK, CPI and CPIM is to take place today on the issue of lending support to the single largest party, TVK. We have more from a correspondent.
4: The situation in the state has taken interesting political outcome with the AIADMK and the DMK legislative party meeting held yesterday. Both of the parties have commented on their governor's decision on proving the majority. DMK spokesperson TKS Ilangovan has said that it is the duty of the single largest party to prove its majority and added that DMK chief MK Stalin does not want any constitutional crisis. It is to be noted that Puducherry AIADMK secretary A. Anbaragan, who met the media after the legislative party meeting, had said that the power to decide has been given to the general secretary of the party. He hailed the decision of the governor on the issue of majority and said that there will be unexpected decisions in the prevailing political uncertainty. He also informed the media that their leader felt sad about Stalin's loss in this election. Joy, Akashwani reporting from Chennai.
2: President of Vietnam Tho Lam has emphasized that India and Vietnam together have a significant opportunity to play a pivotal role in the global supply chain in today's changing world order. Addressing the India-Vietnam Business Forum in Mumbai, Mr. Lam highlighted that the current global scenario is indeed a challenge but also an opportunity to elevate cooperation between India and Vietnam to a new level. Speaking on the occasion, Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis asserted that entrepreneurs, investors and professionals from the technology and manufacturing sectors in countries like India and Vietnam will shape the future of Asia.
5: India and Vietnam offer something important to the world: trusted partnership, stable governance, economic dynamism and long-term strategic confidence. The future of Asia will be built by entrepreneurs, innovators, investors, technology leaders, manufacturers and young people from countries like India and Vietnam working together.
2: After concluding his visit to India, the Vietnamese president arrived in Sri Lanka last night on a two-day state visit aimed at deepening bilateral ties and boosting trade and investment cooperation. The visit, undertaken at the invitation of the Sri Lankan president Anuradha Kumaradesanayake, coincides with the 55th anniversary of diplomatic relations between the two countries and marks the first visit by a Vietnamese president to Sri Lanka in 15 years. Commerce and Industry Minister Piyush

चित्रलोक कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी सुनने वालों को सविता सिंह का नमस्कार। चित्रलोक कार्यक्रम की शुरुआत इस गाने से।

लहमर हुसैनपुरी और साथियों की आवाजों में ये गीत आप सुन रहे थे, राजशेखर का लिखा हुआ। संगीतकार थे कृष्णा और फिल्म का नाम तनु वेट्स मनु।

0: अली ब्रदर्स की आवाजों में आप सुन रहे थे हक फिल्म का गीत। कौशल किशोर ने इस गीत को लिखा था और संगीतकार थे विशाल मिश्रा। चित्रलोक कार्यक्रम आप इस समय सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की

0: आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर आज यानी 8 मई को विविध भारती एक वॉकथॉन आयोजित कर रहा है।
1: तुम भी चलो, हम भी चले, चलती रहे।
0: तो आज शाम 5 बजे मिलिए गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर। और चलिए हमारे साथ वॉकथॉन पर।
1: चलो चले मितवा।
0: आकाशवाणी के 90 बरस के जश्न में हिस्सा लीजिए, विविध भारती के सदस्यों के साथ वॉक कीजिए।
2: चलते चलते
0: आज शाम 5 बजे गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर।

धुरंधर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे शाश्वत सचदेव और जैस्मिन सांडिल्य और साथियों की आवाजों में। गीतकार थे जैस्मिन सांडिल्य और संगीत शाश्वत सचदेव का था। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। चित्रलोक कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर से हाजिर हो जाएंगे।

0: वाटर टू फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें थी दिलजीत दोसांझ, परंपरा टंडन और सचेत टंडन की। गीतकार थे कौसर मुनीर और संगीतकार थे सचेत टंडन और परंपरा टंडन।
1: आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर आज यानी 8 मई को विविध भारती एक वॉकथॉन आयोजित कर रहा है।
2: तुम भी चलो, हम भी चले, चलती रहे।
1: तो आज शाम 5 बजे मिलिए गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर। और चलिए हमारे साथ वॉकथॉन पर।
2: चलो चले मितवा।
1: आकाशवाणी के 90 बरस के जश्न में हिस्सा लीजिए, विविध भारती के सदस्यों के साथ वॉक कीजिए। आज शाम 5 बजे गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

लापता लेडीज फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। श्रेया घोषाल की आवाज थी। स्वानंद किरकिरे ने इस गीत को लिखा था और राम संपत ने इस गीत को संगीत से सजाया था। जुबिन नौटियाल की आवाज में ये गीत। फिल्म का नाम है आंखों की गुस्ताखियां।

0: सफर।
1: जुबिन नौटियाल की आवाज में आंखों की गुस्ताखियां फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीतकार और संगीतकार थे विशाल मिश्रा। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। चित्रलोक कार्यक्रम में एक बहुत छोटा सा ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे।

0: फिर से आपका स्वागत है बहुत बहुत चित्रलोक कार्यक्रम में।
1: आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर आज यानी 8 मई को विविध भारती एक वॉकथॉन आयोजित कर रहा है।
2: तुम भी चलो हम भी चले चलती रहे।
1: तो आज शाम 5 बजे मिलिए गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर। और चलिए हमारे साथ वॉकथॉन पर।
2: चलो चले मितवा।
1: आकाशवाणी के 90 बरस के जश्न में हिस्सा लीजिए, विविध भारती के सदस्यों के साथ वॉक कीजिए। आज शाम 5 बजे गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर।
2: आजा शाम होने आई।
0: चित्रलोक कार्यक्रम में आपको आप सुना रहे हैं सत्यमेव जयते 2 फिल्म का गाना। ज़ारा अस्खान और जास मानक की आवाजें हैं। गीतकार हैं तनिष्क बख्शी।

सत्यमेव जयते टू फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आज विश्व रेड क्रॉस दिवस है। विश्व रेड क्रॉस दिवस हर साल 8 मई को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है लोगों में उदारता, सहानुभूति, मदद और निस्वार्थ भाव से सेवा की भावना को मजबूत करना, बढ़ावा देना है। ये दिन रेड क्रॉस सोसाइटी से जुड़े उन लोगों को के सम्मान को सम्मान देने के लिए भी मनाया जाता है जो युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं और संकट के समय बिना किसी भेदभाव के लोगों की सहायता करते हैं। सभी के लिए ये दिन मानवता के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझने का भी संदेश देता है। लोगों को चाहिए कि जरूरतमंदों की सहायता के लिए आगे आएं, रक्तदान के प्रति जागरूक हों और संकट के समय एक दूसरे का सहारा बनें। कई बार किसी के लिए हमारी छोटी सी मदद, छोटी सी सहायता बहुत बड़ा सहारा बन जाती है। चित्रलोक कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं। ये धड़क टू फिल्म का गीत है।

0: श्रेया घोषाल और जुबिन नौटियाल की आवाजों में रश्मि बिराग का लिखा गीत आप सुन रहे थे। धड़क टू फिल्म का नाम था। आप सुन रहे हैं इस समय चित्रलोक कार्यक्रम।
1: सुनिए
2: कहिए सुनिए एक खुशखबरी।
3: कहिए ना।
2: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 022-400-24662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
4: आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर आज यानी 8 मई को विविध भारती

0: तो आज शाम 5 बजे मिलिए गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर। और चलिए हमारे साथ वॉकथॉन पर।
1: चलो चले मितवा।
0: आकाशवाणी के 90 बरस के जश्न में हिस्सा लीजिए, विविध भारती के सदस्यों के साथ वॉक कीजिए। आज शाम 5 बजे गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर।
1: आजा शाम होने आई।
2: आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम, 9:15 और समय है एक और ब्रेक का।

आर राजकुमार फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें अरिजीत सिंह और पलक मुछाल की थी। गीतकार थे नीलेश मिश्रा और सानंद किरकिरे, दोनों ने इस गीत को मिलकर लिखा। आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। इस समय आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह 8 मई से मनाया जाता है। ये सप्ताह सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। लोगों को चाहिए कि वाहन चलाते समय गति नियंत्रित रखें, हेलमेट सीट बेल्ट का उपयोग करें और ट्रैफिक संकेतों का पालन करें। पैदल चलते हुए इन बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना, बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखना, मोबाइल पर बात करते हुए गाड़ी न चलाना और लाल बत्ती पर रुक जाना, इन सभी बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। कई बार लोग ये कहते हैं और सोचते हैं कि घर तो

0: चित्रा और स्वानंद किरकिरे की आवाजों में ये गीत आप सुन रहे थे। गीतकार थे स्वानंद किरकिरे और संगीतकार थे शांतनु मोइत्रा। परिणीता फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना।
1: आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर आज यानी 8 मई को विविध भारती एक वॉकथॉन आयोजित कर रहा है।
2: तुम भी चलो हम भी चले चलती रहे।
1: तो आज शाम 5 बजे मिलिए गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर। और चलिए हमारे साथ वॉकथॉन पर।
2: चलो चले मितवा।
1: आकाशवाणी के 90 बरस के जश्न में हिस्सा लीजिए। विविध भारती के सदस्यों के साथ वॉक कीजिए।
3: चलते चलते
1: आज शाम 5 बजे गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड

ऋतिक राशिलकर और साथियों की आवाजों में मलाल फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। अब आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त करने की सविता सिंह को इजाजत दीजिए। नमस्कार, आप स्वस्थ और समृद्ध रहिए।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी या किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देख लो ना ताओ, मुझसे मुखातिब होकर बोले अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आप

आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ब्लॉकबस्टर फिल्म मेकर की, जिसने साल 1973 से साल 1989 के बीच अमिताभ बच्चन के साथ एक के बाद एक कई सुपरहिट फिल्में बनाई और सिनेमा के इतिहास पर अपना नाम सुनहरे अक्षरों से लिखवा लिया।

भैया हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए और मिला ली है।

0: धन्यवाद।
1: आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम बातें करेंगे जाने माने फिल्मकार प्रकाश मेहरा की। प्रकाश मेहरा का जन्म 13 जुलाई 1939 को बिजनौर में हुआ था और उनकी परवरिश दिल्ली के चांदनी चौक के इलाके में हुई। एक सामान्य परिदृश्य में पले बढ़े प्रकाश मेहरा ने आम आदमी की जिंदगी को बहुत करीब से देखा, उसके दुख दर्द, उसके जीवन की कमियों को और उसके जीवन में हो रही नाइंसाफियों को अपने जहन के भीतर जज्ब किया। तब उन्हें पता नहीं था कि वो आगे चलकर बन जाएंगे फिल्मकार और उनका नायक एक आम आदमी होगा जो बड़े बड़े कारनामे करेगा। सन 1950, प्रकाश मेहरा मुंबई आए नौकरी की तलाश में और किसी तरह से जिंदगी उन्हें फिल्मों की दुनिया में ले गई। वो बन गए प्रोडक्शन मैनेजर। बरस दर बरस प्रकाश मेहरा जिम्मेदारी भरा ये काम करते रहे और उसके बाद उन्होंने एक लकीर पार की। सन 1968, प्रकाश मेहरा के निर्देशन में पहली फिल्म आई हसीना मान जाएगी।

ऋषि कपूर की एक बेहतरीन फिल्म में शुमार हुई। ये फिल्म बेहद कामयाब थी। प्रकाश मेहरा की इस फिल्म के जरिए धाक जम गई। हसीना मान जाएगी बनाने के बाद प्रकाश मेहरा ने कुछ और फिल्में बनाई और इन फिल्मों के जरिए जैसे वो अपने मुहावरे को तलाश कर रहे थे, जैसे फिल्म संसार कदम दर कदम एक लेजेंड फिल्म मेकर तैयार कर रहा था। सन 1971 संजय खान और फिरोज खान को साथ

प्रकाश मेहरा अपनी फिल्मों की कहानी पर बड़ा जोर देते थे और कोई अच्छी कहानी उनका मन मोह लेती थी। ऐसी ही एक अच्छी कहानी थी एक पुलिस वाले की कहानी, और प्रकाश मेहरा इस कहानी को लेकर अलग अलग नायकों के पास जाते रहे। ये नायक इस कहानी को ठुकराते रहे, लेकिन प्रकाश मेहरा का विश्वास कम नहीं हुआ। इस कहानी को एक तरफ रखा और सन 1972 में वो लेकर आए समाधि।

इसी साल उनकी फिल्म आई आन बान। आखिरकार एक के बाद एक कई फ्लॉप फिल्म देने वाले एक बेहद लंबे कद के दुबले पतले अभिनेता अमिताभ बच्चन को लेकर उन्होंने अपनी उस महत्वाकांक्षी फिल्म पर काम शुरू किया। सन 1973 20 मई का दिन फिल्म जंजीर रिलीज हुई और इस फिल्म ने अमिताभ बच्चन को बना दिया एंग्री यंग मैन। दरअसल एंग्री यंग मैन ये जो जुमला है ये नाटककार जॉन ऑसबोर्न के प्ले लुक बैक इन एंगर से लिया गया है। इसी नाम की एक फिल्म बनी है। प्रकाश मेहरा ने अमिताभ

0: बच्चन को फिल्म जंजीर के जरिए एंग्री यंग मैन बना दिया।
1: यही है वो इलाका जहां लोग तुम्हें जानते हैं शेर खान। अब न तो वर्दी है न कुर्सी और न ही मैं ड्यूटी पर हूँ। इलाका तुम्हारा है और मैं अकेला हूँ।
2: मतलब कब बात बोलूं साहब?

0: जी।
1: आज इतने बरस बाद भी फिल्म जंजीर एक कल्ट फिल्म मानी जाती है, एक कालजयी फिल्म जिसने एक बेमिसाल निर्देशक और एक जबरदस्त हीरो हिंदी फिल्म सिनेमा को दिया। फिल्म जंजीर के बाद प्रकाश बेहरा ने अगले 15 वर्षों में अमिताभ बच्चन के साथ 7 फिल्में और बनाई। आइए एक के बाद एक इन फिल्मों से होकर गुजरे। सन 1976, खून पसीना।
2: अरे खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो यारो हम भूखे ही सो जाएंगे।

0: की हेरा फेरी है और मत की हेरा फेरी।
1: सन 1981 प्रकाश मेहरा के करियर का एक बेमिसाल साल रहा। इस साल वो लेकर आए मुकद्दर का सिकंदर। एक बार फिर अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना एक साथ।
2: सिकंदर का मैं आऊं विशाल जी, शुरू कीजिए।
3: मंगलम भगवान
2: अपने जिगर का टुकड़ा तुम्हें सौंप रहा हूँ।
3: वस्त्र कंधे पर रख
2: सिकंदर चरों से झड़प हो गई।
4: नहीं बताती हूँ, दिलाने मुझे उठा कर ले गया था। सिकंदर मुझे बचा कर यहाँ ले आया। अगर सिकंदर नहीं उठा तो मैं तुम्हें हो गई।
2: बस बस करो मेम साहब।
5: मेम साहब
2: क्या काम नहीं तेरी मेम साहब जिससे तू
4: विशाल मुझे तो सिकंदर सारी जिंदगी मेम साहब को करता
2: है।
4: सिकंदर आज मुझे कह लेने दो, आज मुझे कह लेने दो विशाल। सारी जिंदगी सिकंदर मुझसे दिल दिल में प्यार करता रहा और मैंने इसे सिवाय नफरत का कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया।
2: सिकंदर ये तो क्या किया
1: इसी साल आई फिल्म लावारिस।
4: तुम?
6: हाँ मैं। तुमने मुझे लावारिस कहा, जानती हो लावारिस क्या होता है?
7: मेम साहब लावारिस गंदी नाली का वो कीड़ा होता है जो न जीता है न मरता है। अपना पाप समझकर लोग जिसे फुटपाथ पर फेंक जाते हैं मरने के लिए। मौत भी कमबख्त उसे पूरा नहीं खाती, अधमरा छोड़ जाती तुम्हारे जैसे इंसानों के नोचने के लिए। इस दुनिया में कौन कैसा क्यों है ये जाने बगैर कभी किसी पे छींटे मत कसना। फल गुनाह के पीछे गुनाहगार कौन है ये कोई नहीं जानता।
1: प्रकाश मेहरा की फिल्में एक के बाद एक बॉक्स ऑफिस पर कमाई के नए रिकॉर्ड बना रही थी। अमिताभ बच्चन का सितारा लगातार जगमगा रहा था। जाने माने फिल्मकार मनमोहन देसाई ने प्रकाश मेहरा के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात कही।

मधु ने कहा कि शायद ही ऐसा कोई भारतीय होगा जिसने प्रकाश मेहरा की फिल्में नहीं देखी हों। एक ऐसा फिल्मकार जिसने ब्लॉकबस्टर टर्म को जन्म दिया, एक ऐसा फिल्मकार जिसने हिंदी सिनेमा में मसालेदार सिनेमा का नया व्याकरण गढ़ा और सारे देश को अपने तिलस्म की गिरफ्त में ले लिया। सन 1982 में आई नमक हलाल। सन 1984 अमिताभ बच्चन और प्रकाश मेहरा के जादुई साथ की फिल्म शराबी। कहते हैं कि जब सूरज बहुत तेज चमके उसके बाद शाम नजदीक होती है। एक के बाद एक कमाल की फिल्में देने के बाद जैसे वक्त करवट ले रहा था। सन 1989 प्रकाश मेहरा और अमिताभ बच्चन के साथ वाली एक बड़ी फिल्म आई जादूगर। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म चारों खाने चित हो गई। ऐसा लगा जैसे एक बेमिसाल फिल्मकार का जादू टूट गया। एक वक्त था जो पीछे छूट गया, एक चमक थी जो मध्यम पड़ गई, एक कहानी थी जो खत्म होने लगी। अमिताभ बच्चन के अलावा प्रकाश मेहरा ने दूसरे कलाकारों के साथ भी काम किया है। सन 1974 में प्रकाश मेहरा के निर्देशन वाली फिल्म आई थी हाथ की सफाई।

सन 1991 में अनिल कपूर को लेकर प्रकाश मेहरा ने बनाई जिंदगी एक जुआ। सन 1996 में जाने माने अभिनेता राजकुमार के बेटे पुरू राजकुमार को फिल्मों में उतारने के लिए उन्होंने निर्देशित की बाल ब्रह्मचारी। ये प्रकाश मेहरा के निर्देशन वाली आखिरी फिल्म थी। इसके बाद प्रकाश मेहरा ने किसी फिल्म का निर्देशन नहीं किया। सन 1993 में आई फिल्म दलाल के निर्माता प्रकाश मेहरा ही थे। इस फिल्म के निर्देशक थे पार्थो घोष। प्रकाश मेहरा ने एक जमाने में अमिताभ बच्चन से ये वादा किया था कि जिस दिन वो हिट फिल्म नहीं बना पाएंगे उस दिन अमिताभ बच्चन के साथ काम करना बंद कर देंगे। सन 1989 के बाद प्रकाश मेहरा ने अमिताभ बच्चन के साथ कोई फिल्म नहीं की। प्रकाश मेहरा, मनमोहन देसाई और अमिताभ बच्चन, इन लोगों ने मिलकर हिंदी सिनेमा का एक नया इतिहास गढ़ा है। ब्लॉकबस्टर फिल्मों का इतिहास, वो समय जरूर बीत गया लेकिन मसालेदार फिल्मों का दौर नहीं बीता। अमिताभ बच्चन और प्रकाश मेहरा को चाहने वाले आज भी बड़े चाव से देखते हैं 70 और 80 के दशक की वो बेमिसाल फिल्में।

प्रकाश मेहरा गीतकार भी थे। उन्होंने अपनी कई फिल्मों में गाने भी लिखे हैं, जैसे फिल्म लावारिस का ये गाना भी प्रकाश मेहरा की कलम का कमाल।

17 मई 2009 प्रकाश मेहरा ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया। पीछे रह गई उनकी बनाई बेमिसाल फिल्में, वो कहानियां जिन्होंने हमें हंसाया और रुलाया, वो कहानियां जिन्होंने हमारा दिल जीता, वो फिल्में जिनके दृश्यों को देखकर हमने तालियां बजाई, वो फिल्में जिनके दृश्यों को देखकर हमने निर्देशक की वाह वाह की। आज प्रकाश मेहरा नहीं है, लेकिन उनका सिनेमा है, और उस सिनेमा का कमाल है, किसी लेखक ने कहीं लिखा, फॉर्मूला खत्म नहीं होता। प्रकाश मेहरा की फिल्मों का फॉर्मूला आज दूसरे निर्देशकों की फिल्मों में जिंदा है। फॉर्मूला कभी खत्म नहीं होता। फॉर्मूला फिल्मों में प्रकाश मेहरा हमेशा जिंदा रहेंगे।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था हिंदी सिनेमा के बेमिसाल निर्देशक प्रकाश मेहरा पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कुमार साहब कहने के कयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई के साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना तो आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती।

अभी तक आप सुन रहे थे विविध भारती मुंबई से अनुप्रसारित कार्यक्रम में एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। यह है आकाशवाणी का हिसार केंद्र। सुबह के 10 बजे हैं और अब आप सुनेंगे आप सभी का चहेता कार्यक्रम नमस्ते हिसार। माटी की खुशबू अपनेपन का प्यार आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम नमस्ते हिसार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आप सभी की अपनी रेडियो हम सफर प्रीति ढिंडोरिया और नमस्ते हिसार कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं। यहां हर सुबह होती है आपके अपने शहर की धड़कनों के साथ, तो तैयार हो जाइए अगले एक घंटे के खूबसूरत सफर में जिसमें होंगी शहर की ताजा हलचल, प्रेरणादायक बातें, पूछे जाएंगे आपसे दो सवाल और बहुत सारी जानकारी और मनोरंजन के साथ। शुरुआत करते हैं आज के कुछ स्थानीय समाचारों के साथ। हिसार में गर्मी को बढ़ते हुए देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को दोपहर के समय बाहर निकलते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। चिकित्सकों ने अधिक पानी पीने और हल्के भोजन लेने की अपील की है। दस मई से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, लगातार होगी झमाझम बारिश। हरियाणा में मौसम में बदलाव आया है। करनाल में हल्की बूंदाबांदी जिससे ठंडक बढ़ी 10 मई के बाद।

पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से 11 से 13 मई तक लगातार बारिश की संभावना है। प्रदेश में वीरवार को मौसम में बदलाव रहा। कई जिलों में सुबह से ही तेज हवाएं चली। करनाल में हल्की बूंदाबांदी हुई, इससे मौसम ठंडा हो गया और अब आने वाले दिनों में 10 मई रात तक मौसम गर्म होने की और तापमान बढ़ने की उम्मीद है और उसके बाद रात से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और लगातार वर्षा होने की संभावना है। अभी दिन के समय धूप खिलने के कारण सिरसा का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया और भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार तापमान 3 दिन तक ऊपर जा सकता है। इससे अधिकतम तापमान में वृद्धि होगी। मौसम साफ रहने के बाद 10 मई रात से बदलाव होगा और मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 11 से 13 मई तक लगातार बारिश हो सकती है।

0: निकायों में ट्रिपल इंजन की सरकार बनने से विकास भी तीन गुना होगा, सैनी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि नगर निकायों में ट्रिपल इंजन की सरकार बनने से विकास कार्यों की गति भी बढ़कर तीन गुना हो जाएगी। सरकार ने हर चुनाव से पहले किए वादा को पूरा किया और इसे साबित होता है कि ये सरकार जो कहती है उसे पूरा करती है। सीएम सैनी वीरवार को उकलाना नगर पालिका चुनाव में भाजपा के चेयरमैन प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित कर रहे थे।
1: ने ईक को कबूतर से खत भिजवाया और ईक जैसी छतों को देख कबूतर ने खत गलत पते पर गिराया। कबूतर की गलती ने बेचारे रांझे को सरे बाजार बहुत पिटवाया। तब हीर ने रांझे को समझाया,
2: अरे बुद्धू मैसेज ही भेजना था तो ईमेल से क्यों नहीं भिजवाया।
3: RADIOHISAR यानी radiohisar@gmail.com पर
2: आप भी भेजिए अपने मैसेज जीमेल के माध्यम से अपनी पसंद के गाने सुनने के लिए कार्यक्रम ई फरमाइश में
3: हर मंगलवार शाम 5 बजे
2: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।

0: वर्मा जी को चाहिए सुबह सुबह ताजा खबरें।
1: आज के समाचार कुछ इस प्रकार हैं।
2: और मिसेज वर्मा को सिर्फ संगीत।
3: मैं अलबेली घूमू अकेली।
0: दादा दादी को मिल जाए कोई ऐसा जो उनके साथ उनके समय की बातें करे।
4: अभी न जाओ छोड़ कर।
2: और बच्चों के लिए जरूरी है ज्ञान।
0: कैसा हो यदि सब कुछ मिले एक ही जगह एक ही समय पर?
2: सुनिए संपूर्ण पारिवारिक कार्यक्रम नमस्ते हिसार
0: रोज सुबह 10 बजे से 11 बजे तक
2: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।

दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि बार बार मौसम बदलता है, कभी तेज़ बारिश, कभी तेज़ गर्मी, तो ये कहीं ना कहीं हमारी सेहत पर भी असर डालता है। और जो ये सब हो रहा है, हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये ग्लोबल वार्मिंग के चक्कर में है। और ग्लोबल वार्मिंग जो है

वो बहुत सारे पेड़ काटने के लिए है, क्योंकि हमने कांटे बहुत ज्यादा लगाए बिल्कुल भी नहीं। हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो डिस्टर्ब हुआ और कहीं ना कहीं इसका असर हमारी जीवन शैली पर भी पड़ा और पड़ेगा भी। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे आज के जीके क्वेश्चंस की। दोस्तों कहते हैं, ज्ञान ऐसी पूंजी है जो जितना बांटो उतना बढ़ता जाता है। और जब सुबह की शुरुआत थोड़ी सी नई जानकारी और दिमागी कसरत से हो जाए तो पूरा दिन और भी मज़ेदार बन जाता है। तो ये जो सेगमेंट है हमारा जो जीके प्रश्नों का है, जहां हम लेकर आते हैं कुछ रोचक और मज़ेदार जीके क्वेश्चंस और जिसमें की जाती है पूरी आपकी फरमाइश। लेकिन जो श्रोता सबसे पहले हमारे सवालों के जवाब देते हैं, उन्हीं की पसंद के गीत हम कार्यक्रम में सुनवा पाते हैं। तो आज के प्रश्न बताने से पहले जान लीजिए किस तरीके के साथ, किस तरह आप अपना जवाब हम तक भेजेंगे। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9729253272, जी हाँ, ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर जिस पर आपको हमारे सवाल के जवाब भेजने हैं। नंबर एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए कि 9729253272। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है अपने नाम, अपने शहर के नाम के साथ। सबसे पहले आपको सवाल का जवाब लिखना है, उसके बाद फिर आपको अपना नाम लिखना है और फिर आप टाइप करेंगे आपकी जगह का नाम, आपने कहां से हमें मैसेज भेजा है, और फिर आप अपनी पसंद का गीत हमें लिखकर भेज दीजिए। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, उस भाषा का नाम बताएं जिसे मध्यकालीन भारत में शिविर भाषा के नाम से जाना जाता था। उस भाषा का नाम बताएं जिसे मध्यकालीन भारत में शिविर भाषा के नाम से जाना जाता था। हमारे ऑप्शंस है, ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी हिंदी और ऑप्शन डी उर्दू। इस प्रश्न का सही जवाब हमें लिख भेजिए नाम, जगह के नाम और पसंद के गीत के साथ। तब तक सुनिए ये मीठा सा गीत।

दोस्तों, गीत से पहले हमने आपसे प्रश्न पूछा था, उस भाषा का नाम बताएं जिसे मध्यकालीन भारत में शिविर भाषा के नाम से जाना जाता था। इसके ऑप्शंस थे ए संस्कृत, बी पाली, सी हिंदी या डी उर्दू। और इस प्रश्न का सही जवाब है उर्दू, यानी कि

ऑप्शन डी उर्दू। मध्यकालीन भारत में शिविर भाषा उर्दू थी। उर्दू मूलतः तुर्की भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है शाही शिविर या खेमा। मध्यकालीन भारत में उर्दू का विकास इसलिए किया गया था ताकि हिंदू, तुर्की और अफगान सैनिकों में भाषा द्वारा संबंध स्थापित हो सके। और इस प्रश्न के

भ्यान, शमशीर, सुरेंद्र और मनोज भ्यान। और हमारे ये श्रोता है उमेश सांगवान, गांव पेंटावास, कला तहसील, जिला चरखी, दादरी। तो चलिए सुनते हैं हमारे उन श्रोता की पसंद का गीत जिन्होंने सबसे पहले जवाब दिया है। लेकिन पहले जान लीजिए हमारे आज के दूसरे प्रश्न के बारे में। हमारा जो आज का दूसरा प्रश्न है वो है, निम्न में से किस किले का निर्माण अकबर ने नहीं करवाया? जी हाँ, इन किलों में से कौन सा ऐसा किला है जिसका निर्माण अकबर ने नहीं करवाया? तो हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए ग्वालियर किला, ऑप्शन बी आगरा किला, ऑप्शन सी लाहौर किला या ऑप्शन डी इलाहाबाद किला। तो चलिए हम इंतजार में हैं आपके जवाबों के। एक बार फिर से आपको नंबर बता दें, 9722253272। तो चलिए सुनिए ये प्यारा सा गीत, इसके बाद बताते हैं आपको दूसरे प्रश्न का जवाब सबसे पहले कौन देगा।

इलाहाबाद किला। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, ग्वालियर किला। राजा मान सिंह तोमर ने 8वीं सदी में ग्वालियर के किले का निर्माण करवाया था। इसका निर्माण सुरक्षा के तहत किया गया था। इस किले का दो प्रमुख स्थान गुजरी महल और मान मंदिर है। और हमारे इस प्रश्न का जवाब सबसे पहले दिया है गांव जेवरा हिसार से वीरेंद्र भ्यान, शमशेर सुरेंद्र भ्यान और मनोज भ्यान। ये सुनना चाहते हैं हीरो नंबर 1 फिल्म का गीत मोहब्बत की नहीं जाती। दूसरे हमारे श्रोता हैं चंदन नगर हिसार से संदीप डुगू प्रणिका। और ये हमारे श्रोता हैं उमेश सांगवान गांव पेंतावास कला तहसील जिला चरखी दादरी से। तो चलिए सुनते हैं वीरेंद्र भ्यान जी की पसंद का ये खूबसूरत सा गीत।

लीजिए श्रोताओं, हमारे पास जवाब आ चुके हैं हमारे सुनने वालों के, हमारे आज के दूसरे प्रश्न के। तो हमारा जो दूसरा प्रश्न था वो था, किस किले का निर्माण अकबर ने नहीं करवाया है? ऑप्शंस थे, ऑप्शन ए ग्वालियर किला, बी आगरा किला, सी लाहौर किला और डी

0: अर्ज किया है, रांझे ने हीर को कबूतर से खत भिजवाया। रांझे ने हीर को कबूतर से खत भिजवाया और एक जैसी छतों को देख कबूतर ने खत गलत पते पर गिराया। कबूतर की गलती ने बेचारे रांझे को सरे बाजार बहुत पिटवाया। तब हीर ने रांझे को समझाया,
1: अरे बुद्धू, मैसेज ही भेजना था तो ईमेल से क्यों नहीं भिजवाया।
2: RADIOHISAR यानी रेडियो हिसार @gmail.com पर
1: आप भी भेजिए अपने मैसेज ईमेल के माध्यम से अपनी पसंद के गाने सुनने के लिए कार्यक्रम ई फरमाइश में
2: हर मंगलवार शाम 5 बजे
1: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर। हिंदुस्तान जमीन है सितारों की,
3: अगर तुम्हारी आरजू एक कमीज है तो सारी जिंदगी इसी तरह जब्त करना होगा।
2: एक से बढ़कर एक उम्दा फनकारों की,
1: कोई साहित्य में सर्वश्रेष्ठ है,
4: न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता,
2: तो कोई विज्ञान में अद्वितीय,
5: विल बी रिमेम्बर्ड एज अ ग्रेट साइंटिस्ट सेड थॉमस अल्वा एडिसन,
1: कोई कला में उत्कृष्ट है,
2: तो कोई संगीत का शिरोमणि,
1: किंतु कोई है जो इन सब को ले आया है आपके लिए, आपके घर में, आपके बेहद करीब।
2: कार्यक्रम एक शख्सियत
1: हर सोमवार शाम 5 बजे
2: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।
6: तो दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्ते हिसार FM बैंड 102.3 MHz पर आकाशवाणी हिसार के साथ आप सभी की अपनी रेडियो हम सफर प्रीति ढिंडोरिया के साथ। तो चलिए कार्यक्रम के इस सेगमेंट में हम बात करते हैं प्रेरक व्यक्ति विशेष की। तो आज बात करते हैं क्रिकेट की। जी हाँ दोस्तों, भारतीय क्रिकेट के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हुए हैं जिन्होंने सिर्फ मैच ही नहीं जीते बल्कि करोड़ों भारतीयों का आत्मविश्वास भी बढ़ाया है। एक ऐसा ही नाम है कपिल देव। वो सिर्फ एक महान क्रिकेटर ही नहीं बल्कि संघर्ष, नेतृत्व और आत्मविश्वास की मिसाल है। कपिल देव का पूरा नाम है कपिल देव रामलाल निकंज। उनका जन्म हुआ 6 जनवरी 1959 को चंडीगढ़ में। जी हाँ दोस्तों, ये हैं हमारी हरियाणा की शान। उनका परिवार मूल रूप से पंजाब से जुड़ा था। विभाजन के बाद उनका परिवार भारत आ गया। बचपन से ही कपिल देव बेहद ऊर्जावान और खेलों में रुचि रखने वाले थे।

उन्हें क्रिकेट के अलावा दौड़ना और अन्य खेल भी पसंद थे। उनकी पढ़ाई चंडीगढ़ में हुई, लेकिन उनका खेल करियर हरियाणा से जुड़ गया। उन्होंने हरियाणा की रणजी टीम से क्रिकेट खेलना शुरू किया और जल्द ही अपनी तेज गेंदबाजी और दमदार बल्लेबाजी से पहचान बना ली। उन्नीस सौ 75 में उन्होंने हरियाणा के लिए प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेलना शुरू किया। उनकी गेंदबाजी में गति थी, स्विंग थी और बल्लेबाजी में आक्रामकता। 1978 में उन्हें भारतीय क्रिकेट टीम में जगह मिली। उनका पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान के खिलाफ था। शुरुआत में कई लोगों को लगता था कि भारत की पिचों पर तेज गेंदबाज ज्यादा सफल नहीं हो सकते, लेकिन कपिल देव ने ये सोच बदली। उस दौर में भारत स्पिन गेंदबाजों के लिए जाना जाता था, लेकिन कपिल देव ने भारतीय क्रिकेट को एक नया तेज गेंदबाज दिया। वो सिर्फ गेंदबाज नहीं थे, वे थे एक बेहतरीन ऑलराउंडर, यानी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में शानदार। उनकी बल्लेबाजी निडर थी, वे मुश्किल परिस्थितियों में भी बहुत बड़े शॉट खेलने से डरते नहीं थे। उन्नीस के विश्व कप के इतिहास को रचने वाले कप्तान थे कपिल देव। कैसे भूल सकते हैं हम उस विश्व कप को। भारतीय क्रिकेट का सबसे बड़ा मोड़ माना जाता है 1983 का क्रिकेट विश्व कप। उस समय वेस्टइंडीज की टीम दुनिया की सबसे ताकतवर टीम थी। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि भारत विश्व कप जीत पाएगा, लेकिन कपिल देव की कप्तानी में भारतीय टीम ने इतिहास रच दिया। विश्व कप के दौरान भारत का एक मैच जिम्बाब्वे से था। भारत के कई विकेट जल्दी गिर गए और टीम मुश्किल समय में थी। तब कपिल देव ने 175 रनों की अद्भुत पारी खेली। ये उस समय वनडे क्रिकेट की सबसे महान पारियों में से एक मानी गई। उनकी इस पारी ने भारत को मैच जिताया और टीम का आत्मविश्वास बढ़ाया। पद्मश्री, पद्म भूषण, आईसीसी हॉल ऑफ फेम, ये सम्मान मिले हैं कपिल देव को। उनके जीवन पर आधारित फिल्म 83 भी बनी, जिसमें 1983 विश्व कप की कहानी दिखाई गई। इस फिल्म में अभिनेता रणवीर सिंह ने कपिल देव की भूमिका निभाई। कपिल देव की कहानी हमें सिखाती है कि बड़े सपने देखने चाहिए, मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती। नेतृत्व का मतलब होता है दूसरों को साथ लेकर चलना। आत्मविश्वास से असंभव भी संभव हो सकता है। हरियाणा की मिट्टी से निकला एक खिलाड़ी जिसने पूरे भारत को जीतना सिखाया। कपिल देव सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं, बल्कि भारतीय खेल इतिहास का सुनहरा अध्याय है।

0: क्या आप परेशान हैं?
1: मैं परेशान, परेशान, परेशान, परेशान।
2: क्या आप खुश हैं?
3: आज मैं ऊपर।
0: क्या आप डांस करना चाहते हैं?
4: पापा के नखरे मुझे कर दे।
2: क्या आपका दिल टूटा हुआ है?
5: दिल के टुकड़े टुकड़े करके।
0: या आप प्यार में हैं?
6: पहला पहला प्यार है।
2: क्या आप अपने पुराने दिनों में लौटना चाहते हैं?
7: कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन।
0: तो मैसेज कीजिए 9729253272 पर,
2: क्योंकि हमारे पास है हर गाना आपके मूड और सिचुएशन के हिसाब से।
0: कार्यक्रम संदेश आपके गीत हमारे, हर मंगलवार और शुक्रवार रात 10 बजे
2: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।
0: वर्मा जी को चाहिए सुबह सुबह ताजा खबरें।
8: आज के समाचार कुछ इस प्रकार हैं।
2: और मिसेज वर्मा को सिर्फ संगीत।
9: मैं अलबेली घूमू अकेली।
0: दादा दादी को मिल जाए कोई ऐसा जो उनके साथ उनके समय की बातें करे।
10: अभी न जाओ छोड़ कर।
2: और बच्चों के लिए जरूरी है ज्ञान।
0: कैसा हो यदि सब कुछ मिले एक ही जगह एक ही समय पर?
2: सुनिए संपूर्ण पारिवारिक कार्यक्रम नमस्ते हिसार
0: रोज सुबह 10 बजे से 11 बजे तक
2: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।
0: हर सुबह एक मौका है
2: खुद को कल से बेहतर बनाने का।
0: कोई है जो आपको एहसास दिलाता है
2: कि आप में दम है कुछ कर दिखाने का।
0: कीजिए अपने दिन की बेहतरीन शुरुआत
2: आकाशवाणी हिसार के साथ।

0: सुनिए कार्यक्रम सुप्रभात
1: रोज सुबह 7:40 पर
0: सिर्फ आकाशवाणी 1002.3 FM पर।

दोस्तों अब बात करते हैं रेडियो से जुड़ी कुछ बातें की। जी हाँ, रेडियो आप दिन रात सुनते हैं, अपनी फरमाइशें भेजते हैं, अपने नाम सुनते हैं, गीत सुनते हैं, समाचार सुनते हैं, लेकिन उससे जुड़ी कुछ बातें आज हम आपको बताएंगे। दोस्तों रेडियो सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि आवाज़, भावनाओं और यादों की दुनिया है, और हमारी सबकी बहुत सारी यादें रेडियो से जुड़ी हैं, कभी बचपन से तो कभी बड़े होने तक, कभी किसी गीत को लेकर तो कभी किसी प्रोग्राम को लेकर। तो आज जानते हैं रेडियो से जुड़े कुछ मज़ेदार और रोचक तथ्य। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत हुई 1927 में। बाद में इसका नाम ऑल इंडिया रेडियो रखा गया, जिसे आज हम ऑल इंडिया रेडियो या आकाशवाणी के नाम से जानते हैं। आकाशवाणी नाम दिया रविंद्रनाथ टैगोर ने रेडियो के लिए, उन्होंने सुझाया था, जिसका अर्थ है कि आसमान से आने वाली आवाज। दोस्तों एक समय ऐसा था जब टीवी और इंटरनेट नहीं होते थे। लोग देश दुनिया की खबरें सुनने के लिए सिर्फ रेडियो पर निर्भर रहते थे, और युद्ध के दौरान भी लोग रेडियो से ही महत्वपूर्ण जानकारी ले पाते थे। रेडियो, सबसे खास बात जो है रेडियो की वो यही है कि इसमें सिर्फ आवाज होती है, लेकिन फिर भी लोग उससे भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं। आवाज की ताकत ही रेडियो की असली पहचान है। बिल्कुल, आप लोगों का जो प्यार है वो आपके मैसेजेस, आपके लेटर्स और आपकी फोन कॉल्स, आपके जो व्हाट्सएप संदेश है, ईमेल्स है, इनके जरिए हमें मिलता रहता है, और हम ये बात बहुत अच्छे से समझते हैं कि जो ये आवाज का नाता है ये बहुत गहरा है। भारत में लंबे समय तक खेती और मौसम से जुड़े रेडियो कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत लोकप्रिय रहे। किसानों को फसल, मौसम और पशुपालन की जानकारी भी रेडियो से मिलती है। जी हाँ दोस्तों, किसान वाणी कार्यक्रम कह लीजिए, या हमारे गांव कार्यक्रम कह लीजिए, या फिर कह लीजिए लोकरंग कार्यक्रम, या थारी मारी पसंद, सभी कार्यक्रम हमारे श्रोता बहुत चाव से सुनते हैं, और आप लोगों के लिए सूचना, ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर ये कार्यक्रम होते हैं। किसान भाइयों के लिए तो ये कार्यक्रम बहुत लाभकारी होते हैं, क्योंकि इनमें दी गई जानकारी के अनुसार जब वो काम करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये बहुत फायदेमंद भी रहता है। भारत में पहले FM रेडियो की लोकप्रियता 1990 के दशक में तेजी से बढ़ी। साफ आवाज और संगीत से जो युवा थे वो खूब आकर्षित किए गए। मोबाइल और इंटरनेट के दौर में भी रेडियो की लोकप्रियता खत्म नहीं हुई है। आज भी लोग गाड़ी चलाते समय, खेतों में काम करते समय, सुबह की चाय के साथ रेडियो सुनना पसंद करते हैं, और हम ये बखूबी जानते हैं जब हमारे बहुत सारे श्रोता हमें हेलो हिसार में फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि हम अभी खेती कर रहे थे, हम अभी खेत में थे लेकिन समय हो गया इसलिए कॉल मिलाई। बहुत अच्छा लगता है जानकर कि आप लोग अपने काम के साथ साथ हमारे रेडियो के लिए इतना महत्वपूर्ण समय निकालते हैं, और हमें अच्छा लगता है, हमें संदेश भेजते हैं, खासकर नमस्ते हिसार में जब सवालों के जवाब हमें आते हैं, चाहे सही हो या गलत, ये जो आपके संदेश हैं ये साबित करते हैं कि आप लोग हमें कितना प्यार करते हैं, कितना साथ देते हैं, कितना समय देते हैं, और यही जो बातें हैं ये आपको हमसे और हमको आपसे जोड़े रखती हैं। रेडियो दिखाई नहीं देता लेकिन उसकी आवाज़ सीधे दिल तक पहुंच जाती है, और आज तो रेडियो सबकी जेब में है। न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर आप आकाशवाणी हिसार भी बहुत अच्छे से सुनते हैं, और अपनी जेब में रेडियो लेकर चलते हैं, कहीं भी कैसे भी आप रेडियो से जुड़े रहते हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।

तो दोस्तों, हंसी, संगीत और बहुत सारी प्रेरणादायक बातों और अपनेपन से भरे आज के इस खूबसूरत सफर का वक्त अब यहीं पूरा होता है। उम्मीद करती हूँ नमस्ते हिसार का आज का ये साथ आपके चेहरे पर मुस्कान और दिल में बहुत सारी पॉजिटिव ऊर्जा छोड़ गया होगा। आज हमने बात की अपने शहर की, अपने लोगों की, प्रेरणा की, ज्ञान की और उन छोटी छोटी खुशियों की जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को खास बनाती हैं। दोस्तों, जिंदगी बहुत तेज भाग रही है, लेकिन इस भागदौड़ में अपने परिवार, अपने रिश्तों और अपने मुस्कान के लिए थोड़ा वक्त जरूर निकालिए। खुश रहना कोई बड़ी बात नहीं है, बस छोटी छोटी बातों में अपनी खुशी ढूंढिए। अगर सुबह की शुरुआत बहुत अच्छे विचारों से हो तो दिन भर मन में उम्मीद बनी रहती है, इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचिए, दूसरों की मदद कीजिए और अपने सपनों पर विश्वास कीजिए। और हाँ, गर्मी का मौसम है तो पानी खूब पीजिए, धूप से बचिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। मैं हूँ आप सभी की अपनी रेडियो हमसफर प्रीति ढिंडोरिया। अब दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मिलेंगे एक और नए नमस्ते हिसार कार्यक्रम में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, सुनिए अपना पसंदीदा कार्यक्रम FM बैंड 102.3 MHz पर। यह है आकाशवाणी का हिसार केंद्र। सुबह के 11 बज चुके हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई से अनुप्रसारित कार्यक्रम। कृपया अनुप्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

रंग तरंग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं मंजू द्विवेदी। कार्यक्रम की शुरुआत हरिहरन की आवाज से। शब्दकार मुस्तार सिद्दीकी, संगीत हरिहरन का और एल्बम का नाम लविंगली योर्स।

0: आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर आज यानी 8 मई को विविध भारती एक वॉकथॉन आयोजित कर रहा है।
1: तुम भी चलो हम भी चले चलती रहे।
0: तो आज शाम 5 बजे मिलिए गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर। और चलिए हमारे साथ वॉकथॉन पर।
1: चलो चले मितवा।
0: आकाशवाणी के 90 बरस के जश्न में हिस्सा लीजिए, विविध भारती के सदस्यों के साथ वॉक कीजिए।
2: चलते चलते
0: आज शाम 5 बजे गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर।
1: आजा शाम होने आई।
3: अली मोरे अंगना इस एल्बम का गाना शुभा मदकल की आवाज से, इन्हीं का लिखा हुआ गीत संगीत जवाहर वत्तल का।

0: दिनों एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए, ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ या लिक्विड जो भी नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमीडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है या प्रेग्नेंट

0: प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं. जो जो लिक्विड हो अप्रॉक्सिमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो. सेकेंडली आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए. तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए. और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए. उसका आपको आईवी लगाना पड़े या ओआरएस आपको ओरली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े. डिपेंड्स, अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है. तो इससे बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में. हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है.
1: यह है अभिजीत सावंत की आवाज, समीर के बोल, हरदीप सिद्धू और प्रेम पाल हंस का संगीत है.

0: आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर आज यानी 8 मई को विविध भारती एक वॉकथॉन आयोजित कर रहा है।
1: तुम भी चलो, हम भी चले, चलती रहे।
0: तो आज शाम 5 बजे मिलिए गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर। और चलिए हमारे साथ वॉकथॉन पर।
1: चलो चले मितवा।
0: आकाशवाणी के 90 बरस के जश्न में हिस्सा लीजिए, विविध भारती के सदस्यों के साथ वॉक कीजिए।
2: चलते चलते
0: आज शाम 5 बजे गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर।
1: आजा।

पंकज उदास की आवाज आपने सुनी, शब्दकार जफर गोरखपुरी, संगीत पंकज उदास का, एल्बम लाइफ स्टोरी।

रंग तरंग कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश अदनान सामी की आवाज मकबूल ख्वाजा के बोल संगीत अदनान सामी का एल्बम किसी दिन।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई सन 1951 में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज एक राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल की बैठक आज होगी। गृहमंत्री अमित शाह पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यू टाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप दासगुप्ता, कोलकाता।
0: असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय वायुसेना ने कल ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन TARA हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने TARA हथियार की पहली परीक्षण उड़ान के लिए DRDO, वायुसेना, DCPP और उद्योग को बधाई दी है। उन्होंने से भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण विकास बताया। वियतनाम के राष्ट्रपति और कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव तो लाम कल रात 2 दिन की राजकीय यात्रा पर श्रीलंका पहुंचे। उनके साथ 209 सदस्य प्रतिनिधिमंडल भी आया है। ये यात्रा दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की 55वीं वर्षगांठ पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के निमंत्रण पर हो रही है। राष्ट्रपति तो लाम श्रीलंका के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और कोलंबो में आयोजित श्रीलंका वियतनाम व्यापार, निवेश और पर्यटन फोरम में हिस्सा लेंगे। दोनों पक्षों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार न हो। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। श्री ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि अपने लोगों की हत्या करने वाले ऐसे शासन को हथियार प्राप्त करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए जिससे लाखों लोगों की जान जा सकती हो। उन्होंने बताया कि अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार को लेकर भी बातचीत हुई। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन ने भी सोशल मीडिया पर बातचीत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया से जुड़े घटनाक्रमों और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ समन्वय पर बातचीत की। बांग्लादेश में खसरे की स्थिति और गंभीर हो गई है। खसरे के संक्रमण से कल 12 और बच्चों की मौत हो गई। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अनुसार 15 मार्च के बाद से देश में 57 लोगों की मौत खसरे से और 279 लोगों की मौत खसरा जैसे संक्रमण से हुई है। महानिदेशालय ने बताया कि परीक्षण किट की कमी से संकट और गहरा गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.5% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 427 अंक गिरकर 77,418 पर, जबकि निफ्टी 121 अंक की गिरावट के साथ 24,205 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन प्रस्तुति कार्यक्रम यादों की महफिल। दोस्तों 8 से 12 मई तक हम मना रहे हैं सड़क सुरक्षा सप्ताह। सड़क पर वाहन चलाते समय सुरक्षा का ध्यान रखना बेहद ही जरूरी है। सड़क पर चलने के जो नियम हैं उनका पालन करें, ट्रैफिक सिग्नल का पालन करें, बेल्ट पहनना, हेलमेट पहनना, ये सब बातें हमारी सुरक्षा के लिए है। तो इसी विषय से जुड़े कुछ गाने हम सुनेंगे आज यादों की महफिल इस कार्यक्रम में। पहला जो गीत है ये कूली फिल्म का गाना, शब्बीर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर आज यानी 8 मई को विविध भारती एक वॉकथॉन आयोजित कर रहा है।
1: तुम भी चलो हम भी चले चलती रहे।
0: तो आज शाम 5 बजे मिलिए गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर। और चलिए हमारे साथ वॉकथॉन पर।
1: चलो चले मितवा।
0: आकाशवाणी के 90 बरस के जश्न में हिस्सा लीजिए, विविध भारती के सदस्यों के साथ वॉक कीजिए।
2: चलते चलते
0: आज शाम 5 बजे गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर।
1: आजा शाम होने आई।
0: वाक्य ऐसा है।

0: है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए, ओआरएस हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ या लिक्विड जो भी नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमीडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो अप्रोक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उसको आपको आईवी लगाना पड़े या ओआरएस आपको ओरली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इससे बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में, हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।
2: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है यादों की महफिल। अब कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक ब्रेक का।

0: ब्रेक का समय पूरा हो चुका है, अब आपको सुनवाने जा रहे हैं चलती का नाम गाड़ी, इस फिल्म का गाना किशोर कुमार और मन्ना डे की आवाजों में। मजरू सुल्तानपुरी की बोल, संगीत है एसडी बर्मन का।
1: बाजू।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखिया ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
1: कुंवारा बाप फिल्म का ये गाना किशोर कुमार महमूद और साथियों की आवाजों में मजरूह सुल्तानपुर के बोल, संगीत है राजेश रोशन का।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बहाने खिली पहनी।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
1: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
0: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
2: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
0: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
2: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
0: जब आप सुनते हैं त्रिवेणी,
2: तुम आ गए हो, नूर आ गया है।
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
3: यादों की महफिल इस कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं मेरा नाम जोकर। इस फिल्म का गाना मन्ना डे की आवाज में, नीरज के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत है।

दुनिया ये सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है और रिंग मास्टर के घोड़े पर थोड़ा जो भूख है थोड़ा जो पैसा है थोड़ा जो किस्मत है नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है ये भाई जरा देख के चलो आगे

गिरने से डरता है क्यों, मरने से डरता है क्यों। ठोकर तो जब तक न खाएगा, पास किसी गम को न जब तक बुलाएगा, जिंदगी हर चीज

0: रहता है कूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही जीने में भौंकता का डर है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही जीने में भौंकता।

0: आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर आज यानी 8 मई को विविध भारती एक वॉकथॉन आयोजित कर रहा है।
1: तुम भी चलो, हम भी चले, चलती रहे।
0: तो आज शाम 5 बजे मिलिए गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर। और चलिए हमारे साथ वॉकथॉन पर।
1: चलो चले मितवा।
0: आकाशवाणी के 90 बरस के जश्न में हिस्सा लीजिए, विविध भारती के सदस्यों के साथ वॉक कीजिए।
2: चलते चलते
0: आज शाम 5 बजे गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर।
1: आजा शाम होने आई।
3: यह है जीत फिल्म का गाना, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारीलाल।

यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला गाना खुद्दार फिल्म का गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में बोल मजरू सुल्तानपुरी के संगीत है राजेश रोशन का।

भाभी फिल्म का ये गाना आपने सुना नितिन मुकेश और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में, हसरत जयपुरी के बोल और संगीत अनु मलिक का। इस गीत के साथ ही आज का यादों की महफिल ये कार्यक्रम संपन्न होता है।

0: दोस्तों नमस्कार, सुरीला सफर इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज के कार्यक्रम के साथ मैं हूं मंजू द्विवेदी। दोस्तों विविध भारती के फेसबुक पेज पर आपने आज की इबारत यानी कि आज जो टेक्स्ट हमने भेजा है वो तो आपने पढ़ ही लिया है और इससे संबंधित बहुत सारी बातें भी आपने हमें लिख भेजी है, उससे पता चलता है कि कितनी शिद्दत से आपने उसे पढ़ा है। अगर नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, हम आपको इसे पढ़ करके सुना देते हैं। शादियों का मौसम चल रहा है तो ख्याल आया कि ऐसे में सजना संवरना तो बनता है, अगर चंद्रहार मिल जाए तो सैया से नैना लड़ाने से कौन रोकेगा। शादी में जाएंगे तो दोस्तों के बीच खान पान और मौज मस्ती होगी, दुल्हा दुल्हन रस्म रिवाजों के बंधन में बंध जाएंगे, फिर दुल्हन अपनों की दुआएं लेकर इस घर आंगन से विदा होगी। आधी रात जब चंद्रमा आधा होगा तो बातें होंगी, दिन प्यार करने के होंगे और प्यार से बना एक प्यारा घर होगा जो उनकी नजरों में सबसे न्यारा होगा। ये आज का जो टेक्स्ट है हमने प्रेषित किया, आपने पढ़ा और नहीं पढ़ा तो हमने आपको पढ़ के सुना दिया। और जिन शब्दों के गाने हमने शामिल किए उन पर थोड़ा सा हमने जोर भी देकर के पढ़ा है ताकि आपको समझ में आ जाए। एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि सुरीला सफर में एक बात तो है जो बांधे रखता है और वो ये है कि आपका गाना बजे या ना बजे एक्साइटमेंट बरकरार रहती है, आपकी बातें भी हमें बांधे रखती है और आज के गाने मुझे लगता है शादियों की नोकझोंक से भरे होंगे। एक साथी हमारी ये भी लिख रही है कि शहनाइयों की गूंज बता रही कि खुशियों ने दस्तक दे दी है और ऐसे में अगर खनकती चूड़ियों के साथ माथे पर बिंदिया सज जाए तो महफिल में चार चांद लगना तय है, बारातियों के स्वागत में हंसी ठिठोली होगी, पकवानों की खुशबू से आंगन महकेगा और फेरों के वक्त जब सात वचनों की गूंज होगी तो हर आंख में दुआओं का समंदर होगा, विदाई की उस घड़ी में बाबुल की लाडली जब नए सफर पर निकलेगी तो यादों का कारवां साथ होगा, फिर तारों भरी वो पहली रात होगी, मीठी बातों के सिलसिले होंगे और शुरू होगा एक ऐसा सफर जिसमें दो दिल मिलकर अपने सपनों का।
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती मुंबई से अनुप्रसारित कार्यक्रम। एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। दिन के 1:05 होने को है। अब से चंद पलों के बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, अनुप्रसारण होगा आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आप सुकेर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम में विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभार्थियों के खातों में करोड़ों रुपए की राशि हस्तांतरित की, जिसमें लाडू लक्ष्मी योजना की 7वीं किस्त शामिल है। मुख्यमंत्री ने 9,76,000 बहनों के खाते में 205 करोड़ रुपए की राशि जारी की।
1: अगर प्रदेश में जो बेनिफिशरीज हैं उन बेनिफिशरीज को सीधा लाभ उनके खाते में पहुंचाने का काम पारदर्शी तरीके से हमारी सरकार कर रही है। आज लाडू लक्ष्मी योजना की 7वीं किस्त जारी करते हुए मुझे खुशी हो रही है। अब तक 7 किस्तें जारी की जा चुकी है। 7 किस्तों में बहनों के खाते 1,415 करोड़ रुपया जमा किए। ये महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक बड़ा इनिशिएटिव था।
0: मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशनों के तहत 35,62,000 लाभार्थियों को 1146 करोड़ 73 लाख रुपए जारी किए हैं। इसी तरह मुख्यमंत्री ने किसान मुआवजा राशि भी जारी की।
2: जो फसल खराब हुआ था खरीफ का, उसमें 1,50,583 किसानों को आज 370 करोड़ 52 लाख रुपए की मुआवजा राशि आज जारी की।
0: इसके अलावा दयालु योजना के तहत 5,677 परिवारों को 215 करोड़ 29 लाख रुपए की सहायता राशि और 11,23,000 बहनों के खाते में गैस सिलेंडर सब्सिडी की 38 करोड़ 54 लाख रुपए की राशि जारी की गई। साथ ही 64,923 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के रूप में 100 करोड़ 45 लाख रुपए की राशि डिजिटल माध्यम से प्रदान की गई। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया। लगभग 3.5 किलोमीटर की यह दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में संपन्न हुई। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन तथा दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्य ने इस मैराथन में भाग लिया। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी। यह देश का सर्वाधिक विश्वसनीय प्रसारण माध्यम है, जो विभिन्न भाषाओं में समाचार बुलेटिन के अलावा संगीत, मनोरंजन और जन उपयोगी कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। यह मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। इस बीच सरकार ने कहा है कि 6 मई तक मंडियों से 78,96,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 75,63,000 मीट्रिक टन था। हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व कृषि कल्याण संगठन ने पराली प्रबंधन को लेकर संयुक्त प्रयास शुरू कर दिए हैं। राज्य सरकार पराली प्रबंधन को लेकर प्रति एकड़ 1200 रुपए की प्रोत्साहन राशि दे रही है। भिवानी में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी ने बताया कि जिले में किसानों को पराली जलाने से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक किया जा रहा है। उन्हें यह भी बताया जा रहा है कि पराली जलाने वाले किसानों को सरकार से मिलने वाले अनुदान बंद कर दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पराली जलाने वाले किसानों पर नजर रखी जा रही है। अभी तक भिवानी जिले में इंटरनेट के माध्यम से 74 पराली जलाने के मामले सामने आए हैं। इनमें से 18 मामलों में FIR दर्ज की गई है और एक मामले में 5,000 का जुर्माना लगाया गया है। इंडिया AI और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से अपनाने के लिए नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि यह साझेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और व्यापक अनुप्रयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश अनुसार पलवल जिला न्यायालय द्वारा कल 9 मई को आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल संचालन के लिए 7 बेंचों का गठन किया गया है। इसी के साथ ही

0: प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार अनुप्रसारित किए गए आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से। एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हिसार केंद्र से। दिन के 1:10 हो चुके हैं। आइए लौटते हैं विविध भारती के मुंबई केंद्र आगामी रंगारंग प्रसारण के लिए।

इसके संगीतकार हैं उषा खन्ना। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि अरे वाह, एकदम ठीक शुरुआत। शादियों से पहले शादी का ख्याल तो आता ही है ना, तभी तो उसके बाद ही बात आगे बढ़ती है। लेकिन इसी के साथ एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि भाई शादियों का मौसम चल रहा है तो ये अब शादी का ख्याल कहाँ से आया, चाय की बात कहाँ से आई, वो तो पहले ही हो चुकी है। जी हाँ, इन बातों को हमें एक डोर में बांधना होता है और इसीलिए इन शब्दों को जोड़ करके गाने बनाए जाते हैं, तो ऐसी बातें होती है। चलिए, एक साथी लिख रहे हैं कि शादी जैसे शुभ अवसर पर सजना संवरना उत्सव की भव्यता बढ़ाता है और सामाजिक मान्यताओं को मजबूत करता है। दुल्हन का श्रृंगार परिवार में लक्ष्मी के आगमन का संकेत देता है। ये परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है जो विवाह को पवित्र बनाती है। शादी में सजना संवरना भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है जो न केवल सौंदर्य बढ़ाता है बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को भी बढ़ाता है। एक साथी लिख रहे हैं कि शादी, दुल्हन, श्रृंगार, कपड़े, खासकर जेवर सिर्फ सजावट नहीं बल्कि परंपरा, संस्कृति और नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक होते हैं। निश्चित रूप से दुल्हन की शोभा बढ़ाते हैं और उसे सबसे अलग और खास लुक देते हैं। भारतीय शादियों में दुल्हन के लिए आवश्यक पारंपरिक जेवर होती है। गले में भारी और कलात्मक हार जैसे कुंदन, पोलकी या टेम्पल ज्वेलरी दुल्हन के मुख्य आकर्षण होते हैं। मांग टीका या माथा पट्टी माथे पर पहना जाता है जो चेहरे की सुंदरता को दोगुना कर देता है। लेकिन हमने आपसे ये कहा कि कहीं आप शादी में गए, वहां का कोई रोचक अनुभव हो तो वो हमसे साझा कीजिए। उसके बाद दो सवाल और हैं हमारे, तो वो भी हम आपसे पूछेंगे। अब हम अपनी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ख्याल आया और ख्याल क्या आया, ऐसे में सजना संवरना तो बनता है। चलिए, सौदागर फिल्म का गाना, आशा भोसले की आवाज, गीत और संगीत रविंद्र जैन का। कौन सी अभिनेत्री ये गाना गा रही है ये आप हमें

पद्मा खन्ना पर फिल्माया गया ये गाना है। साथियों के कमेंट्स आने लग गए हैं कि शादी ब्याह में जब वो जाते हैं तो कौन सी कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो हमें हंसा देती है या मन को एक यूं कहते हैं खुशी से भर देती। तो एक साथी लिख रहे हैं कि मेरी शादी आखिरी लगन जुलाई में हुई थी, उसमें बाराती दो दिन का प्रवास करता था, मूसलाधार बारिश में छाता पकड़ फेरे लिए थे। जो आज भी तस्वीर देखते हैं तो याद आता है बरसात में तुमसे मिले हम सनम। आज 38 बरस हो गए विवाह को, किंतु वो बरसात में फेरे लेना आज भी याद है। एक साथी लिख रहे कि उस समय शादी समारोह के भोजन में खाना परोसते थे, बूफे सिस्टम नहीं था, मुझे लाल कद्दू की साग पसंद नहीं है तो मैंने वो पहले खत्म कर दी। उन्हें लगा कि मुझे साग बहुत पसंद आई और वो बार बार परोसते रहे और मैं जबरदस्ती खाती रही। पकवान लड्डू तो दूर ही रह गए, क्या करें, उस वक्त उम्र छोटी थी, समझ नहीं पाया। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि शादी का मौसम चल रहा है, 1 मई 2026 को हमारे पड़ोसी की बेटी की शादी थी अजमेर में एक होटल के ग्राउंड में। बारात आ गई, दूल्हा स्टेज पर पहुंच गया, दुल्हन भी स्टेज पर पहुंच गई, वरमाला की रस्म कंप्लीट हुई थी कि अचानक तेज बारिश हो गई और घर के सदस्य और गेस्ट भी गीले हो गए। महिलाएं जो सच सवर के आई थी, तेज बारिश के कारण मेकअप खराब हो गया और मैं स्वयं और धर्म पत्नी भी गीले हो गए। तो इस तरह से ये जो समारोह है थोड़ा सा गड़बड़ा गया। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि एक रिश्तेदार की शादी में स्टार्टर और कुछ खाने की चीजें देने वाले वेटर घूम रहे थे, सबको दे रहे थे। मेरे पास आकर एक प्लेट मुझे दी, मैंने उसे एक कोने में ले जाकर उसे ही खाने को कहा। साथ में ये भी कहा कि आप इतनी मेहनत कर रहे हो और आप सबको रात 12 बजे के बाद आपको खाना मिलेगा तो आप पहले खा लो। वो मना करने लगा कि कोई देख लेगा। मैंने मेरी जिम्मेदारी पर उसे खाना खिला ही दिया। उनको ये बात बहुत अच्छी लगी और कहने लगे कि कोई भी ऐसा हमारे बारे में नहीं सोचता है। जी, आपकी सोच बहुत हमें भी पसंद आई कि आपने दूसरों के बारे में पहले सोचा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा जो टेक्स्ट है उसकी अगली लाइन पर थोड़ा सा गौर करते हैं। अगर चंद्रहार मिल जाए तो सैया से नैना लड़ाने से कौन रोकेगा। इसमें दो गाने छुपे हुए हैं। तो पहला जो गीत है यानी कि चंद्रहार वाला, वो ये है। लता जी की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, साधना और सुनील दत्त पर फिल्माया गया ये गाना है। फिल्म कौन सी है ये आप हमें बताए।

ये जो गाना आपने सुना गबन फिल्म का ये गाना है। एक साथी लिखते हैं कि शादी ब्याह की बात छेड़ते ही गहनों की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है, और उस पर कोई दुल्हन चंद्रहार पहन ले तो उसके सौंदर्य के आगे तो चांद भी शर्मा जाता है। एक हमारे साथी ने लिखा है कि शादी की एक बात बहुत ही मजेदार जो हम कभी नहीं भूलते, हमारे भाई की शादी से पहले जब लेडीज संगीत होता है तो उसमें हमें थोड़ी मस्ती सूझी और हम बीच में से उठ करके अपने छोटे भाई की जींस और शर्ट और एक केप लगाकर आकर बैठ गए। बाद में जब सबकी नजर गई तो सब इतना हंसे और सबने अपने साथ फोटो खिंचवाई और डांस भी किया। एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि शादी का सीजन चल रहा है, अभी कुछ ही दिन पहले मैं शादी में गया था तो जहां भी जाता हूं सिर्फ परोसना चालू हो जाता हूं। ऐसे में दोस्तों को ज्यादा ज्यादा प्यार से खिलाना मुझे बहुत पसंद आता है। एक शादी में जब दोस्तों ने 10 गुलाब जामुन और 4 दोना रायता रख दिया, अब तो मुझे पीना होगा और खाना होगा, और सचमुच उन्होंने मुझे बहुत ही गहरा बना दिया। अब इसका अर्थ अंत में क्या था ये समझ में नहीं आया। इतनी बात समझ में आई कि आप सबको खिलाते थे, एक बार आप गए तो दूसरे दोस्तों ने आपको बहुत सारा खाना परोस दिया और कहा कि खाना ही पड़ेगा, तब आपको समझ में आया कि ज्यादा खाना किसी को खिलाने से क्या होता है। चलिए धन्यवाद आपका। अब हम अगली बात आपसे पूछना चाहते हैं कि जब हम या कोई भी बाराती बनकर जाते हैं तो हमारा व्यवहार कितना संयमित होना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि जो बाराती आते हैं तो शादी ब्याह में वो कुछ ऐसी ऐसी चीजों की डिमांड करते हैं जो कि पूरी नहीं कर पाते हैं घराती, या फिर बहुत हुड़दंग करते हैं तो उससे भी व्यवधान आता है, या कोई असंयमित व्यवहार करते हैं तो भी शादी समारोह की शोभा जो है वो कम हो जाती है। तो किस तरह का व्यवहार बारातियों को करना चाहिए, कितना संयम रखना चाहिए, इस बारे में भी हम आपके विचार जानना चाहते हैं। अगला गाना सैया से नैना लड़ाने से कौन रोकेगा, अर्धांगिनी फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, वसंत देसाई का संगीत। कौन सी अभिनेत्री ये गाना गा रही है बताइए हमें।

अभिनेत्री मीना कुमारी पर फिल्माया गया गाना है। साथ ही हमारे लिखते हैं कि जिसे विवाह या परिणय सूत्र भी कहा जाता है, शादी ये मानव समाज का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र स्तंभ है। ये केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं बल्कि दो परिवारों, संस्कृतियों और विचारधाराओं का संगम है। भारतीय परिवेश में तो शादी को सात जन्मों का बंधन माना जाता है जो उसकी गहराई और गंभीरता को दर्शाता है। और एक साथी लिख रहे हैं कि आज मंजू जी बड़ी सहजता और सरलता से धीरे धीरे बात करते हुए इस शादी के सफर को पूरा कर रही है और हम सब बाराती बनकर इस शादी में जरूर शामिल हो रहे हैं। हाँ, कोई ढोलक बजाएगा, कोई गीत गाएगा, कोई दुआएं देगा, कोई मस्ती करेगा। अभी बात खत्म नहीं हुई है और ये बात और भी आगे बढ़ेगी। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि मेरी शादी को इसी महीने 28 मई को 40 साल पूरे हो जाएंगे। शादी शाम को 6:45 पर थी। सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को बारात में नाचना था, किंतु मेरे बड़े भैया ने बारात को शॉर्टकट से ले जाकर मंडप में पहुंचा दी और कह रहे थे शादी का मुहूर्त निकल जाएगा और सब नाराज हो गए। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि ये 80 के दशक की बात है। मेरे गांव में दो जुड़वा बहनों की शादी थी। सब रीति रिवाज बहुत ही अच्छी तरीके से हो गई। विदाई के समय में घर परिवार वाले रोने धोने लगे हुए थे और इसी गहमा गहमी में रिश्तेदारों ने दोनों कन्याओं की विदाई करवा दी। बारात अलग अलग गांव से आई थी। बाद में पता चला दोनों दुल्हनों के ससुराल में अदला बदली हो गई है। फिर आनंद फानंद में उनके सही घर में उन्हें पहुंचाया गया। आज भी वो घटना याद करके वहां के जो निवासी है वो हंसने लगते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारी बात आगे बढ़ती है कि दोस्तों के बीच जो हमने आपसे टेक्स्ट जो लिखा है उसके बारे में कि शादी में जाएंगे तो दोस्तों के बीच खान पान और मौज मस्ती होगी, तो इन्हीं बातों पर जो गाना है आपकी खातिर इस फिल्म का गाना है। शैली शैलेंद्र की आवाज, बप्पी लाहिरी का संगीत, विनोद खन्ना, रेखा और साथियों पर फिल्माया गया यह गाना है। आवाज किसकी है ये आपको पहचानना है।

तो दोस्तों की बातें हो गई। एक हमारे साथी की बात अब आपको पढ़ के सुनाते हैं। लिखते हैं कि बारात का उद्देश्य केवल खाना पीना और नाचना नहीं है, बल्कि एक नए रिश्ते की गवाही देना है। रस्मों के दौरान शांति बनाए रखना और वधु पक्ष की भावनाओं को समझना जरूरी है, विशेषकर विदाई के समय जब एक परिवार अपनी बेटी को विदा कर रहा होता है। बारातियों का व्यवहार अत्यंत संवेदनशील और धैर्यपूर्ण होना चाहिए। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि आपका व्यवहार ही आपका परिचय होता है, ये बात हर बाराती को ध्यान में रखना चाहिए। एक साथी लिखा है कि हमारे यहाँ दूल्हे का कान पकड़ने की रस्म होती है, जिसमें 7 फेरों के बाद दुल्हन का भाई दूल्हे का कान पकड़ के रखता है और जब तक उसका नेक नहीं मिलता तब तक पकड़ कर रखता है। हम सब जब भी मेरे भाई की शादी की सीडी देखते हैं तो यह सब रस्में देखकर बहुत ही हंसी आती है। एक साथी लिखते हैं कि 11 मार्च 1992 को गंगानगर जिला संगरिया में रात 10 बजे ठीक खाने के समय ऐसा तूफान आया कि सब कुछ उड़ा के ले गया, शादी का मजा किरकिरा हो गया। एक साथी लिखते हैं कि दीदी आपका एक सवाल बहुत अच्छा है। हाल ही में अपने भतीजे की शादी में गई थी, लड़की वालों ने जूती चुराई की रस्म में मुंह खोलकर पैसे मांगे, जो होना नहीं चाहिए। रस्मों को तोड़ मरोड़ कर अपनी मांग पूरी करना ये गलत बात है। जूते चुराई में बहुत झगड़ा और झंझट हुआ था। तो भाई शादी ब्याह का जो कार्य होता है सबके लिए एक अत्यंत शुभ और खुशी का मौका होता है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। चलिए, दूल्हा दुल्हन रस्मों रिवाजों के बंधन में बंध जाते हैं, ये हमारी बात है, टेक्स्ट में लिखी हुई बात। चलिए इसी पर एक गाना सुनवाते हैं, मोम की गुड़िया। इस फिल्म का गाना लता जी की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। अभिनेत्री कौन है आप बताइए।

अभिनेत्री तनुजा पर फिल्माया गया एक ये गाना आपने सुना। एक साथी लिखते हैं, जिस पिता की बेटी पराया घर जाने वाली है उस पिता को बहुत दर्द होता है क्योंकि उसने फूलों की तरह उसे प्यार किया है। उस पिता ने अपने जीवन भर की कमाई अपनी बेटी के दहेज में दे दी है। फिर हम बारात लेकर जाते हैं, एक मर्यादा सहनशीलता और अनुशासन ढंग से हमें बारात में जाना चाहिए और दोनों परिवार और प्रेम और स्नेह का आशीर्वाद देना चाहिए। यहाँ अभी अगला जो गाना है हम आपको सुनवाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक बात आपसे पूछना चाहते हैं कि बेटी की विदाई के समय उसे क्या सीख देनी चाहिए, ये आप हमें लिख करके भेजिए। और एक हमारे साथी ने ये बात लिखी है कि हाँ, ये जो गीत है इसके बारे में मैंने सोचा तो था, यानी जो अभी मोम की गुड़िया फिल्म का गाना, लेकिन उसके बारे में हमने लिखा नहीं, पर पसंद है गाना और आपने सुनवा दिया। एक साथी लिखने की बारात का उद्देश्य एंजॉयमेंट करना ही नहीं है, बाराती घराती को बहुत तंग भी करते हैं और जिसे कभी कभी माहौल बहुत खराब भी हो जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक साथी लिखने की पुराने जमाने में नीचे बैठकर यानी पंगत में खाने में तो मजा आता है, बुफे में नहीं आता है, वही अब शादियों में बुफे के बदले टेबल कुर्सियों पर बिठा कर खाना परोसा जाता है, ये बदलाव काफी अच्छा और सफल भी हो रहा है। और एक साथी ने ये बात लिखी है कि समय धीरे धीरे बदल रहा है, हमारे भारत के कई शहरों में और कुछ समाजों में यह सख्त फैसला लिया गया है कि शादी में निश्चित प्रकार के व्यंजन ही बनाए जाएंगे और खिलाए जाएंगे ताकि व्यंजन व्यर्थ ना जाए और दुल्हा दुल्हन के माता पिता पर खर्च का बोझ ना पड़े, अन्य फिजूल खर्चों को भी रोका जाए। मेरी प्रभु परमेश्वर से ये प्रार्थना है कि हमारे संपूर्ण देश में सभी समाजों में ये निर्णय लेना चाहिए। चलिए अब हम अपने टेक्स्ट की बात को आगे बढ़ाते हैं कि दुल्हन अपनों की दुआएं लेकर इस घर आंगन से विदा हो जाती है। नीलकमल फिल्म का ये गाना अब आपको सुनवाते हैं, मोहम्मद रफी की आवाज, साहिल लुधियानवी के बोल, संगीत किसका है ये आपको बताना है। साथ ही आप हमें ये भी लिख करके भेजिए कि बेटी को विदाई के समय क्या सीख देनी चाहिए।

कोयल कमल फिल्म का गाना आपने सुना, संगीत रवि का। जब भी ये गाना सुनते हैं तो हाथ कंपकपा जाते हैं और आंखें नम तो हो ही जाती है, मुझे ऐसा लगता है, आप बताइएगा। एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि मंजरी, जब मेरी बेटी पैदा हो रही थी ये गाना बज रहा था, आज याद आ गई और मैं रोने लगी हूँ। जिस बेटी को हम बड़े प्यार से पालते हैं उसे एक ही झटके में दूसरे को सौंप देते हैं, ये बात एक माँ बाप से बेहतर और कौन जान सकता है उस दर्द को या उस तकलीफ को। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आजकल तो लड़कियां खुद ब खुद सब सीख लेती हैं, माँ की सीख यदि मान ले तो ये जो घर आजकल टूट रहे हैं ये टूटने से बच जाए। लेकिन ये सीख की अगर हम बात करते हैं तो क्या केवल लड़कियों के लिए सीख होती है? लड़कों के लिए भी तो बहुत सीख होती है, लड़के वालों के लिए भी तो बहुत सारी सीख होती है, तो उन बातों पर भी हमें गौर करना चाहिए। और एक साथी लिख रहे हैं कि बेटी का हृदय सिंधु समान विशाल होता है, अतः सभी उठती लहरों ज्वारों और हृदयंगम कर शांत चित्त नए जीवन में प्रवेश करना चाहिए। चलिए अगला गाना हम सुनते हैं, आधी रात होगी आधा चंद्रमा होगा बात आधी होगी, नवरंग फिल्म का गाना।

नवरंग फिल्म का ये गाना हमने आपको सुनवाया। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि बेटी की विदाई के समय उसे कहना चाहिए कि तुम्हारी शादी हुई है, माता पिता से रिश्ता नहीं टूटा है, तुझ पे कोई भी मुश्किल आ जाए मायके के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। सचमुच ये सीख भी बच्चियों को देना बहुत जरूरी है कि जब आपको कोई तकलीफ महसूस हो तो आप बिना झिझक यहाँ आइए, हमें बताइए, आपकी तकलीफ का समाधान जरूर किया जाएगा। ये विश्वास अगर उन्हें है तो वो हंसते हंसते उस घर से विदा हो जाती है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि बेटी को विदा करते समय माता पिता को उसे धैर्य, सहनशीलता और समझदारी से काम लेने की सीख देनी चाहिए। ससुराल में नए रिश्तों का सम्मान करने, मीठी वाणी बोलने और घर के काम में आत्मनिर्भर बनने की सलाह उसे देनी चाहिए। और एक साथी लिखने की बेटी को विदाई के अवसर पर एक ही सीख सबको सम्मान देना चाहिए, आत्मसम्मान का भी पूरा ध्यान रखना है आपको, ये अब घर तुम्हारा है, ये सीख उसे देना चाहिए। चलिए हमारी जो अगली बात है वो ये है कि प्यार से बना एक प्यारा घर होगा जो उनकी नजरों में सबसे न्यारा होगा। साथ साथ फिल्म का गाना, जगजीत सिंह चित्रा सिंह की आवाजें, जावेद अख्तर के बोल, कुलदीप सिंह का संगीत, कौन से कलाकारों पर फिल्माया गया है आप

आज सुरीला सफर कार्यक्रम में जिस गाने की सबसे ज्यादा चर्चा हुई या फिर लोगों को पसंद आया वो नीलकमल फिल्म का गाना। लिखते हैं कि बाबुल की दुआएं लेती जाए गीत पिता और पुत्री के उस अनकहे और पवित्र रिश्ते की पराकाष्ठा है, जहां एक पिता अपने जिगर के टुकड़े को विदा करते समय अपना कलेजा निकाल कर रख देता है। मोहम्मद रफी साहब की दर्द भरी आवाज ने इस गाने में पिता की लाचारी, उसकी ममता और उसकी शुभकामनाओं को इस तरह पिरोया है कि आज भी यह गाना बजते ही आंखें नम हो जाती है। धन्यवाद आपका। और आज विविध भारती का ये जो कार्यक्रम है सुरीला सफर, ये सुरीला सफर आपने तय किया मेरे यानी मंजू द्विवेदी के साथ। अब कार्यक्रम का समय समाप्त होता है, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट है कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल आज अपने नेता का चुनाव करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंच गए हैं।
1: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लगभग डेढ़ दशक के शासन का अंत हो चुका है। कल नवनिर्वाचित सरकार की शपथ ग्रहण के साथ ही बंगाल में राजनीतिक इतिहास में एक नई कड़ी का शुरुआत होगी। कल रविंद्र जयंती के दिन ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पश्चिम बंगाल की पहली बीजेपी सरकार शपथ लेगी। बीजेपी के विधायक दल का नेता चुनने का प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए पार्टी के नियुक्त पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कलकत्ता पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में वो नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। इसी बैठक में बीजेपी विधायक दल की नए नेता का चयन किया जाएगा। इसके बाद राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी के लिए।
0: शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलक वेत्री कड़गम को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरू थैगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक अपने नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता का निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा केरल में पार्टी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने कल ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित डीआरडीओ की रिसर्च सेंटर इमारत ने डीआरडीओ के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार।

0: आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ, वायुसेना, डीसीपीपी और उद्योग जगत को बधाई दी है। श्री सिंह ने इसे भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज एक राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर की यात्रा विध्वंस से सृजन की तरफ बढ़ने का प्रतीक है और ये दिखाती है कि कैसे विश्वास और संस्कृति बार बार हुए आक्रमणों तथा मुश्किलों के बाद भी अस्तित्व में रह सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वाधीनता के बाद मंदिर के पुनर्निर्माण में देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका का स्मरण किया। श्री मोदी ने कहा कि मंदिर के इतिहास से जुड़े शौर्य और बलिदान को सम्मान करने के लिए अगले 1000 दिनों तक विशेष पूजा आयोजित होंगी। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
1: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि प्रवासन को लेकर भारत का दृष्टिकोण प्रवासियों की सुरक्षा, देश छोड़ने से लेकर उनकी संभावित वापसी तक व्यापक शासन व्यवस्था और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के मुख्य संचालन सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय पलायन समीक्षा मंच को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारत प्रवासियों की आवाजाही को सुचारू बनाने के प्रयास कर रहा है।
3: भारत ने 23 देशों के साथ प्रवासियों की आवाजाही के लिए व्यापक द्विपक्षीय समझौते और समझौता ज्ञापन किए हैं तथा निष्पक्ष और नैतिक आवाजाही के लिए कई और अन्य समझौतों पर विचार किया जा रहा है। भारत का लक्ष्य अवैध पलायन, तस्करी और सामाजिक सुरक्षा में मौजूद कमियों जैसी चुनौतियों से निपटते हुए समावेशी मानवीय भविष्य के लिए तैयार ढांचे का निर्माण करना है।
1: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजार के बाद अब विमान पट्टे पर देने और वित्तीय सहायता के मामले में एक प्रमुख वैश्विक स्थान बन रहा है। श्री नायडू ने ये बात गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में भारत विमान लीजिंग और वित्त पोषण के दूसरे चरण में मुख्य भाषण देते हुए कही। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने वैश्विक आर्थिक स्थिरता के स्तंभ के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका का जिक्र करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समृद्धि में देश के महत्वपूर्ण योगदान का उल्लेख किया। श्री जयशंकर ने सूरीनाम में विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस वर्ष वैश्विक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान के अनुसार भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है।
4: इंडिया कंट्रीब्यूट्स।
3: भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है। हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के जोखिम को कम करने में मदद कर रहे हैं। हम अधिक अवसर पैदा करने में सहायक हैं। हम आज और अधिक विकल्प तैयार कर रहे हैं। हम आज विभिन्न देशों के लिए ऐसे और अधिक मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहे हैं और उन्हें अंतिम रूप दे रहे हैं ताकि वे इनका लाभ उठा सके।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमेरिकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। पिछले वर्ष लगाए गए वैश्विक टैरिफ को अदालत द्वारा स्थगित करने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने नए शुल्कों की घोषणा की थी। अमरीकी

प्रशासन ने इसके बाद व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 122 का इस्तेमाल कर 24 जुलाई 2026 तक अस्थायी 10% टैरिफ लागू करने का फैसला किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु

0: हथियार प्राप्त करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए जिससे लाखों लोगों की जान जा सकती हो। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन ने भी सोशल मीडिया पर बातचीत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया से जुड़े घटनाक्रमों और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ समन्वय पर बातचीत की। आकाशवाणी ने राष्ट्र के प्रति अपनी विशिष्ट सेवा के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय राजधानी में मैराथन का आयोजन किया। लगभग 3.5 किलोमीटर की मैराथन की शुरुआत आकाशवाणी भवन से हुई। ये मैराथन कृषि भवन, रेल भवन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से गुजरते हुए आकाशवाणी भवन पर समाप्त हुई। मैराथन पूरा करने वाले सभी प्रतिभागियों को पदक प्रदान किए गए। वहीं पुरुष और महिला दोनों वर्गों में शीर्ष 3 प्रतिभागियों को ट्रॉफी प्रदान की गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने इस मैराथन को रवाना किया।
1: आकाशवाणी के व्यापक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क में इसी प्रकार के मैराथन और वॉकाथॉन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे 90वीं वर्षगांठ के समारोह के दौरान व्यापक जनभागीदारी और जागरूकता सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने कहा कि मैराथन के माध्यम से फिटनेस का संदेश जनता तक पहुँचाया जा रहा है।
2: इस साल 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आकाशवाणी में आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशन हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था।
1: आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने बताया कि आयोजन सार्वजनिक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी द्वारा देश की सेवा में किए गए योगदान को दर्शाता है।
3: देवकाशो होने के नाते जो इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं, इसका संदेश दूर दूर तक, सुदूर प्रदेश तक पहुँचता है और ये बहुत बड़ा उदाहरण होगा।
4: देश भर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र है, उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा।
1: अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत 6वें युवा संगम का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं में सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देना तथा लोगों के बीच संपर्क को सशक्त बनाना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश के विभिन्न हिस्सों के युवा प्रतिभागी जीवन, विकास, संस्कृति, विरासत, शिक्षा, पर्यटन, नवाचार और श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों के विभिन्न पहलुओं का अनुभव करने के लिए सहयोगी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा कर रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। 213 रन के लक्ष्य के जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु निर्धारित 19 ओवर में 6 विकेट पर 203 रन ही बना सका। मिशेल मार्श को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.7% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 527 अंक गिरकर 77,318 पर, जबकि निफ्टी 153 अंक की गिरावट के साथ 24,173 पर था। मौसम विभाग ने 10 से 13 मई के बीच देश के उत्तर पश्चिमी भागों के विभिन्न स्थानों पर बिजली चमकने, बादल गरजने और तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। केरला, माहे, दक्षिण आंध्रीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कराईकाल में तेज बारिश की संभावना है। रविवार तक उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया। अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है।

मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़। इस समय स्टूडियो की घड़ी में 2:30:17 हो रहे हैं। समय है आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम एक ही कलाकार का।

नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत सभी लिसनर्स का एक ही कलाकार कार्यक्रम का। सफर मनीषा के साथ तय होगा आज आपका, तो सभी लिसनर्स को मेरा यानी मनीषा बोस का प्यार भरा नमस्कार।

0: आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर आज यानी 8 मई को विविध भारती एक वॉकथॉन आयोजित कर रहा है।
1: तुम भी चलो, हम भी चले, चलती रहे।
0: तो आज शाम 5 बजे मिलिए गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर। और चलिए हमारे साथ वॉकथॉन पर।
1: चलो चले मितवा।
0: आकाशवाणी के 90 बरस के जश्न में हिस्सा लीजिए, विविध भारती के सदस्यों के साथ वॉक कीजिए।
2: चलते चलते
0: आज शाम 5 बजे गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर।
1: आजा शाम होने आई।
3: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम।

सदाबहार नगमे। आह फिल्म का गाना अब आपको सुनवाएंगे हम। लता मंगेशकर की आवाज, गीतकार हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन।

शैलेंद्र का लिखा और शंकर जय किशन का संगीतबद्ध किया। ये गाना लता मंगेशकर की आवाज में अब आपको सुनवाते हैं। फिल्म का नाम पतीता।

0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
1: तेरा जवाब नहीं।
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
1: प्यार का राग सुनाऊं।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
1: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं मदारी फिल्म का गाना। लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें, फारूक कैसर के बोल, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गली।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में अब आपको सुनवाते हैं इंदिवर का लिखा हुआ गाना, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, फिल्म का नाम पारस।

पोस्ट बॉक्स नंबर 999 ये फिल्म का नाम है। हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें, पीएल संतोषी का लिखा हुआ गाना और संगीत है कल्याण जी वीरजी शाह का।

0: आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर आज यानी 8 मई को विविध भारती एक वॉकथॉन आयोजित कर रहा है।
1: तुम भी चलो, हम भी चले, चलती रहे।
0: तो आज शाम 5 बजे मिलिए गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर। और चलिए हमारे साथ वॉकथॉन पर।
1: चलो चले मितवा।
0: आकाशवाणी के 90 बरस के जश्न में हिस्सा लीजिए, विविध भारती के सदस्यों के साथ वॉक कीजिए। आज शाम 5 बजे गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर।
1: आजा शाम होने आई।
2: सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं, बड़ा भाई फिल्म का गाना, आशा भोसले की आवाज, एहसान रिजवी के बोल, संगीत नाशाद का।

0: इस गीत के साथ ही आज का सदाबहार नगमे ये कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम हेलो सहेली बस कुछ ही पलों में।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबा। हेलो सहेली।

0: सखियों, हौसला हमारी जिंदगी को आगे बढ़ाता है। मुश्किलें बार बार राहें रोकती हैं, लेकिन उम्मीद की किरण लक्ष्य तक पहुंचा ही देती है। और हर मुश्किल हो जाती है दूर जब बातें करके मन हो जाए हल्का। और बातें करने के लिए सखियों से बेहतर और क्या है, है ना? तो बस आज अपनी सखियों से बातें करने के लिए, उनका मन हल्का करने के लिए विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हूँ मैं, आपकी दोस्त सहेली दीपा माहेश्वरी। आज आपकी सखी से होंगी बातें बहुत सारी। तो पहले कॉल की आशा लिए हम बैठे हैं और ये हुआ हमारा इंतजार खत्म। बजी फोन की घंटी और देखते हैं किस सखी का है ये पहला कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, फोन के उस तरफ। आज कौन सी सखी से बात हो रही है हमारी, क्या नाम है आपका?
1: जी मेरा नाम संगीता अग्रवाल है।
0: कहाँ से बात कर रही हैं आप संगीता जी?
1: मैं गोरेगांव मुंबई से बात कर रही हूँ।
0: अच्छा, मुंबई में रहती हैं आप तो।
1: हाँ जी।
0: जीवन में इन दिनों क्या चल रहा है संगीता जी, कैसी हैं आप?
1: हाँ एकदम बढ़िया, जीवन भी अच्छा चल रहा है।
0: तो आप बढ़िया बात है। और आप घर पर ही रहती हैं, गृहिणी हैं या किसी तरह का कोई काम करती हैं, क्या करती हैं आप?
1: वैसे तो गृहिणी हूँ, लेकिन थोड़ा पार्ट टाइम में मैं अपना इंडियन हैंडीक्राफ्ट का मेरा छोटा सा बिजनेस है।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया। इंडियन हैंडीक्राफ्ट मतलब कि हस्तकला, कहाँ से लेती हैं? घर पर ही कुछ बनाती हैं या कहीं से मंगवाते हैं आप, किस तरह से होता है ये सब?
1: हाँ जी, मैं मतलब थोड़ा सा ट्रेडिंग जैसे आप समझ सकते हैं उसे, जयपुर से रिलेटेड है मेरे सारे हैंडीक्राफ्ट आइटम।
0: अच्छा, तो ये अच्छा, तो ये जो सामान होते हैं आप जयपुर से मंगाती हैं सारी चीजें, तो गिफ्ट आइटम्स होते हैं या इनको फिर किस तरह से बेचती हैं? और ये भी बताइए कि आप कैसे पसंद करती हैं, क्योंकि आप तो रहती हैं मुंबई और आपका अधिकतर जो सामान है वो आता है जयपुर से, तो किस तरह से ये जो चुनाव आप करती हैं कि क्या पसंद आएगा आपके कस्टमर को, ये सब कैसे होता है?
1: आजकल तो व्हाट्सएप का जमाना है, तो व्हाट्सएप पे सारे पिक्स आ जाते हैं हमारे होलसेलर के यहाँ से, मैन्युफैक्चरर के यहाँ से, तो उसमें भी सेलेक्ट करते हैं। और साल में दो बार हमारा विजिट रहता है जयपुर में।
0: अच्छा,
1: तो वहाँ पे सिलेक्शन करके आते हैं ज्यादातर।
0: अच्छा, तो बहुत बढ़िया बात है। और किस तरह का लोग आपके अनुभव के अनुसार किस तरह की चीजें लोग ज्यादा पसंद करते हैं?
1: मोस्टली ना जैसे पेंटिंग है, टेबल के ऊपर रखने के जो आर्टिफैक्ट्स रहते हैं वो रहते हैं, और थ्रोज वगैरह वगैरह रहते हैं, तो उस तरीके के आइटम लोग बहुत पसंद करते हैं
0: जी।
1: ज्यादातर टेबल वेयर आइटम जो रहते हैं
0: वो ज्यादा पसंद किए जाते हैं। तो ये कितनी अच्छी बात है ना कि आप रहती हैं मुंबई और जो आजकल का डिजिटल जमाना है इसका पूरा इस्तेमाल कर रही हैं आप, और जयपुर से सामान मंगवा करके यहाँ मुंबई में बेचती हैं, मतलब आप सेल आउट करती हैं। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप बताइए आज आपको कौन सा गीत सुनवाएं?
1: गीत तो वैसे मुझे पुराने काफी पसंद है, उसमें से एक मेरा पसंदीदा गीत है ओ मेरे दिल के चैन, जो कि फिल्म है मेरे जीवन साथी से
0: जी।
1: और मुंबई की भागदौड़ में चैन तो कम ही है, इसलिए गीत सुनकर मैं थोड़ा चैन मिल जाता है
0: जी। तो आपकी पसंद का ये गीत आपको प्रस्तुत करते हैं, और लीजिए चैन के थोड़े से लम्हे।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, आज किससे बात हो रही है हमारी?
1: जी मैं पूनम मंडोवरा जबलपुर मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ।
0: मध्य प्रदेश जबलपुर से क्या बात है? तो पूनम जी, क्या चलता है आपके जीवन में और क्या कर रही हैं आप इस वक्त?
1: शिक्षिका हूँ केंद्रीय विद्यालय में।
0: अरे वाह, आप एक शिक्षिका है, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाती हैं, तो कौन सी क्लास के बच्चों को पढ़ाती हैं आप?
1: कक्षा 6 से 10 तक मैं विज्ञान की शिक्षिका हूँ।
0: विज्ञान की शिक्षिका कक्षा 6 से कक्षा 10वीं तक। तो ये आप कितने सालों से पढ़ा रही हैं?
1: मुझे 14-15 वर्षों का अनुभव।
0: 14-15 वर्षों का, यानी कि बहुत सारा एक अनुभव आपके साथ इकट्ठा हो गया होगा, तो काफी सारा समय आपको पढ़ाने में निकल जाता होगा।
1: जी बिल्कुल, अभी नया सिलेबस भी आपने सुना भी होगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो हम लोग का सिलेबस की बुक्स भी हर साल लगभग बदल रही है।
0: अच्छा अच्छा, तो इसके लिए तो आपको भी तैयारी करनी होती होगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, हमें भी कई वर्कशॉप अटेंड करनी पड़ती हैं। कई बार हमें घर से सप्ताह भर 10 दिन के लिए बाहर रहना पड़ता है, घर में भी हमें करीब 1 या 2 घंटा पढ़ाई करनी पड़ती है।
0: जी देखिए, सब जानते हैं कि पढ़ाने के लिए खुद पढ़ना होना या शिक्षित होना बहुत ज्यादा जरूरी तो है ही, लेकिन हमेशा लगातार पढ़ते रहना पड़ता है। तो आप फिर खुद भी पढ़ती हैं और अपने बच्चों को भी पढ़ाती हैं, कैसे ये सब चीज आप मैनेज करते हैं?
1: जी सहेली आपने बिल्कुल सही बोला, ये बहुत मुश्किल काम है क्योंकि हमें ना समय का प्रबंधन बड़े अच्छे से करना पड़ता है।
0: जी ये बात तो बिल्कुल सही कही,
1: अपने दोनों बच्चों पर भी ध्यान देना है, साथ ही मुझे विद्यालय के बच्चों पर भी बराबरी से ध्यान देना है, तो मुझे समय का प्रबंधन बड़े सकुशलता से करना पड़ता है।
0: जी बिल्कुल
1: सही कहूँ तो मैं कुछ टीवी वगैरह ज्यादा मोबाइल वगैरह नहीं देखती हूँ, बस आपके विविध भारती के गाने और विविध भारती की जो मुझे न्यूज है
0: जी जी
1: वो बड़ी अच्छी लगती है, तो अपने रिक्रिएशन या अपने एंजॉयमेंट के लिए वो जरूर मैं सुनती हूँ।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। और दोनों बच्चे सिर्फ पढ़ाई ही करते हैं या किसी और भी अलग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी वो सब पसंद करते हैं भाग लेना?
1: हाँ जी बिल्कुल, आपने सही बोला, मेरे दोनों बच्चे चेस के बड़े शौकीन हैं।
0: चेस खेल की शौकीन है, क्या बात है। घर में खेला जाता है या स्कूल में ही सिखा रहे हैं आप बच्चों को?
1: नहीं, स्कूल में सिखाते हैं, साथ में मैं उन्हें बाहर चेस क्लब मैंने ज्वाइन करा रखा है, और अभी रिसेंटली वो दोनों रीजनल चेस स्पोर्ट्स मीट में गए थे
0: जी,
1: और दोनों का सिलेक्शन नेशनल्स के लिए हुआ है।
0: क्या बात है, तो बहुत बहुत बधाई आपको। पूनम जी बताइए, इस बात पर कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे यादों की बारात मूवी का कोई सा भी गाना सुना दीजिए।
0: तो चलिए सुनते हैं फिल्म यादों की बारात से ये गीत।

0: अंतराल हुआ खत्म और चलिए देखते हैं कि सहेली का लगा है कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी आज?
1: बड़ौदा से।
0: बड़ौदा से? बड़ौदा से कौन से की बात कर रही है? क्या नाम है आपका?
1: बड़ौदा से रमीला बेन बोल रही हूँ।
0: बड़ौदा से रमीला बेन? कैसा है बड़ौदा रमीला बेन?
1: बड़ौदा तो बहुत बड़ा है, मगर हम तो बड़ौदा में छोटा सा गाँव है सुंदरपुरा, वहाँ से बोल रही हूँ।
0: अच्छा, ये बड़ौदा से पास में है सुंदरपुरा?
1: सुंदरपुरा गाँव है
0: जी। तो इन दिनों तो बहुत गर्मी होगी वहाँ?
1: बहुत सारी गर्मी है, रहने को भी कहाँ जाए कहाँ जाए, ऐसा लगता बर्फ गिरे तो अच्छा है
0: लेकिन आम के भी तो मजे ले रहे होंगे आप?
1: हाँ हाँ, आम हमारे पास में बगीचे है बहुत सारे, आम के नए नए कितने भी सारे आम है।
0: अच्छा,
1: मेरी शादी हुई थी 1990 में, अभी 36 के उधर के सारा देश में हो जाएगी।
0: 36 वर्ष पूरे हो गए आपके शादी के? तो ये तो बहुत बड़ा एक साथ आपका आपके पति के साथ है, तो इतने सालों का क्या अनुभव रहा आपका, क्या कहना चाहेंगे आप हमारी सखियों को?
1: हमारे 3 बच्चे हैं।
0: 3 बच्चे? अरे वाह। तो बहुत सारे जी।
1: और प्रियंका।
0: अच्छा, तो जीवन के बहुत उतार चढ़ाव देखे होंगे आपने इतने सालों में?
1: अरे बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं।
0: आपके आने वाले जिंदगी में सुखद और खुश भरे दिन आए, ये शुभकामना करते हैं। रमीला बहन, आज आप बताइए कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मेरे पति को तो क्रांति पिक्चर का गाना बहुत अच्छा लगता है।
0: तो क्रांति फिल्म का एक गीत आपके लिए, ये हम विविध भारती की ओर से सुनिए।

0: हेलो सहेली
1: जी, किससे बात हो रही है आज हमारी?
0: इस गर्मी में थोड़ी सी ठंडक का एहसास हुआ जब आपकी आवाज का दीपा जी हमारे कानों में आगाज हुआ।
1: जी आपने अपना नाम नहीं बताया, आपने हमारा नाम तो पहचान लिया।
0: हसीना भी मंसूरी बोल रही, पालदा नाका इंदौर से।
1: हसीना भी तो बताइए, क्या हाल है इंदौर के? और इंदौर का तो जो भोजन है, खाना वहाँ का बहुत मशहूर है, सराफा, 56 दुकानें।
0: जी बहुत मशहूर है मैडम यहाँ पर, और साफ सफाई में नंबर वन है।
1: जी हाँ, ये तो नंबर वन है हमारे देश का साफ सफाई में इंदौर शहर। तो क्या चल रहा है इन दिनों आपके जीवन में?
0: अभी तो जॉब पर थे मैडम, तो आपको कॉल कर रहे थे। और गर्मी बहुत ज्यादा है गर्मी।
1: जी तो आप जॉब करती हैं?
0: जी सिलाई करते हैं।
1: सिलाई का काम करती हैं, तो घर से करती हैं या कहीं जाती हैं आप?
0: दुकान पे जाना पड़ता है।
1: अच्छा, इन दिनों में आप अपना ध्यान रखिएगा, गर्मी बहुत ज्यादा है, तो सर पे कपड़ा वगैरह बांध के निकलती हैं ना आप?
0: हाँ, 9 बजे निकल जाते, इतनी ज्यादा 9 बजे इतनी गर्मी नहीं देती है, मगर फिर भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है।
1: हाँ ये बात तो सही है। और जब काम से आप फुर्सत पाती हैं तो आप क्या करती हैं अपने फुर्सत के क्षणों में?
0: अधिकतर सुनते हैं मैडम, रेडियो के बिना तो हम लोग एक पल नहीं रह पाते। कहीं पर भी फोन इन का भी काम आता ना, सब दूर लगाते रहते।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है। और देखिए आज आपका कॉल लग भी गया, तो आज हसीना भी आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
0: इनका नाम है अपना बना लो, और गाने के बोल है, इस दिल का नहीं कोई, इस दिल से प्यार करना, देखो कोई प्यार न करना, मरना लेकिन प्यार न करना, ये सुना दीजिए।
1: चलिए लीजिए, पेश है आप ही की पसंद का गीत विविध भारती की ओर से।
2: इस

0: हेलो सहेली।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, किस सहेली से बात हो रही है हमारी?
1: साधना प्रतापगढ़ से।
0: साधना जी प्रतापगढ़ से, कैसी है साधना जी?
1: बहुत अच्छी, अपना सही है।
0: बस हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। और कैसा चल रहा है मौसम प्रतापगढ़ में?
1: बहुत ही अच्छा मौसम है, कुदरत का मौसम है।
0: अच्छा
1: जी, आज मुझे गाना सुनना।
0: हाँ बताइए, कौन सी फिल्म का गाना सुनना चाहती हैं आप?
1: मिलन फिल्म का गाना है।
0: तो चलिए सुनते हैं पिया मिलन का गोरा मुखड़ा गुलाबी चुनरिया, आप ही की पसंद का ये गीत।

0: के बाद हम फिर हाजिर हैं। देखते हैं किस सहेली का लगा है कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली मैम।
0: नमस्ते, क्या नाम है आपका? कौन से सिटी से बात हो रही है हमारी?
1: हमारा मेरी नाम है ग्राम बैठू पोस्ट पकड़िया जिला सिंदौली से।
0: जिला सिंदौली से। ये कौन से बड़े शहर के पास पड़ता है इमरती जी?
1: ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यूपी में सिंदौली शहर पड़ता है।
0: अच्छा, तो वहाँ से बात कर रही हैं। क्या करती हैं इमरती जी?
1: मैं घर में रहती हूँ मैम, मैं ब्लाइंड हूँ।
0: अच्छा, आप देख नहीं सकते, घर पे रहते हैं तो।
1: लेकिन मैं आप लोगों का प्रोग्राम सुनती हूँ हमेशा मैं रेडियो पे।
0: अरे वाह, क्या बात है। तो
1: और आप लोग आते हैं सबकी सहेली में तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग हंसते नहीं तभी अच्छा लगता है।
0: तो मुस्कान आप ही सबके लिए होती है और जो बातें होती हैं हम सब सखियों के लिए तो होती है। जो बात आप लोग लिखते हैं, जो संदेश हम पढ़ के आपको सुनाते हैं, वो चाहते हैं कि जीवन में आगे बढ़े, कुछ नया सीखे, है ना?
1: हर विषय पे आप लोग जानकारियाँ देते हैं, हर विषय की जो बातचीत आप लोग करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा है।
0: जी,
1: जानकारियाँ भी मिलती है रेडियो के जरिए।
0: जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इमरती जी बताइए, आज कौन सी फिल्म का गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: श्रीलंका इतना मैं चाहूँ की जो उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज में गीत है, बस अच्छा गीत लगता है मुझे। पुराने सभी तरह के गीत अच्छे लगते हैं रेडियो पे, जैसा भी गाना बजता है वो सभी गाने अच्छे।
0: जी बिल्कुल, तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, मैं रजनी रावत बोल रही हूँ।
0: रजनी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: जी, मैं एमपी भिंड जिले से बोल रही हूँ।
0: एमपी भिंड से। रजनी जी, क्या करते हैं आप? गृहिणी हैं या कुछ किसी तरह का काम करते हैं?
1: जी, वैसे तो मैं गृहिणी ही हूँ और घर में ही काम करती हूँ जो कुछ करना है। बाकी फिल्मी गाने सुनने का बहुत शौक है, पुराने गीत
0: जी।
1: आपके प्रोग्राम सुनने का शौक है पूरे विविध भारती के।
0: क्या बात है, विविध भारती के आप कौन कौन से कार्यक्रम सुनती हैं?
1: विविध भारती का एक गीत मालिका है
0: जी,
1: सबसे अच्छा लगता है मुझे छाया गीत
0: जी। हाँ,
1: मैं और वो कम से कम मैं 15-20 सालों से मतलब वो कार्यक्रम सुन रही हूँ। मैं छोटे से मतलब मैंने विविध भारती सुना है बचपन से, और मेरी उम्र मतलब लगभग 45 साल होगी
0: जी।
1: मैंने कम से कम 20-25 साल हो गए विविध भारती सुनते सुनते।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है।
1: और सखी सहेली सुनना चीज यही है। सखी सहेली तो बहुत बाद में शुरू हुआ था प्रोग्राम।
0: तो आज रजनी जी कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: जी, मुझे आशा भोसले के बाद में तीसरी किस्म फिल्म कराना है, पान खाए सैया हमारे।
0: तो आशा जी को याद करते हुए सुनते हैं ये आपकी पसंद का गीत।
2: पान ख...

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: हम झनकार बोल रहे हैं, मुंबई से।
0: झनकार मुंबई से, क्या बात है! आपकी तो आवाज में ही एक झनक सुनाई दे रही है झनकार जी।
1: जी बहुत धन्यवाद।
0: तो क्या करती हैं झनकार आप?
1: आजकल तो मेरी एक कथक टीचर है और श्रीमती नूतन पशुवर्धन, मैं उनको असिस्ट करती हूँ, बच्चों को कथक सिखाती हूँ उनके साथ।
0: क्या बात है! तो आप कथक सिखाती हैं, इसका मतलब है कि आपने भी पहले सीखा होगा।
1: मैं बहुत साल से उनके साथ हूँ और अभी भी सीख ही रही हूँ, क्योंकि ये ऐसी विद्या है जो चलती रहती है। हम कभी कह नहीं सकते कि हम परांगत हो गए हैं, तो अभी उनके साथ सीख ही रही हूँ। कुछ आया नहीं है ज्यादा, पर हाँ ये उन्होंने

0: कहा कि थोड़ा मेरी हेल्प करो, साथ मैसेज करो, तो मुझे तो बहुत गौरव महसूस हुआ, तो मैं उनके साथ बच्चों को आजकल कथक थोड़ा सिखाती हूँ।
1: बहुत सुंदर बात है,
0: शायद
1: बात
0: आपको पीछे घुंघरू सुनाई पड़े होंगे क्योंकि मैं उसी क्लास में हूँ।
1: अच्छा, आप उसी क्लास में हैं और सिखा रही हैं?
0: सीख रही हूँ इस वक्त, तो
1: सीख रही
0: हूँ।
1: अच्छा, बहुत सुंदर बात है। और जब सिखाती हैं आप, आपने जो सीखा उसी तरीके से आप सिखाती हैं या अपने आपने कोई अपना ही एक तरीका अपनाया है बच्चों को सिखाने?
0: नहीं, शास्त्रीय संगीत भी सीखती हूँ मैं और कथक में भी। एक हम गुरु जो प्रणाली होती है, शिष्य, हम उसी को फॉलो करते हैं, तो इसमें आपको अपना बिल्कुल नहीं डालना होता है
1: जी।
0: ये बहुत संभाल के दी गई विद्याएं होती हैं जो गुरु से शिष्यों में जाती है, तो उसको थोड़ा सा संभालना पड़ता है और अपने को थोड़ा पीछे रखना पड़ता है।
1: ये बात
0: हम कुछ भी करते हैं, सिखाते हैं, हमको हमारे दिमाग में पता है दीपा जी, मैं आपको बात कर रही हूँ, मैं जब बोलती हूँ ना बच्चों के साथ है तो मेरे दिमाग में मेरी ताई की आवाज होती, गुरु की।
1: क्या बात
0: कि
1: है?
0: वो जैसे बोलती थी ताई जोर से मारो, तक लगाओ, तो वो अपने आप मेरे अंदर से मेरे गुरु ही बोल रहे होते हैं, वो ही कोशिश करती हूँ।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: तो अपूर्णता है, थोड़ा तो है, तो गलती होती होगी, लेकिन ये हम वैसी ही चाहते हैं जैसे है, कम से कम पहले थोड़ा आ जाए तब हम शायद कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं
1: जी। बिल्कुल
0: पर
1: सही,
0: योग्य हो जाए तब कर सकते हैं, अभी मुझे नहीं लगता मैं उस योग्य हूँ।
1: देखिए, गुरु शिष्य परंपरा की यही खूबसूरती है कि कभी भी जो सीखता है विद्यार्थी हमेशा अपने आप को विद्यार्थी ही समझता है और कहीं वो अहम या अहंकार की भावना पनप ही नहीं पाती।
0: इसलिए हमारे यहाँ पे शुरू में नमस्कार किया जाता है
1: जी,
0: जिस जगह हम हैं उस जगह को, अपने गुरु को, सबको नमस्कार करके ही हम क्लास शुरू करते हैं
1: जी। तो आप कोई छोटा सा तोड़ा टुकड़ा अगर इस वक्त आपको याद है तो बोल के बताएंगी?
0: कोशिश कर सकती हूँ
1: जी।
0: और चलिए मैं आपको एक टुकड़ा बोलती हूँ
1: जी,
0: जो तीन ताल में है और मैं बोलती हूँ, तो तीन ताल में 16 मात्रा होते हैं और मैं वो आपको टुकड़ा बोलती हूँ। तत तत थुन थुन तिग्दा दिग दिग ठई, तत तत थुन थुन तिग्दा दिग दिग ठई, तिग्दा दिग दिग ठई, तिग्दा दिग दिग ठई, ता थई तत तत थई, तत तत थई, तत तत थई। इसे सादा तोड़ा बोलते हैं और कथक में जो कई अंग होते हैं जैसे ठाट है, आमद है, तोड़े हैं, टुकड़े हैं, परन है, तो ऐसा ही एक सादा तोड़ा है। और ये बहुत ही शुरू में 2-1 साल बच्चे जब सीखते हैं तो फिर उनको सिखाया जाता है।
1: क्या बात
0: और
1: है?
0: आपने एकदम से बोला तो बस मेरे को ये मैंने बोल दिया
1: जी। तो देखिए, लेकिन आप क्योंकि हमेशा सीख भी रही हैं, सिखा भी रही हैं, तो आपको वो मूल जबानी अच्छे से याद है। तो बताइए शंकर जी, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: मैं वो एक स्वामी पिक्चर का है, पल भर में ये क्या हो गया, मुझे
1: जी,
0: बहुत
1: जी,
0: अच्छी
1: जी,
0: लगी थी।
1: जी, बहुत सुंदर गीत है, तो सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: मेरा नाम सीमा है।
0: सीमा जी कहाँ से बात कर रही है सीमा जी?
1: ये उज्जैन, उज्जैन के पास गांव है पान बिहार।
0: अच्छा सा नाम है, पान बिहार, है ना, सुनने में
1: अच्छा और बड़ा भी।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या करती हैं सीमा जी आप?
1: नहीं मैडम, मैं तो खेती का काम करती हूँ।
0: खेती का काम? तो ये कोई छोटा काम नहीं है, ये तो बहुत बड़ा काम है और बहुत महत्वपूर्ण भी है ना।
1: महत्वपूर्ण भी, मतलब खेत पे ही शुरुआत खेत से ही होती है हमारे तो सुबह की।
0: तो किस तरह का काम आपका खेत पे रहता है? कोई
1: निंदाई खुदाई है, तो कोई चारा वारा डालना है
0: जी,
1: इसमें पानी देना है।
0: तो वहाँ पे पशु भी है?
1: हाँ है ना,
0: क्योंकि आपने चारे की बात की ना, तो वहाँ पे पशु भी है
1: ना। है
0: क्या है वहाँ पर पशुधन में? भैंस है। कितनी भैंसे हैं?
1: दो भैंसे हैं और दो गाय हैं।
0: दो गाय दो भैंसे, तो भाई इन्हें भी बहुत ध्यान से रखना होता है ना, बिल्कुल अपने परिवार अपने बच्चों की तरह।
1: बच्चों की तरह रखना पड़ता है उनको, टाइम से पानी पिलाना।
0: जी, तो इन दिनों गर्मी भी बहुत है, तो उनके भी चारा देने का,
1: उनको छाया की व्यवस्था भी की है ना।
0: जी अच्छा, बहुत सुंदर बात कि उनके, आप खुद का तो ध्यान रख ही रही हैं, उनके लिए भी छाया की एक अलग से जगह बनाई है जहाँ पे वो छाव में रह सके, बैठ सके।
1: बंदे रहते हैं और उनको चारा पानी है, पानी वाली टाइम टाइम से खिलाते हैं।
0: जी, तो थककर जब शाम को घर पे आती हैं, फिर से आपको भोजन बनाना होता
1: है? वहाँ पे घर रहे, इसमें घर में अंदर बांध के खिला देते हैं।
0: अच्छा अच्छा, तो बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे सीमा जी। आप बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज?
1: जी मैडम, मेरे को वो सुनना है, माँ तो कितनी अच्छी है कितनी भोली है।
0: तू कितनी अच्छी है तू कितनी भोली है। तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, इस वक्त किससे बात हो रही है हमारी?
1: मैं मनीषा कौशल इंदौर से बात कर रही हूँ।
0: मनीषा जी इंदौर से? मनीषा जी जी क्या कर रही थी अभी आप फोन लगाने से पहले?
1: मैं अभी ब्लाउज कटिंग कर रही हूँ, सिलाई का काम करती हूँ।
0: सिलाई का काम करती हैं?
1: खुशी इतनी हो रही मुझे कि मेरी कॉल लग गई, पहली बार कॉल लगा मेरा।
0: तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना,
1: क्योंकि मेरे हस्बैंड को मैं हमेशा बोलती थी कि एक बार मैं लगा के रहूंगी, क्योंकि वो हमेशा सखी सहेली सुनते हैं, दिन भर उनका प्रोग्राम चलता रहता है, उनको मतलब शौक है रेडियो सुनने का, तो वो वेडिंग का काम करते हैं, तो वो मतलब चलता रहता है उनका डेली का, तो बोलते लगा के देखना एक बार तो लग ही जाएगा तेरा।
0: कि बहुत अच्छा लगा। आप बताइए आज आपकी पसंद का कौन सा गीत सुनना चाहती है?
1: मैं बहुत प्यार करते हैं तुमसे सनम वाला गाना सुनवाती थी।
0: तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली दीदी, नमस्ते।
0: नमस्ते जी, बताइए किससे बात हो रही है हमारी आज?
1: दीदी मैं बोल रही हूँ कवाई शालपुरा जिला वाराणसी।

0: थे प्रेम रतन तिवारी साहब। और दीदी आज मेरा 7 सालों बाद कॉल लगा, इसके लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है।
1: 7 सालों के बाद?
0: जी दीदी,
1: बहुत बहुत बधाई आपको प्रेमलता जी, तो बहुत खुशी हो रही होगी आपको।
0: हाँ दीदी, बहुत खुशी हो रही है।
1: रेडियो तो सुनती हैं, इसके अलावा आपको क्या पसंद है?
0: दीदी मेरे को तो रेडियो सुनना पसंद है, और मतलब कहीं अपन मतलब कोई मतलब अच्छा धार्मिक कार्यक्रम होते हैं ना
1: जी,
0: उसमें जाना पसंद है मुझे।
1: बहुत अच्छी बात है, तो बताइए आज आपको कौन सा गीत सुनवाए हम?
0: दीदी फिल्म का नाम है गाइड, पिया तोसे नैना लागे रे।
1: तो चलिए सुनते हैं गाइड फिल्म का पिया तोसे नैना लागे रे, आप ही की पसंद का गीत।

0: हेलो सहेली में बातों का सिलसिला आज बस इतना ही। हेलो सहेली में रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार सुबह 11 बजे से। कॉल करने के नंबर नोट कर लीजिए। नंबर है 02240002462, अंग्रेजी में 02240024662। इसके अलावा 02228670288 यानी 02228670288 022 मुंबई का एसटीडी कोड है। हेलो सहेली कार्यक्रम में आज जिन सहेलियों के कॉल लगे हैं उनसे अनुरोध है कि आप अगले 2 महीने तक कॉल न करें ताकि अन्य हमारी सहेलियों को एक अवसर प्रदान हो सके। आज की हेलो सहेली में सहयोग दिया संपादन में नम्रता टिकोड़े ने, तकनीकी रूप से सहयोगी रही हमारे इंजीनियर किरण बंग, विविध भारती की ओर से प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। तो दीजिए दीपा माहेश्वरी को इजाजत। नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: सुन रहे हैं विविध भारती। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गीतों भरी कहानी सपने में ठिठका इंतजार। इसकी लेखिका है ममता सिंह और वही आपको ये कहानी सुना रही है।
1: उसने आंगन में रखे गमलों को बाहर दरवाजे के सामने रखा, एक निगाह कमरे में डाली, मेन स्विच बंद किया, दरवाजा खींचा, वो बंद हो गया। चाबी पैंट की जेब में डालकर बरामदे तक आ गई थी वो। उसके गुलाबी गाल और नीली आंखों में ज्वार सा नजर आ रहा था। लग रहा था कि आंखें जैसे अब छलकी कि तब छलकी, आंखों में नदी बह रही थी। मैं कार से उतरकर उसकी ओर दौड़ी, उसे हुलसकर गले लगाने की कोशिश की, लेकिन उसके ठंडे रिस्पॉन्स से मैं वहीं रुक गई। बेटा, सारी किताबें एक साथ रख ली है ना, अकेले क्यों परेशान हुई? मैं तो आ रही थी ना, मैं रखवा देती। मैंने उसका सूटकेस अपने हाथ में लेते हुए कहा। उसने सूटकेस की ओर देखते हुए हां में सिर हिला दिया, कुछ बोली नहीं। मेरा मन कर रहा था उसे अपनी तरफ खींचकर खूब कस के गले लगा लूं, उसका सारा दर्द अपने आंचल में छुपा लूं, लेकिन उसके पथराए व्यवहार से मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। डर लग रहा था कहीं इस बार भी मैं इसे खो न दूं। पता नहीं ये कैसी पीढ़ी है, इन्हें ज्यादा प्यार दिखाओ तो ये बिदक जाते हैं, पर इसके नजरिए से सोचती हूं तो इसका बर्ताव ठीक लगता है। इतनी छोटी सी उम्र में इसने कितनी बड़ी दुनिया देखी, दुखों के न जाने कितने रंग इसकी नाजुक हथेली में लगे। ऊपर वाला भी कभी कभी किसी के साथ बड़ी नाइंसाफी करता है। अनुष्का की आंखें मुझसे मिली और फिर सड़क की ओर देखने लगी। उसकी आंखों में बहुत सारे प्रश्न तैर रहे थे। अनुष्का ने अपनी आंखें मेरी आंखों पर चिपका दी। हां कहने के साथ साथ वो सारे प्रश्न मेरे कानों में गूंजने लगे जो मुझसे पूछे गए थे। इस मशीनी युग में रिश्ते से ज्यादा कागज की अहमियत है। मम्मी, मेरी ज्यादातर किताबें वहीं पड़ी हैं, मैं एक बार फिर आऊंगी ले जाने के लिए। अनुष्का की आवाज बहुत मध्यम थी। बिल्कुल बेटा, तुम जब चाहोगे आ जाना, मैं तुम्हें लेकर आऊंगी। कहते कहते मेरे गले में जैसे कुछ अटक गया था, आवाज भर्रा गई थी। मैं डर गई थी कि कहीं इसी घर में अकेले रहने का ये फैसला न कर ले। इस ख्याल से ही मेरा दिल बैठ गया। 3 बरस मैंने अनुष्का के बिना कैसे बिताया ये मेरा दिल ही जानता है। उस पल दोनों के बीच एक पुल बन गया, बीते हुए दर्द और आने वाली उम्मीद के बीच।

अनुष्का पूरे रास्ते कार की खिड़की से बाहर देखती रही। कई बार उसने टिश्यू पेपर से आंखों को दबाया, शायद भराए पानी को सुखा रही थी। उसकी आंखें गोलाई में ऐसे घूम रही थीं जैसे सड़क के किनारे दुकानों पर लिखी हर इबारत को वो पढ़ रही हो, जबकि वो तो सिर्फ अपने आप से गुफ्तगू कर रही थी। मैं उसकी ओर देखकर कुछ कहना चाहती थी, पर जैसे जबड़ा लॉक हो जाता। डर लग रहा था कहीं उसे कोई बात बुरी न लग जाए और वो मेरे साथ चलने से इनकार कर दे। इन 3 बरस में बचपन के सुनहरे रंग से अलग किशोरावस्था का चंपई रंग इसके गालों पर निखर आया है। हालात ने इसे जल्दी से सयानी बना दिया है। पार्किंग एरिया में गाड़ी रुकी और

वक्त के उस एक पल से मैं बाहर आ गई। देखो बेटा अनुष्का, ये देखो, ये तुम्हारा कमरा है। अनुष्का ने जब दहलीज पार की तो एक अजीब सी गंध ने उसे घेर लिया। घर सजा धजा, दीवारों पर वही तस्वीरें टंगी थीं, रस्किन बॉन्ड, रुडयार्ड की जंगल बुक और भी उसकी पसंद की तमाम किताबें कमरे में जस की तस सजी थीं। उसकी आंखों के सामने पुराने घर की टूटी अलमारी, मां के कपड़ों से भरी संदूक और रसोई में रखी चूल्हे की आंच पर खाना पकाती मां का चेहरा घूम गया। लाचार, बेबस, जीर्ण मां से वो असंख्य सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन वो कोई सवाल वो पूछ नहीं सकी और मां विदा हो गईं। वो इस दुनिया से चली गईं। कई बार अनुष्का ने पूछना चाहा, हर बार वो अपनी बीमारी का बहाना बनाकर टाल देती। वैसे भी कैंसर जैसी भयानक बीमारी से जूझते इंसान के प्रति दया भाव ज्यादा होता है, प्रेम कम। अनुष्का कभी अपने इस कमरे को देख रही थी जो उससे कहीं छूट गया था, कभी वो उस घर को याद कर रही थी जिसे अभी अभी छोड़कर आई थी। दरवाजे पर खड़ी उसकी आंखों में समंदर सा ज्वार था, आंखों में जंगल था जो उसके मन की वीरानी को बयां कर रही थी। चौखट के उस पार वही घर था, दीवारें, खिड़कियां, आंगन, सब कुछ वैसा ही, लेकिन उसका मन मानो हजार टुकड़ों में बटा पड़ा था। उसने गहरी सांस ली। क्या मैं सचमुच लौट आई हूं? लेकिन किस रूप में? कहीं फिर यहां से कहीं और तो नहीं जाना पड़ेगा मुझे? कब मेरी किसको जरूरत पड़ जाए और मैं उसके काम आ जाऊं? आखिर उस घर में अपनी मां की जरूरत बनकर ही तो मैं गई थी ना। मां के लिए मैं सिर्फ जरूरत थी। उसकी आंखों में स्मृतियों का सागर उमड़ आया। ये वही घर था जिसे छोड़कर अनुष्का भटकती रही, कानूनी लड़ाइयों और अनचाहे सवालों के बीच अब फिर उसी चौखट पर आ खड़ी थी। उसका मन भारी हो रहा था।

जिन्हें लौटकर मां ने मुझे अपनाने का दावा किया था, वही मां जब चाहा छोड़ दिया, जब चाहा अपना लिया। किसी ने मेरे भीतर की ज्वाला को जानने की कोशिश ही नहीं की कि मेरे जज्बात का फैसला हर बार कानून करेगा। मैं कहां रहूंगी, कैसे रहूंगी, कितने दिन रहूंगी, इसका निर्णय कानून ने किया। आखिर मुझे क्यों, मां के अधूरेपन का बोझ मुझे क्यों ढोना पड़ा? आखिर मैंने क्या गुनाह किया था, क्या बात थी आखिर? मैंने उसके

कंधे को सहलाया, उसने अपनी पलकें उठाई, मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में अपनापन पाकर मुझे राहत मिली, सुकून मिला। अनुष्का की पनीली आंखों में टूटी हुई स्मृतियों का गुबार था जिसे मैं लगातार देख रही थी। फिर अचानक मैंने उसे खूब कस के सीने से लगा लिया और उसके भीतर का झरना फूटकर देर तक बहता रहा और मेरे भीतर की ममता देर तक उसे भिगोती रही। मैं उसे बहुत देर तक सीने से लगाए बैठी रही। फिर धीरे धीरे उसने दरवाजे के भीतर कदम रखा। हर कोना मानो उसकी चुप्पी सुन रहा था। एक मेज पर रखी पुरानी चादर, दीवार पर धूल जमी तस्वीरें और बंद खिड़की से आती ठंडी हवा, सब कुछ अपना सा लगा। वो सीधी खिड़की तक गई। उसने खिड़की खोली, धूप का एक सुनहरा टुकड़ा कमरे में भराया। उसने सूटकेस का जिप खोला, उसमें से कुछ वो तलाशने लगी। कुछ किताबें उसी घर में छूट गई हैं, सोचते हुए उसने गहरी सांस ली और फिर धीरे धीरे अपने सामान सूटकेस से बाहर निकालने लगी वो। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा और मैं रसोई में चली गई। अनुष्का के लिए फ्रैंकी और ब्रेड टोस्ट लेकर लौटी तो देखा वो अपनी पुरानी ड्राइंग बुक पलट रही थी। वाटर कलर का डब्बा और ब्रश मेज पर रखा हुआ था। कितनी जुनूनी है ये लड़की। सचमुच अजीब है। सेकंड क्लास में पढ़ती थी तभी कितनी सुंदर पेंटिंग करने लगी थी। संस्कृति मंत्रालय के कला विभाग में एक पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। इतनी छोटी सी उम्र में इसने फर्स्ट प्राइज ले लिया था। जिंदगी का वो सबसे खुशगवार लम्हा था जब गोद में बैठी अनुष्का ने मुस्कुराते हुए अपने नरम हाथों का घेरा मेरे गले में डाल दिया था। उसे जब पहली बार घर लेकर आए थे तो घर पहुंचकर एक छोटी सी पार्टी दी थी हमने, और बस उसकी सारी थकान, कानूनी झंझट, समाज के ताने सब गायब हो गए थे। कितना सुनहरा समय था वो, आंखों के सामने जैसे अभी ठहर गया है।

उस रोज अनुष्का ने मुझे पहली बार मां कहा था, तब जैसे घर में फूलों की बरसात हुई हो। वो पैदाइशी ही उम्र से दो कदम आगे थी। अनुष्का की ड्राइंग बुक मैंने अपने हाथ में ले ली और पलटने लगी। एक पन्ने पर मेरी निगाह अटक गई। आंखों के सामने कागज का वो पन्ना याद आ गया जिस पर मैंने हस्ताक्षर किया था। सर्दी की सियाह रात थी। मैं और नीरव किसी शादी में जा रहे थे। हम जंगल से गुजर रहे थे। यूं कि जंगली जानवरों के डर से हम जंगल को जल्द ही पार कर लेना चाह रहे थे। नीरव गाड़ी बहुत फास्ट चला रहे थे। ठंडी और कुदरती हवा खाने की गरज से मैंने खिड़की का शीशा नीचे किया हुआ था। एसी बंद था। गहन निर्जन सन्नाटे में झींगुरों की तेज आवाज के बीच अचानक झाड़ियों से आती रोने की पतली सी आवाज ने गाड़ी में ब्रेक लगा दिया और हम बड़े निर्भीक हो गए थे। उस समय रात के इस बेहद सन्नाटे में कराह भरी महीन महीन रोने की आवाज समझने में खासी परेशानी हो रही थी कि किसी इंसानी बच्चे की कराह है या कोई जंगली जानवर का बच्चा है या कोई छोटा मेमना जो बिल्कुल नवजात शिशु जैसा है। हम सड़क से थोड़ी दूर पेड़ों के झुरमुटों के बीच पहुंच गए थे। सामने कुछ सूखी डालियां पड़ी थी, जिन्हें हटाया तो कंबल और सफेद कपड़ा जैसे कुछ दिखाई दिया। हम और नजदीक गए, उस आकृति के और करीब गए और करीब गए। अरे, ये तो किसी बच्चे की रोने की आवाज लग रही है। नीरव, ऐसा लग रहा है कोई बच्चा है। ये कपड़े में लिपटा कोई बच्चा लग रहा है, नवजात शिशु। ओह, हमने फौरन गाड़ी से टॉर्च निकाला और ओस में नहाए पेड़ों पर हम रोशनी फेंकने लगे इधर उधर। तभी टॉर्च जब उस झाड़ी पर पड़ी जहां कंबल और सफेद कपड़ा जैसा कुछ दिखाई दिया, उस पेड़ के नीचे नजदीक गए तो देखा कपड़े में लिपटी नवजात बच्ची कांप रही थी। उसका रोना अनवरत जारी था। मेरा तो कलेजा जैसे मुंह को आ गया था। सवालों का समुद्र जैसे मेरे भीतर समाकर पूरे जंगल को पानी पानी कर देगा। हमने उस नवजात शिशु को उठाया और इधर उधर देखा। फिर मैं सोचने लगी, आखिर समाज ने ऐसा कौन सा वितान रचा है जिसके चलते ये नवजात शिशु अभिशप्त कर दी गई है। ऐसा कौन सा प्रश्न रहा होगा जिसके तहत इसकी मां ने यहां उठाकर इस प्यारी बच्ची को फेंक दिया। उस मां का कलेजा कांपा नहीं होगा। हम संभल संभल के और डरते हुए उस बच्ची के नजदीक पहुंचे। हाथों में ग्लव्स पहने नीरो ने उसे झुककर उठाया और मेरी गोद में डाल दिया। उस बच्ची का स्पर्श पाते ही मैंने अपने पेट में 9 महीने का उभार सा महसूस किया। मेरी छाती में जैसे दूध उतर आया था। मैं ममता से भर गई थी। ऐसा लगा मैं मां बन गई हूं। सुनो, इस बच्ची को ना ऊपर वाले ने हमारी गोद भरने के लिए इन झाड़ियों में भेज दिया है। किस्मत की किताब का एक नया पन्ना लिखा जाने वाला था। कहते हुए मैंने अपना सिर नीरव के कंधे पर टिका दिया था। मेरी गोद की गर्माहट पाकर वो बच्ची थोड़ी देर के लिए जैसे चुप हो गई थी। फिर थोड़ी ही देर में उसके रोने का सुर और ज्यादा ऊंचा हो गया था। उसकी धड़कनों की रफ्तार बहुत तेज थी। समझ में नहीं आ रहा था उस नन्ही जान को पानी पिलाना ठीक होगा या नहीं। कितने दिन की बच्ची है ये भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा था।

उस फूल से नरम नाजुक बच्ची की जान बचाने के लिए हमने फौरन एम्बुलेंस को फोन किया। एम्बुलेंस के सायरन से जंगल का वीराना शोर से भर गया। कुछ ही देर में वो मासूम अस्पताल की रोशनी में थी। फाइल पर लिख गया, अननोन गर्ल, उम्र एक दिन। उसकी नाम की जगह खालीपन था, पहचान की जगह एक सवाल, मां की गोद नहीं, कागज के पन्नों में कैद जिंदगी की शुरुआत। झाड़ियों में मिली नवजात बच्ची सुबह अखबार की सुर्खी बन गई थी। चाय का प्याला हाथ में लिए मैं तो जैसे बर्फ बन गई। अब क्या होगा, उस बच्ची का कोई ना कोई उम्मीदवार जरूर आधमकेगा, फिर मेरी सुनी गोद का क्या होगा? नीरो, ऊपर वाले ने मेरी सुनी गोद भर दी थी, झाड़ी में पड़ी वो बच्ची ऊपर वाले ने मेरे लिए ही तो भेजी थी ना। नीरो, ये बच्ची तो अपने लिए जंगल में कोई छोड़ गया था। चलो चलो जल्दी चलते हैं अस्पताल, वरना कोई भी उस बच्ची को अपना उम्मीदवार बताकर उठा ले जाएगा। चलो चलो जल्दी चलते हैं। देखा है ना, यहां तो हर चीज का व्यापार होता है। वाक्य पूरा होते तक मेरी आवाज कांप गई थी, दिल कलप गया था, जैसे उस नन्ही जान से मेरा बरसों का नाता हो। क्या वो खिलौना है जो अस्पताल से कोई उठा ले जाएगा? अरे वैसे हमने अडॉप्शन के लिए आवेदन तो पहले ही कर रखा है, ये कागजी कार्रवाई होगी और वो बच्ची हमें मिल जाएगी। नीरो ने मुझे दिलासा दी थी। अस्पताल की खिड़की से अंदर झांकते ही मेरे कदम जैसे रुक गए थे। नन्ही सी देह, नींद में सिकुड़ा हुआ चेहरा, वो जैसे कोई अधूरी कविता लग रही थी। मेरा आंचल एक बार फिर ममता से भर गया। ऐसा लग रहा था एक बार फिर मेरी छाती में दूध उतर आया हो। नीरो, यही हमारी बेटी है, यही है हमारी बेटी। मेरी आवाज कांप रही थी लेकिन आंखों में अविश्वास के बादल थे। नीरो ने धीरे से मेरा हाथ थामा, पर उनके भीतर भी वही प्रश्न उमड़ा, क्या सचमुच बच्ची हमें मिलेगी? कहीं कानूनी झंझट में उलझकर इसकी उंगली हमसे छूट न जाए। सपना जैसे पास खड़ा था लेकिन छूते ही ओझल हो जाने का डर मेरे साथ था। बच्ची को घर लाना इतना आसान नहीं था। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, अदालत, कागजात, पूछताछ, हर जगह शक की नजरें थीं। तो क्या आप बांझ हैं? क्यों चाहते हैं बच्चा? क्या गारंटी है कि आप उसका भविष्य बिगाड़ेंगे नहीं? आप सही तरीके से इस बच्चे को माता पिता का प्रेम दे पाएंगे? ये हम कैसे यकीन करें? ये सवाल मुझे भीतर तक छलनी कर देता था। कई रातें मैंने रोते रोते गुजारी।

कानून का इंतजार करना होगा। 60 दिन तक हम देखेंगे कि असली माँ बाप सामने आते हैं या नहीं। वकील मिस्टर सेठी ने यही तो कहा था। बाद में ये 4 से 6 महीने मेरे और नीरव के लिए सदी से भी लंबे थे। हर दिन एक ही चिंता होती, कहीं ये बच्ची किसी और को सौंप न दी जाए। कानून को हमें अपनी ममता क्यों साबित करनी पड़ रही है? कभी अस्पताल के बाहर खड़े होकर हम सोचते, अपनी उस अबोध बच्ची तक पहुंचने के लिए हमें और कितनी दीवारें पार करनी होंगी। कानूनी कागजात के साथ साथ हमारी और भी तरह से जांच हुई। एक दिन एक सोशल वर्कर घर आई। उन्होंने एक एक करके सब देखा, रसोई, कमरा और वो झूला जिसे मैंने पहले ही सजा रखा था। एक जासूस की तरह उन्होंने मेरे घर का मुआयना किया। अगर बच्ची अपनी असली माँ बाप के बारे में पूछेगी तो आप क्या बताएंगे? उनके ये सवाल मुझे बहुत परेशान कर रहे थे, बेहद चुभने वाले थे ये सवाल। हम उन्हें सच बताएंगे, लेकिन ये भी कि माँ बाप वही होते हैं जो बच्चे को अपनाते हैं, जो बच्चे का पालन पोषण करते हैं। वो माँ बाप नहीं होते हैं जो पैदा करके झाड़ी में फेंक देते हैं, नीरो ने दृढ़ स्वर में कहा था। फिर पुलिस हमारे घर आई, पड़ोसियों से सवाल जवाब किए, फिर शुरू हुआ हमारे कोर्ट के चक्कर काटना। क्या आप जानते हैं, दत्तक संतान के अधिकार असली संतान के समान ही होते हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस सब बातों के लिए? जज ने अपने फ्रेंच कट दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए सख्ती से पूछा था। जज साहब, यही हमारी सबसे बड़ी चाहत है। मुझे बच्ची चाहिए, बच्ची को मां का गोद चाहिए। मेरी सुनी गोद ऊपर वाले ने भर दी है, आप ये बच्ची मुझसे मत छीनिए, लरसते स्वर में मैंने कहा था। फिर अदालत के आदेश पर अखबार में नोटिस निकाला गया, यदि किसी को इस बच्ची पर दावा करना हो तो 30 दिनों के भीतर अदालत में उपस्थित हो। महीने भर डर के साये में जीती रही मैं, कहीं कोई उस बच्ची का उम्मीदवार न प्रकट हो जाए। पर ऊपर वाले ने सुन ली, कानून की कलम हमारे हिस्से में आई। और जब कानून की कलम हमारे हिस्से में आई तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मेरी आंखों से आंसू का झरना फूट पड़ा था। मैं खुश थी लेकिन मेरी आंखों की नदी रुकी नहीं रही थी। हमारी सारी भाग दौड़, सारी थकान, सारी बेचैनी उस क्षण पिघल कर एक आनंद की बूंद बन गई थी, जब रुई के गुलाबी फाहे सी नरम नरम वो बच्ची मेरे गोद में आई थी। नीरो भी पिता बनकर निहाल हो गया था। घर का दरवाजा खुला, सर्दियों से सूना आंगन जैसे जीवन से भर गया हो। छोटे छोटे कपड़े टंगे, दूध की खुशबू, खिलौनों की खनक, सब में एक नई रोशनी थी। घर का हर कोना जैसे नन्ही सांसों की आहट से भर गया। झूले में ऊपर की ओर टंगी चक्री गोल गोल घूमने लगी और बच्ची की आंखें भी गोल

गली में गोल गोल घूमने लगी। मैं उसे देख देख कर मुस्कुराती रही। नीरव देखो ना कितनी प्यारी लग रही है ये, पहली बार हंसी है ये। मुझे अपने गाल पर नमकीन पानी का ठंडक महसूस हुआ था, मेरे होठों पर जैसे किसी ने गुलाब की पंखड़ी धर दी हो। नीरो चुपचाप खड़ा देखता रहा, उसकी आंखों में नमी और चेहरे पर सुकून था, खुशी थी। उसने बच्ची की हथेली पर अपनी उंगली रखी और उस नन्ही पकड़ में उसे अपना भविष्य, अपनी विरासत, अपना पूरा वजूद महसूस हुआ। उस मासूम की एक मुस्कान, एक किलकारी जैसे उनके जीवन का सबसे मधुर संगीत बन गई थी। अगली सुबह की पहली रोशनी खिड़की से छनकर कमरे में आई। नन्ही बच्ची ने आंखें खोली और अचानक मासूम सी हंसी दिखाई दी। उसके रोने और उसकी किलकारी से पूरा घर जैसे जगमगा उठा। उस बच्ची की आवाज ही मेरी सुबह की घंटी है, मेरी पूजा की आरती है। मैंने जैसे ही अपनी उंगली उसकी ओर बढ़ाई, नन्ही बच्ची ने कसकर पकड़ ली। उस पकड़ में बड़ी ताकत थी। शाम को आंगन में झूला डाला गया। रात को बच्ची सोती तो मैं धीरे धीरे लोरी गाती। नीरो पास बैठकर मुझे और उस बच्ची को देखता रहता।

कितना अजीब है, कल तक ये चेहरा अजनबी था, ये बच्ची मेरे लिए अजनबी थी, आज इसकी सांसें हमारी रूह में बस गई।

इसकी किलकारियों ने घर की हर दीवार पर नई धड़कन लिख दी थी। रात को जब बच्ची रोती, मैं नींद से उठकर दूध की बोतल तैयार करती। थकी होती पर उसे लगता जैसे उसकी थकान ही बच्ची की मुस्कान में घुलकर गायब हो जाती है। नीरो दफ्तर से लौटकर सीधे बच्ची की उंगली पकड़ लेता, दिन भर का तनाव उसी पल मिट जाता। रीना, हमने उसे अपनाया नहीं है, इसने हमें अपनाया है। हमारी जिंदगी को इसने अपनाया है, इसने खुशी दी है हमें, नीरो ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा था। मैंने बच्ची को सीने से लगाते हुए आंखें बंद कर ली। मेरे भीतर का अटूट मातृत्व समुद्र में तब्दील हो गया था। तब महसूस हुआ कि मां बनना कितना कठिन होता है, लेकिन मातृत्व का सुख पाना भी किसी नियामत से कम नहीं। वो बरसात की भोर थी, आंगन की मिट्टी में ताजी महक फैली हुई थी। पेड़ों की पत्तियों से टपकते मोती जैसे कण हवा में चमक रहे थे। मैंने खिड़की खोली तो भीतर तक ठंडी बयार आ गई। झूले पर बैठी नन्ही काया ताली बजा बजा कर बारिश की बूंदों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, जैसे बादलों से बातें कर रही हो। उसी क्षण

0: समय दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने एक कमजोर थकी हुई स्त्री खड़ी थी। उसके चेहरे पर पीड़ा थी। मैं इसकी जन्म देने वाली मां हूं, मेरी प्रश्नवाचक निगाहों को भांपते हुए उसने धीमे स्वर में कहा, जैसे धरती हमारे पैरों तले खिसक गई हो। इतनी मुश्किलों के बाद तो हमारी मुराद पूरी हुई, फिर यह अचानक ये मुसीबत कहां से आ गई? मेरे होठ बुदबुदाए, लेकिन स्त्री ने अनुष्का को देखकर अपने कांपते हाथ जोड़े। मैं इसे अपने पास नहीं रख सकी, हालात ने मुझे बेबस कर दिया, अब मेरे पास समय नहीं बचा है। मैं चाहती हूं कुछ समय के लिए मैं इसे अपने घर ले जाऊं। वैसे तो तुम्हारी गोद ही इसकी सच्ची दुनिया है। उसने अपने आंचल से अपनी आंखें पोंछी, फिर उसने अनुष्का की मासूम हथेली छू ली और बच्ची के शरीर में एक निशान भी बताए। बच्ची ने बिना सोचे उसकी उंगली पकड़ ली और अगले ही पल खिलखिला उठी। उसकी मुस्कुराहट की खनक ने मेरे भीतर से वीरान सन्नाटा भर दिया। अनुष्का के बगैर जीने की कल्पना मात्र से मैं सिहर गई। मैंने उसे अपनी बाहों में कसकर भर लिया। कभी कभी अजनबी चेहरा ही रूह का सबसे बड़ा टुकड़ा बन जाता है। जिंदगी ने हमें ऐसे दोराहे पर ला खड़ा किया जहां से रास्ता नहीं नजर आ रहा था। वो औरत जिसने मां बनने का दावा किया है, वो कैंसर की मरीज है, वो भी सेकेंड स्टेज में। उसने वो सारे कागजात सामने रखे हैं जिससे उसे अनुष्का को सौंप दिया जाना चाहिए, लेकिन दिमाग और दिल की लड़ाई में दिल को ही हथियार डालना पड़ता है। फिर से अदालत की सीलन भरी दीवारें, बोझिल हवा और कोनों में सिसकते सन्नाटे, जज का फैसला, जन्म देने वाली मां को कैंसर है, उसकी स्थिति गंभीर है, इसलिए बच्ची का अधिकार उसी के पास रहेगा। हालांकि इस सब प्रक्रिया में कई बरस बीत गए। अनुष्का के जन्मदात्री मां भी और ज्यादा कृशकाय हो चुकी थी। इस दौरान उससे कई मर्तबा मुलाकात हुई। उसकी तकलीफ देह हालात के बारे में जानकर अनुष्का को उन्हें उनकी बची खुची जिंदगी के लिए सौंप देना ही इंसानियत थी। उसकी आंखें बुझती लौ जैसी थी। वो मेरे जीवन की सबसे बोझिल रात थी। रात हौले हौले जा रही थी, लेकिन सुबह की कोई आमद नहीं नजर आ रही थी। उसमें भीगी पेड़ों की शाखें उदास हो गई थी। अनुष्का का घर में आने का समय पता ही न चला, लेकिन उसे कुछ समय के लिए ही सही, उसके जाने का लम्हा सदी बन गया था। अनुष्का बहुत बोलती थी, बहुत प्यारा बोलती थी, लेकिन उस रात जब उसे इस घर से उस घर यानी उसकी मां के पास ले जाया जा रहा था, तब वो जैसे बेजान गुड़िया में तब्दील हो गई थी। उसे तब तक पता चल चुका था कि जहां जा रही है वही उसकी असली मां है, मेरी तो वो दत्तक पुत्री है। मेरे भीतर तूफान कुलाचे मार रहा था, नीर और निर्विकार भाव से इस नियति को स्वीकार कर रहा था। मेरे कानों में सिर्फ अनुष्का की किलकारियों की गूंज रह गई। वो लम्हे जब पहली बार उसने मां पुकारा था, वो रातें जब बुखार में हमने जाकर उसके माथे पर ठंडी पट्टियां रखी थी, वो मासूम मुस्कान जो उनके जीवन का एक पात्र संगीत थी, सब कुछ ऐसे पल भर में स्मृतियों की तिजोरी में रख उठे थे। अनुष्का ने मासूम निगाहों से मेरी ओर देखा। हम सब ने अपनी सुविधा अनुसार अनुष्का का घर तय कर दिया, लेकिन अनुष्का के नजरिए से किसी ने नहीं सोचा। वो अपनी मां के घर जब पहुंची तो उसके रोने का सिलसिला रुका ही नहीं।
1: जब वो रुका तो उसकी सुनी आंखें मेरा आंचल तलाशती रही। मैं उससे जब मिलने जाती मेरा आंचल पकड़ लेती, मुझे आने ही नहीं देती थी। ऐसे कसकर लिपट जाती जैसे मैं ही उसके जन्म देने वाली मां हूं। वक्त ने उसे जल्दी समझदार और बड़ा बना दिया था। उसकी सूनी आंखों में सपनों की जगह इंतजार ठिठक गया था। घर में रखे खिलौनों को हाथ न लगाती, खामोशी उसकी सदा बन गई थी। उसे जैसे हम दो परिवारों ने एक छोटी बच्ची से वस्तु बना दिया था। उसकी पीड़ा को महसूस कर मेरा दिल कचोटने लगता था।

किताबों के ऊंचे रैक से एक मोटी किताब गिरी और मैं जैसे यादों के ऊंचे पहाड़ से धम से नीचे आ गिरी। पर इस बार पहाड़ से नीचे आने पर अनुष्का जैसी प्यारी फूल मेरे सामने है। उसने दरवाजा पकड़ रखा था जैसे ये आखिरी सहारा हो। उसकी आंखें कह रही थीं, मां तुमने मुझे झाड़ी से उठाया था, पर क्या सचमुच मां की जगह भर सकोगी? अनुष्का, अनुष्का, उस दिन तुम झाड़ी में मिली थी अकेली और डरी हुई। मैंने तब तुमसे एक वादा किया था, तुम्हें मैं कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी और मैं उस वादे को हमेशा निभाती रहूंगी। कहते हुए मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया। अनुष्का के होंठ कांपे। याद आया कि उस दिन उसने पहली बार किसी अनजानी बाहों में अपने दर्द को ढक लिया था। उस औरत की छाती पर सिर रखकर रोई थी और फिर अब वही छाती फिर से उसके लिए स्तंभ थी। धीरे धीरे अनुष्का की उंगलियां चौखट से ढीली हो गईं। उस पल दोनों के बीच एक पुल बन गया, बीते हुए दर्द और आने वाली उम्मीद के बीच का पुल। घर के भीतर हल्की सी रोशनी बिखरी हुई थी। शाम की धूप खिड़की से छनकर कमरे में उतर रही थी, मानो वर्षों से बंद पड़े सन्नाटे को सहलाने आई हो। दीवारों पर समय की धूल थी, पर उस धूल में भी ममता की डोर थी। अनुष्का धीरे धीरे कमरे में चली आई। उसकी उंगलियां दीवार से छू गईं, जहां पहले मां ने तस्वीर टांगी थी। तस्वीर अब वहां नहीं थी, सिर्फ कील बाकी थी। वो कील मानो उसकी अपनी जिंदगी का प्रतीक थी, अधूरा खाली इंतजार करता हुआ कील। उसकी आंखें भर आई, पर ये आंसू मातृत्व की कमी के नहीं थे, बल्कि अपनी यात्रा की थकान के थे। उसने अपनी मां की तस्वीर पर माला पहनाते हुए धीमे स्वर में कहा, मां तुमने मुझे जन्म दिया और छोड़ दिया, फिर लौटकर मुझे पाया और खो दिया, लेकिन मैं अब तुम्हारी अधूरी छाया में नहीं रहना चाहती। मैं अपना जीवन खुद लिखूंगी। अनुष्का के शब्द हवा में गूंजे, मानो घर की दीवारें भी सुन रही हो। अनुष्का के पलकों पर आंसू की बूंद ठहर गई। उसने खिड़की खोली, सूरज की किरणें भीतर उमड़ आईं। कमरा अचानक उजाले से भर गया, जैसे अंधेरे की परतें टूटकर बिखर गई हों। उसने एक लंबी सांस ली और दरवाजे की तरफ पलटकर देखा। वही चौखट जो उसकी अनचाही शुरुआत की गवाह थी, अब उसी चौखट पर खड़े होकर उसने दृढ़ स्वर में कहा, मैं अब किसी की छोड़ी हुई बच्ची नहीं, मैं अब एक मां की बेटी हूं। यही घर अब मेरी पहचान बनेगा। अब मैं इस घर से कहीं और नहीं जाऊंगी। अनुष्का की आंखों में उदासी की धूसर बादल की बजाय पहली बार इंद्रधनुष चमका था, एक नई शुरुआत का। उस पल मानो वर्षों की वेदना धूप की तरह पिघल गई। बाहर आकाश में ढलता सूरज सुनहरी छटा बिखेर रहा था।

सपने में ठिठका इंतजार, ये गीतों भरी कहानी अभी आपने सुनी। लेखिका और स्वर ममता सिंह, संपादन काजल भगर्गी, प्रस्तुति जुबैर खान।

0: वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से, गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमीडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रोक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लो जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उसका आपको IV लगाना पड़े या ORS आपको अर्ली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स, अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इट्स बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।
2: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली OG कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो, क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

0: श्रोताओं, अभी आप विविध भारती से सुन रहे थे सदाबहार सुरीली कार्यक्रम FM 102.3 MHz पर। हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए श्रोताओं, सुनिए अपना पसंदीदा कार्यक्रम, फोन कॉल्स पर आधारित कार्यक्रम हेलो हिसार आपकी नजर।
1: हेलो हिसार,
2: हेलो हिसार,
3: हिसार।

0: नमस्कार, आदाब और प्यार भरा अभिवादन दोस्तों। गर्मियों की इस सुनहरी शाम में जब सूरज ढल रहा है, हवाओं में हल्की सी नरमी घुल रही है और दिन भर की थकान एक प्याले ठंडे सुकून की तलाश में है, ऐसे खूबसूरत पल में आपका स्वागत है आपके अपने फोन इन शो हेलो हिसार में। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी रेडियो हम सफर प्रीति ढिंडोरिया और अगले एक घंटे तक हम साथ में मिलकर सजाएंगे हमारी हेलो हिसार की महफिल और आपकी फरमाइशों को करेंगे पूरा। तो अगर आपके मन में भी है किसी गीत को सुनने की इच्छा या फिर कोई बात बताना चाहते हैं हमसे या बस दिल करता है आकाशवाणी हिसार में कॉल लगाकर हमसे बातें करने का, कुछ कहने का, तो उठाइए अपना फोन और जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ हर आवाज है खास, हर एहसास है अनमोल और हर श्रोता है हमारे परिवार का एक अहम हिस्सा। तो चलिए गर्मियों की शाम को बनाते हैं और भी यादगार आपके साथ, आपकी बातों के साथ। हेलो
1: हेलो
0: हेलो हिसार कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: मैडम जी नमस्कार। जी
0: नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
1: मैडम जी मैं सुखदेव कुमार प्रजापति अबोहर जिला फाजिलका पंजाब से बोल रहा हूँ जी।
0: सुखदेव जी कैसे हैं, क्या करते हैं आप?
1: मैं बढ़िया हूँ जी, सिलाई का काम करता हूँ मैडम जी।
0: सिलाई का काम करते हैं तो जी। अभी जैसे कुछ कुछ शादियों का काम जो चल रहा है तो आपका काम तो अच्छे से अभी जोरों पर होगा?
1: नहीं मैडम जी ठीक है जी, शादियों में अब तो

0: कम है, कुर्ते पजामे में काम ज्यादा है जी।
1: अच्छा, पर कुर्ते पजामे जैसी बात नहीं, किसी भी पहनावे में।
0: जी शादियों में तो सर्दियों में ज्यादा होता है जी काम हमारे, तो कोट पैंट का काम।
1: अच्छा, तो बताइए रेडियो कितना सुनते हैं अपने काम के साथ साथ?
0: रेडियो तो मैडम जी चलता ही रहता है जी, मोबाइल पे सुनते रहते हैं जी। और तो
1: अच्छा, तो गीत किस तरह के पसंद करते हैं? आज कौन सा गीत सुनेंगे ये भी बता दीजिए।
0: मैडम जी पुरानी फिल्मों के गीत पसंद है जी, आज सुना दो जी। राजकुमार फिल्म का गाना है जी,
1: कौन सा गीत?
0: आजा आई बहार दिल है बेकरारों में, हेलो इशार तेरे बिन रहा ना जाए।
1: वाह वाह, बहुत खूब। हेलो हिसार आ गया है और
0: जी
1: बिल्कुल भी इसके बिना रहने की आपको जरूरत नहीं है। सुनिए
0: जी मैडम जी,
1: राजकुमार फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत।
0: धन्यवाद मैडम जी।

0: हेलो,
1: हेलो बहन जी, नमस्कार।
0: नमस्कार। हेलो हिजार
1: बहन जी
0: कार्यक्रम में आपका
1: मैं,
0: स्वागत है। कौन बात कर रहे हैं?
1: धन्यवाद बहन जी, आपका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
0: बहुत बहुत शुक्रिया।
1: बहन जी, मैं पालमपुर जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से जगदीश राय गर्ग बोल रहा
0: जगदीश राय जी, पालमपुर पहुंच गए आप मानसा से।
1: हूँ। जहाँ बेटा और बहू आंखों का हॉस्पिटल है उनका, उनके पास आता रहता हूँ।
0: अच्छा, तो पालमपुर कैसी जगह है बताइए हमारे श्रोताओं को।
1: पालमपुर तो जैसे जैसे जन्नत बोल दे तो कोई
0: इतना खूबसूरत
1: इतना
0: है।
1: खूबसूरत है। आसपास चाय के बागान, घूमती बालदार सड़कें, ऊपर पहाड़ों की चोटियां, उस पर बर्फ जमी हुई जैसे चांदी बिखरी पड़ी हो, और खूबसूरत वातावरण।
0: वाह जी वाह, बहुत खूब। हम भी पहुंच गए उन्हीं वादियों में आपकी बातें सुनकर। जी आज,
1: सचमुच ये तो कुदरत ने
0: हाँ
1: जहाँ
0: जी,
1: जितनी भी सुंदरता सभी बख्श दी है यहाँ।
0: चलिए, बहुत अच्छा लगा जानकर और बहुत खुश हुए कि आप जो अपनी मतलब समय में से समय निकालकर अब वहां गए हैं और हमारे श्रोताओं को भी उसकी जानकारी दी है।
1: बिल्कुल बहन जी, मैं तो आधा समय पंजाब में और आधा समय हिमाचल में गुजारता हूँ।
0: अच्छा, चलिए बताइए आज गीत कौन सा सुनेंगे आप हिमाचल की वादियों में।
1: वादियों में बहन जी, वादियों का ही गीत सुनेंगे।
0: बताइए
1: तो
0: फिर कौन सा गीत।
1: फिल्म है जी राम तेरी गंगा मैली, उसमें गीत है सुरेश वाडेकर जी और लता जी का गाया। उसकी दो लाइनें मैं गुनगुना के ही बताऊंगा।
0: स्वागत है आपका।
1: उसने पहाड़ों का क्या कहना के बारों महीने, जहाँ मौसम जाड़ों का क्या कहना के बारों महीने, जहाँ मौसम

0: हेलो,
1: हेलो, नमस्कार मैम।
0: नमस्कार। हेलो हिसार कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: कौशिक मैडम जी, कैसी हैं आप?
0: बढ़िया, आप कौन बात कर रही हैं?
1: मैं जवालपुर एमपी से आपका श्रोता अशोक सिंह।
0: कैसे हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ मैडम, आप कैसे? आकाशवाणी टीम, हिसार के लोग।
0: आकाशवाणी हिसार के लोग भी बहुत अच्छे हैं, हमारे सुनने वालों की इतनी दुआएं हमारे साथ रहती हैं।
1: तो
0: जी
1: सब दुआएं और आशीर्वाद बना रहे आपके
0: बिल्कुल,
1: ऊपर।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। बताइए आज क्या सुनवाएं हम आपको। अच्छा
1: सुना दीजिए नई पिक्चर मेला का, समरिया लत जो है, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज।
0: ठीक है, हम आपकी ये फरमाइश जरूर पूरा करेंगे। बताइए क्या करते हैं आप, अपने कामकाज के बारे में कुछ बताइए, अपनी जगह के बारे में बताइए।
1: मैं तो इनकम टैक्स इंस्ट्रूमेंट से रिटायरमेंट हूँ
0: अच्छा,
1: और
0: चलिए।
1: सपना ये रेडियो का शौकीन हूँ, काज से जुड़ा हुआ हूँ और अपने स्वास्थ्य का देखभाल करते हैं। गर्मी के दिनों में ही कहता
0: जी
1: हूँ
0: बिल्कुल
1: कि
0: बिल्कुल।
1: अपना बचाव रखें, पशुओं का भी ख्याल रखें, उनके लिए दाना पानी रखें।
0: जी, ये संदेश आपका हमारे सभी सुनने वालों तक पहुंच गया और उम्मीद करते हैं हमारे सभी सुनने वाले इस बात पर जरूर अमल करेंगे। कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए मेला फिल्म का ये खूबसूरत गीत।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: हेलो,
1: हेलो हिसार।
0: बिल्कुल हेलो हिसार कार्यक्रम में आपका स्वागत
1: हाँ
0: है।
1: जी
0: इस
1: नमस्ते
0: कार्यक्रम
1: जी।
0: में नमस्ते, कौन बात कर रहे
1: हाँ
0: हैं?
1: प्रीति ढिंडोरिया जी बोल रहे हो?
0: हाँ जी, मैं प्रीति ढिंडोरिया बात कर रही हूँ।
1: हाँ जी मैं पप्पू लाखवाड़ा बोल रहा हूँ जी हिसार से, गांधी चौक आजाद गली से। हाँ
0: जी पप्पू जी, कैसे हैं?
1: काफी टाइम बाद में फोन लगा जी आज। कोशिश
0: चलिए, लग तो गया।
1: तो करते रहते हैं लेकिन लगता नहीं है।
0: हाँ जी, कोई बात नहीं, हमारे सुनने वालों का प्यार है ये, जो किसी को रोकता है और किसी का कॉल मिल जाता है।
1: हाँ जी हाँ जी बढ़िया
0: जी, तो बताइए पप्पू जी, कैसे हैं आप?
1: जी बढ़िया। हाँ
0: कामकाज सही चल रहा है?
1: काम काज सही चल रहा है जी।
0: अच्छा, आज गीत कौन सा सुनेंगे आप?
1: आज सुनना चाहता हूँ जी महबूब की मेहंदी का, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं।
0: बहुत खूबसूरत गीत की फरमाइश की है आपने।
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी
1: हाँ जी दोस्तों का नाम लेना चाहता हूँ जी।
0: हाँ जी, लीजिए।
1: राजे जैन, राजू उक्केवाला, अमन चड्ढा, विक्की नाई।
0: कार्यक्रम में फोन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनिए महबूब की मेहंदी फिल्म का ये प्यारा सा गीत।
1: धन्यवाद।

0: हेलो,
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्कार। हेलो हिसार कार्यक्रम में स्वागत करते हैं आपका।
1: मैडम पवन कटारिया, श्री करनपुर जिला, श्री गंगानगर, राजस्थान से बोल रहा हूँ।
0: कैसे हैं पवन जी?
1: मैम बढ़िया है,
0: मौसम के
1: बस
0: मिजाज कैसे हैं गंगानगर में?
1: नॉर्मल था, नॉर्मल था, कोई ज्यादा भी गर्मी नहीं है इतनी, और
0: ये बार बार जो बारिश हो रही है उसकी वजह से।
1: उससे वजह से मौसम नॉर्मल हो गया।
0: जी, कामकाज कैसा चल रहा है आपका?
1: काम काज ठीक है मैडम, अब तो छुट्टियां होने वाली है एक हफ्ते में।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो छुट्टियों में
1: बिल्कुल
0: खास क्या करते हैं आप? हम अक्सर
1: छुट्टियां
0: बच्चों से पूछते हैं, आज हम टीचर से पूछ रहे हैं।
1: मैम मैम जो भी ऐसा होता है कि जो भी बच्चा कोई पूछने के लिए आए, क्वेश्चन वगैरह, उनके घर बैठे उनको सॉल्व करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, बच्चों की ऐसी बात नहीं
0: अच्छा, मतलब आप ऑनलाइन भी बच्चों की मदद करते हैं और ऑफलाइन भी।
1: है। बिल्कुल बिल्कुल मैडम,
0: बहुत अच्छा लगा जानकर। और छुट्टियों में तो पूरा पूरा टाइम होता है आपके पास, तो
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: रेडियो भी खूब सुनेंगे, हमारे कार्यक्रम
1: वो तो
0: सभी
1: चलता ही
0: सुनेंगे।
1: रहता है मैडम, वो तो चलता ही रहता है साथ के साथ।
0: अच्छा जी, तो
1: फिल्म
0: बताइए आज गीत कौन सा सुनेंगे फिर?
1: आई थी तीन देवियां, ए यार मेरे तुम भी हो गए जब, घूंघट तो जरा खोलो, किशोर
0: ठीक
1: जी की
0: है,
1: आवाज में।
0: ये गीत हम आपको जरूर सुनवाएंगे। पवन जी, कार्यक्रम में फोन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनिए अपनी पसंद का गीत।
1: धन्यवाद मैम।

0: हेलो,
1: नमस्कार मैडम, मैं चिरमिरी कुरासिया कालदी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: इंद्रभान सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो हिसार कार्यक्रम में।
1: जी मैडम, आप भी अच्छे, मैं भी अच्छा हूँ। ड्यूटी पीरियड में हूँ मैडम, आपका
0: बिल्कुल।
1: कार्यक्रम में फोन किया हूँ। और गर्मी है तो काफी बढ़ गया है मैडम।
0: जी, गीत कौन सा सुनेंगे?
1: आज मैं सुनूंगा मैडम, फिल्म का नाम है रॉकी, और गीत की वो है हम तुमसे मिले फिर जुदा हो गए। गायक किशोर कुमार, लता मंगेशकर, ये संजय दत्त, टीना मुनीम, शक्ति कपूर जी का फिल्म का गाना है। और सबसे पहले गीत आपको केंद्र निर्देशक साहब को, पूरे भारत श्रोता को, आकाशवाणी हिसार में जुड़े जुड़े लोगों को, आपके परिवारजन के, रिश्तेदारों को, आपके सहेलियों को, केंद्र निर्देशक साहब सबको डिजाइन करो मैडम। इसका प्रसारण आज शाम
0: बहुत
1: को
0: बहुत
1: 5 बजे।
0: शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया इंद्रबान जी। आज आप सुनेंगे, आज के जो ये आपकी कॉल है आज के कार्यक्रम में होगी, कार्यक्रम में फोन किया, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: फोन शामिल किया मैडम, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो,
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्कार। हेलो हिसार कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कौन बात कर रहे हैं?
1: मैं राधेश्याम कटारिया, श्री कदमपुर जिला, श्री गंगानगर, राजस्थान से बोल रहा हूँ।
0: राधे श्याम जी, कैसे हैं?
1: बढ़िया है मैडम जी।
0: बताइए, आज गीत कौन सा सुनेंगे आप?
1: आज गीत सुनना है, अमर अकबर एंथनी का गीत है, माई नेम इज एंथनी गुंसेल्विस। हाँ
0: बहुत अच्छा गाना है ये।
1: जी मैडम।
0: और कुछ कहना चाहेंगे?
1: मैडम आज मैं नमस्ते साहब सुन रहा था, आज मेरे को बहुत अच्छा लगा
0: बहुत बहुत शुक्रिया राधे श्याम जी, हमारी
1: उसमें।
0: हौसला अफजाई के लिए। जी
1: उसमें आपने एक विशेष व्यक्ति के बारे में बताया था, कपिल देव के बारे में,
0: जी
1: बहुत ही अच्छा लगा।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया राधे श्याम जी, आप लोगों को पसंद आया, हमारी मेहनत सफल हुई।
1: हाँ जी, प्रोग्राम
0: जी
1: पेश करते हो बहुत ही अच्छे ढंग से करते हो, बहुत ही अच्छा लगता है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया राधे श्याम जी, ऐसे ही हमारे जो रेडियो है उससे अपना प्यार बनाए रखिए और यूं ही फरमाइशें करते रहिए और हम आपकी फरमाइशों को पूरा करते रहेंगे। कार्यक्रम में फ़ोन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनिए अमर अकबर एंथनी फिल्म का ये प्यारा सा गीत।
1: थैंक यू मैडम।
2: You see, the whole country of the system is juxtaposition by the hemoglobin in the atmosphere because you are a sophisticated rhetorician intoxicated by the exuberance of your own verbosity.
3: What?
4: My name is Anthony Gonsalves.
3: Gonsalves?
4: Right. My name is Anthony Gonsalves.

0: गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस। राइट, मैं दुनिया पे अकेला हूँ।
2: यू सी द कोएफिशिएंट ऑफ द लीनिया इज जक्सटापोजिशन्ड बाय द हेमोग्लोबिन ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द कंट्री।

0: हेलो
1: हेलो जी,
0: हेलो हिसार कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
1: नमस्कार बहन जी।
0: नमस्कार मांगीलाल चंदेल जी।
1: जी,
0: जी
1: आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, कट गया था फोन,
0: हाँ जी हाँ
1: टावर
0: जी।
1: थोड़े कम मिल रहा है इसलिए कट गया।
0: अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, दोबारा आपकी किस्मत तेज है, दोबारा मिल गया।
1: दोबारा
0: जी
1: मिल गया, नसीब जोरदार है मेरा
0: बिल्कुल
1: आज।
0: बिल्कुल, बताइए गीत कौन सा सुनेंगे
1: जी
0: आज।
1: बहन जी, फिल्म का नाम तो रहेगा संजोग और गाने के बोल रहेंगे बदली से निकला है चांद। पुरानी
0: पुरानी वाली संजोग फिल्म का गीत आप सुनना
1: वाली
0: चाहते हैं।
1: संजोग है, पुरानी वाली। बिल्कुल,
0: जी
1: धन्यवाद
0: जी
1: आपको, धन्यवाद
0: कार्यक्रम में
1: धन्यवाद।
0: फोन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए संजोग फिल्म का ये खूबसूरत गीत।
1: जी।

0: तो दोस्तों, हंसी, गीत और प्यार भरी बातों से सजी आज की ये शाम अब विदा लेने को है। आपकी आवाज़ों ने, आपकी मुस्कुराहटों ने और आपके दिल से निकले शब्दों ने इस महफिल को सचमुच यादगार बना दिया। गर्मियों की इस शाम में उम्मीद है हमारे साथ बिताए गए ये पल आपके मन को ठंडक और चेहरे को मुस्कान दे गए होंगे। अब दीजिए हमें इजाज़त, लेकिन वादा है कि फिर मिलेंगे एक नई शाम, नई उम्मीदों और नई उमंगों के साथ, नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए ठंडा पानी पीजिए, धूप से बचिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए, प्यार बांटते रहिए और पक्षियों के लिए पानी और दाना ज़रूर से ज़रूर रखिए, क्योंकि ये हमेशा हम पर ही निर्भर रहते हैं। इसी संदेश के साथ आज के हेलो हिसार कार्यक्रम से आपकी अपनी रेडियो हम सफ़र प्रीति ढिंडोरिया लेती है इजाज़त। नमस्कार, आपकी हर शाम यूं ही खुशनुमा बनी रहे।
1: हेलो हिसार,
2: हेलो हिसार, हिसार।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

श्रोताओं, अभी आप कार्यक्रम हेलो हिसार सुन रहे थे। FM 102.3 MHz पर हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ लम्हों बाद शाम के 6 बजे चाहते हैं, अब आपको हिंदी समाचारों के लिए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र लिए चलते हैं। इंतजार के हल्के से पल हमारे साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को नेता चुना गया। श्री शाह ने बताया कि बैठक में श्री अधिकारी के निर्विरोध चुना गया।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी तमिलिका वितरिक कड़गम टीवीके को नई सरकार के गठन के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने समर्थन दे दिया है। 5 विधायकों के साथ कांग्रेस पहले ही समर्थन दे चुकी है। 2 विधायकों वाली वीसीके पार्टी बाद में अपना निर्णय घोषित करेगी। केरला में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे।

0: पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डाटा दिया गया है। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को आयोजित इस पर्व में शामिल होंगे। राज्य मंत्रिमंडल मंत्री जीतू भाई वाघानी ने बताया कि पर्व के अंतर्गत सोमनाथ में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को प्रदर्शित करने वाले कार्यक्रम आयोजित होंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भूमि संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आधुनिकीकरण के प्रयासों से भूमि संबंधी सेवाओं को पारदर्शी, कुशल और परेशानी मुक्त बनाया जाएगा। इससे नागरिकों और राजस्व अधिकारियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। आयोग के अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया है। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। मुंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 941 अंक बढ़कर 77,959 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 298 अंक की बढ़त के साथ 24,331 पर दर्ज हुआ। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर महिला रिकर्व व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। कल भारतीय महिला रिकर्व टीम ने फाइनल में प्रवेश किया। दिल्ली में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। दिल्ली अंक तालिका में 7वें और कोलकाता 8वें नंबर पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए श्रोतों, पेश खिदमत है कार्यक्रम रूपरेखा। आपकी खिदमत में हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का मिला जुला खुलासा।

आइए श्रोताओं, पहले हल्की नजर हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। अब से कुछ ही देर बाद शाम 6:10 पर प्रादेशिक समाचारों के लिए हम आपको आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र लिए चलेंगे। प्रभु वंदना का कार्यक्रम भक्ति संगीत सुनेगा आज शाम 6:20 पर। श्रोताओं, आज शाम 6:30 पर NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे उमंग।

खेती किसान सेती, ये कार्यक्रम आज आप सुनेंगे शाम 7 बजे। 7:30 पर आप सुन सकते हैं हमारे केंद्र से कार्यक्रम पहाड़ी गांव। रात्रि 8 बजे हम आपके लिए लेकर आएंगे पंजाबी गीत।

श्रोताओं, आज रात्रि 8:30 पर सुनेगा कार्यक्रम एक ही फिल्म से। रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या के लिए हम आपको आकाशवाणी के दिल्ली

आई श्रोताओं, अब आपको हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में हल्की जानकारी दे दें। कल हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होगी प्रातः 5:55 पर। कल प्रातः 6:00 हिंदी समाचारों के लिए हम आपको आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र ले चलेंगे। कल प्रातः 6:05 पर विविध भारती से सुनेंगे आप कार्यक्रम वंदन बार। कार्यक्रम रूपरेखा आपकी पेशे खिदमत होगी कल प्रातः 6:45 पर। कल प्रातः 7:10 पर हरियाणवी गीतों पर आधारित कार्यक्रम आप सुनेंगे लोकरंग। सुप्रभात कार्यक्रम आप सुन सकते हैं हमारे केंद्र से कल प्रातः 7:40 पर। और कल सुबह सुनिएगा अपना पसंदीदा कार्यक्रम नमस्ते हिसार। श्रोतों, कल शाम 5:00 सोशल मीडिया पर आधारित कार्यक्रम आप सुनेंगे संदेश आपके गीत हमारे। 6:30 पर कल शाम कार्यक्रम होगा युवा उमंग। कल शाम 7:00 कार्यक्रम आप सुनेंगे किसान वाणी। और हमारे गांव का समय रहेगा हमेशा की तरह कल शाम 7:30 पर। शहर की गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम परिक्रमा आपके लिए पेश होगा कल रात्रि 8:00। और श्रोतों, कल रात्रि 10:00 कार्यक्रम हेलो हिसार का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का मिला जुला खुलासा। ये आकाशवाणी हिसार है। कुछ लम्हों बाद शाम के 6:10 हुआ चाहते हैं। अब आपको प्रादेशिक समाचारों के लिए आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र लिए चलते हैं। प्रतीक्षा के हल्के से पल हमारे साथ।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभार्थियों के खाते में करोड़ों रुपए की राशि हस्तांतरित की। श्री नायब सिंह ने पंजाब सरकार पर जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने में विफल रहने का आरोप लगाया। केंद्र सरकार ने कहा, देश भर में घरेलू एलपीजी की आपूर्ति सुचारू रूप से जारी। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा, विकास कार्यों में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। और हरियाणा में आज विश्व रेड क्रॉस दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभार्थियों के खातों में करोड़ों रुपए की राशि हस्तांतरित की, जिसमें लाडो लक्ष्मी योजना की सातवीं किस्त शामिल है। मुख्यमंत्री ने 9,76,000 बहनों के खातों में 205 करोड़ रुपए की राशि जारी की।
1: अगर स्कीम के प्रदेश में जो बेनिफिशरीज हैं, उन बेनिफिशरीज को सीधा लाभ उनके खाते में पहुंचाने का काम पारदर्शी तरीके से हमारी सरकार कर रही है। आज लक्ष्मी योजना की सातवीं किस्त जारी करते हुए मुझे खुशी हो रही है। अब तक सात किस्तें जारी की जा चुकी है। सात किस्तों में बहनों के खाते 1,415 करोड़ रुपया जमा किए। ये महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक बड़ा इनिशिएटिव था।
0: मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशनों के तहत 35,62,000 लाभार्थियों को 1146 करोड़ 73 लाख रुपए जारी किए गए। इसी तरह मुख्यमंत्री ने किसान मुआवजा राशि भी जारी की।
2: जो फसल खराब हुआ था खरीफ का, उसमें 1,50,583 किसानों को आज 370 करोड़ 5 लाख रुपए की मुआवजा राशि आज जारी की।
0: इसके अलावा दयालु योजना के तहत 5,677 परिवारों को 215 करोड़ 29 लाख रुपए की सहायता राशि और 11,23,000 बहनों के खाते में गैस सिलेंडर सब्सिडी की 38 करोड़ 54 लाख रुपए की राशि जारी की गई। साथ ही 64,923 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के रूप में 100 करोड़ 45 लाख रुपए की राशि डिजिटल माध्यम से प्रदान की गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज अलग अलग क्षेत्रों में हरियाणा व पंजाब सरकार से संबंधित तथ्यों और आंकड़ों की तुलना करते हुए पंजाब सरकार को असफल बताया। मुख्यमंत्री आज चंडीगढ़ में सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के खातों में लाभ राशि के सीधे हस्तांतरण उपरांत पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हाल ही में पंजाब में हुए बम विस्फोट के संबंध में पंजाब के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं है, जबकि वहां के पुलिस महानिदेशक के अनुसार इसके तार आईएसआई से जुड़े हो सकते हैं। श्री नायब सिंह ने कहा कि पंजाब सरकार नशे व खनन को नियंत्रित करने का झूठा दिखावा कर रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोग बदलाव चाहते हैं। उनके पंजाब दौरों पर विपक्ष द्वारा उठाई जा रही आपत्ति के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब के लोग उन्हें प्यार से अपने कार्यक्रमों में बुलाते हैं, तो इससे विपक्ष को क्या परेशानी है। एक प्रश्न के उत्तर में श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आम आदमी पार्टी द्वारा काफी पहले की गई घोषणा के बावजूद आज तक वहां महिलाओं को आर्थिक लाभ नहीं दिया गया। हरियाणा के वर्तमान बजट में महिलाओं के लिए 6500 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान करने के बाद पंजाब सरकार ने लोक दिखावा करते हुए आनन फानन में विधानसभा में महिलाओं के लिए घोषणा कर दी, जबकि अभी तक एक महिला को भी लाभ नहीं मिला है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है। नई दिल्ली में आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें।
3: भारत सरकार ने ये कोशिश की अभी तक कि कोई प्राइस इंक्रीज ना हो और इसके लिए एक्साइज ड्यूटी भी कम की। इसके अलावा और भी बहुत सारे कदम लिए, जैसे कि रिफाइनरीज के अंदर एलपीजी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, पीएनजी कनेक्शंस को प्रमोट करना, हमारे फर्टिलाइजर प्लांट्स को भी धीरे धीरे बढ़ाया गया और अब लगभग 98% तक उनकी सप्लाई इंश्योर की गई है।
0: तो श्री शर्मा ने कहा कि सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए 5 किलोग्राम के सिलेंडरों की आपूर्ति भी बढ़ा दी है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आज पलवल में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक में केंद्र व राज्य सरकार द्वारा करवाए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। केंद्रीय राज्य मंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पलवल जिले में विकास कार्यों को गति प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। विकास कार्यों में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। विकास कार्यों की रिपोर्ट पेश करने के भी निर्देश दिए गए हैं। एक सवाल के जवाब में श्री गुर्जर ने कहा कि विकास कार्यों में कोताही बरतने की शिकायत बैठक में सामने आई है। ऐसे मामलों की जांच के निर्देश दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बल्लभगढ़ से पलवल तक मेट्रो परियोजना को लेकर उन्होंने बताया,
4: अभी बात हुई है उसका कृपया चल रहा है, आरआरटीए का भी सर्वे चल रहा है, मेट्रो का भी चल रहा है, दिल्ली में फिर से बैठक करके उसे आगे किया जाए।
0: बंगाल में ममता बनर्जी द्वारा लगाए गए वोट चोरी के आरोप पर उन्होंने कहा,
4: विपक्ष जब भी हारता है तो कहता है कि चोरी हो गई, वोट चोरी हो गई, गड़बड़ हो गई, जबरदस्ती जीत गए, बंगाल में चोरी होगी, तो फिर चोरी ही केरल में क्यों नहीं हुई, तमिलनाडु में क्यों नहीं हुई? जब लोकसभा के चुनाव हुए थे 240 सीटें एनडीए की आई थी तब तो उन्होंने कहा वोट चोरी हो गई, ये हार को पचा नहीं पाते।
0: हरियाणा में नगर निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आज पंचकुला में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने वार्ड 12 से निर्दलीय चुनाव लड़ रही पूर्व पार्षद ओमवती पुनिया के घर पहुंचकर उनकी भाजपा में घर वापस

0: वापसी कराई। पूर्व पार्षद ओमवती पुनिया ने भाजपा प्रत्याशी राकेश जगोता को समर्थन देने की घोषणा की और कहा कि वह भाजपा प्रत्याशी को भारी बहुमत से जिताने के लिए मेहनत करेंगी। अंबाला नगर निगम चुनाव को लेकर आज विभिन्न राजनीतिक दलों तथा आजाद उम्मीदवारों द्वारा शहर के अलग अलग क्षेत्रों में रोड शो निकाले गए। इन रोड शो में उम्मीदवारों के समर्थन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। उम्मीदवार खुले वाहनों में सवार होकर लोगों के बीच पहुंचे और लोगों से समर्थन मांगा। प्रदेश के पूर्व मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता कृष्णमूर्ति हुड्डा ने आज रोहतक में एक पत्रकार वार्ता की। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के एक पत्रकार वार्ता में दिए उस बयान पर भी प्रतिक्रिया दी, जिसमें हुड्डा ने सांपला नगर पालिका चुनाव में सांपल वासियों से भाजपा के खिलाफ मतदान करने की अपील की थी। उन्होंने कहा कि सांपला नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार भी खड़ा नहीं कर पाई, जबकि यह क्षेत्र भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विधानसभा क्षेत्र में आता है। पूर्व मंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री के गृह जिले में करीब खत्म होने के कगार पर है। आज विश्व रेडक्रॉस दिवस पर हरियाणा में रक्तदान शिविर सहित कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जींद जिले में रेडक्रॉस भवन में आयोजित मुख्य समारोह में मानवता की सेवा का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में हरियाणा के राज्यपाल असीम कुमार घोष ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना संदेश दिया। मुख्य अतिथि अतिरिक्त उपायुक्त प्रदीप कौशिक ने बताया कि रेडक्रॉस सोसाइटी की ओर से रक्तदान शिविर के आयोजन के अलावा लगभग 5.25 लाख रूपये की लागत के सहायक उपकरण भी वितरित किए गए।
1: रेडक्रॉस दिवस के उपलक्ष्य में आज हमने एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है, तो लोग ज्यादा से ज्यादा रक्तदान के लिए मोटिवेट हो, जो व्यांग है उनको कुछ अप्लायंसेस कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। लगभग 5.25 लाख रुपए के अप्लायंसेस जो है, जिसमें कानों की सुनने की मशीन है, व्हील चेयर है और बैंक है, फिक्स सेफ्टी बेल्ट है।
0: फरीदाबाद में भी विश्व रेडक्रॉस दिवस जिला रेडक्रॉस सोसाइटी द्वारा सेवा जागरूकता और मानवता को समर्पित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिला रेडक्रॉस सोसाइटी के सचिव विजेंद्र सरोता ने बताया,
2: आज विश्व रेडक्रॉस दिवस के अवसर पर जिला रेडक्रॉस सोसाइटी द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और एक यूथ रेडक्रॉस के साथ सेमिनार किया गया। उसके बाद हमारे नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती सभी रोगियों को फल और मिठाई वितरित की गई, विशेष पोषाहार वितरित किया गया।
0: आज विश्व थैलेसीमिया दिवस व विश्व रेडक्रॉस दिवस के अवसर पर हिसार रेडक्रॉस भवन में रक्तदान शिविर और एक रैली का भी आयोजन किया गया। रैली में लोगों को नशे के दुष्परिणाम बारे जागरूक किया गया। मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभार्थियों के खाते में करोड़ों रुपए की राशि हस्तांतरित की। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।
3: FM 102.3 MHz पर हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए श्रोताओं, प्रभु वंदना का कार्यक्रम सुनिए, भक्ति संगीत।

श्रोताओं, अभी आप प्रभु वंदना का कार्यक्रम सुन रहे थे, भक्ति संगीत एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। हम आपकी सेवा में आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए श्रोताओं, अब सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम अब आप सुनेंगे, उमंग।

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को मेरा यानी विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: लिखते हैं, खुशी दुनिया में उपलब्ध सब दवाओं में सर्वोत्तम दवा है, इसलिए खुश रहो और खुशियां बांटो।
0: बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना भावना बिंदु गोलू और कुसुमबाई नागनपुरे।
2: अयोध्या धाम से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राज बाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
0: और पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू,
2: सिटी गोनियाना मंडी से गुरप्रीत सिंह जस्सल
0: और गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी।
2: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
0: अरे वह फिर से आप सबका स्वागत है ये भी जानिए श्रृंखला में। श्रोताओ, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं समुद्र की,
2: इसके रहस्यों की और मानवता को दिए जाने वाले इसके अमूल्य योगदान की। आइए सबसे पहले जानते हैं कि भारतीय शास्त्रों में इसे किन किन नामों से पुकारा गया है। इन नामों से भी समुद्र की विशेषताओं का पता चलता है। अजीत जी, अब आपकी बारी है।
0: जी विमलेश जी, तो साथियों, समुद्र का सबसे प्रचलित नाम है सागर
2: जी,
0: लेकिन इसे जलधि भी कहा जाता है, यानी जल को धारण करने वाला। अब आपकी बारी।
2: दूसरा प्रचलित नाम है रत्नाकर, यानी बहुमूल्य रत्नों का भंडार। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में समुद्र मंथन का उल्लेख है। इस प्रक्रिया में बहुत से अलग अलग प्रवृत्ति वाले रत्न निकले थे।
0: श्रोताओं, समुद्र को अर्णव भी कहा गया है, यानी विशाल और गर्जन करने वाला। इसे सिंधु भी कहते हैं, यानी जल का विशाल बहता भंडार। तो श्रोताओं, ये हैं समुद्र के विभिन्न नाम जो हम अपने शास्त्रों में पाते हैं। आज हम विशेषकर बात करेंगे समुद्र की गहराई और इसके एक खास रहस्य के बारे में।
2: वैसे तो समुद्र अपनी गहराई के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि दुनिया का सबसे गहरा समुद्र स्थल कहाँ है। जी जी जी, चर्चा को आगे बढ़ाएं।
0: जी श्रोताओं, मरियाना ट्रेंच दुनिया का सबसे गहरा समुद्री क्षेत्र है, जो फिलीपींस के पास प्रशांत महासागर में है, और सबसे गहरे स्थान का नाम है चैलेंजर डीप।
2: यहाँ समुद्र 10,984 मीटर से भी अधिक गहरा है, यानी करीब 11 किलोमीटर गहरा।

0: विमलेश जी, इस तथ्य को और रोचक बनाते हैं एक प्रश्न से। क्या चैलेंजर डीप की गहराई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से अधिक है?
1: जी बिल्कुल, इस बात को एक तुलना से समझते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊपर है, जबकि समुद्र तल से नीचे चैलेंजर डीप की गहराई 10,984 मीटर है, यानी अंतर करीब 2 किलोमीटर का है।
0: 2 किलोमीटर का अंतर, अद्भुत सच में। यानी यदि माउंट एवरेस्ट को मरियाना ट्रेंच के चैलेंजर डीप में डाल दिया जाए तो यह पूरी तरह से डूब जाएगा
1: जी,
0: और ऊपर 2 किलोमीटर गहराई का पानी बचा रहेगा
1: जी।
0: अच्छा चलिए, वार्ता को कुछ और रोचक बनाते हैं। अभी हमने बात की माउंट एवरेस्ट की, सुना है कि समुद्र के अंदर भी पर्वत होते हैं।
1: जी बिल्कुल सही सुना है आपने। समुद्र के अंदर हमारी भूमि से अधिक पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वहाँ बड़े बड़े ज्वालामुखी भी होते हैं। श्रोताओं को एक और रोचक बात बताऊं, समुद्र में भी एक ऐसा पर्वत है जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से भी अधिक मानी जाती है। नाम है माउना केया।
0: जी श्रोताओं, है ना रोचक बात। यदि पूरी पृथ्वी की बात करें तो इसमें समुद्र भी शामिल है
1: जी,
0: तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, ये यानी माउना केया
1: जी।
0: और ये पर्वत प्रशांत महासागर में स्थित है
1: जी।
0: समुद्र के ऊपर दिखाई देने वाली ऊंचाई लगभग 4,000 मीटर है, लेकिन बाकी हिस्सा समुद्र के अंदर है। माउना केया की ऊंचाई आधार से लगभग 10,200 मीटर है, यानी जबकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है।
1: ये एक ज्वालामुखी द्वारा निर्मित पर्वत है जो लाखों वर्षों में लावा जमा होते रहने से धीरे धीरे बना और परत दर परत जमा होकर इतना विशाल हो गया, आज ये एक आकर्षक पर्यटन स्थल और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए जाना जाता है।
0: तो विमलेश जी, अब समाप्त करने से पहले श्रोताओं को समुद्र के बारे में कुछ और रोचक जानकारी दे दें
1: जी।
0: तो सबसे पहली जानकारी है, पूर्ण विकसित ब्लू व्हेल समुद्र का सबसे बड़ा जीव है। और मालूम है इसका दिल एक सामान्य कार के आकार से भी बड़ा होता है।
1: जी, समुद्र की गहराई के 3 भाग हैं, सतही क्षेत्र, ये वो भाग हैं जहां अधिकतर जीव पाए जाते हैं, यहां सूर्य का प्रकाश पहुंच पाता है।
0: और दूसरा क्षेत्र है मध्य क्षेत्र, यहां समुद्र का प्रकाश बहुत कम पहुंचता है, इसलिए कई ऐसे जीव यहां पाए जाते हैं जो खुद चमकते हैं।
1: और तीसरा क्षेत्र है बहुत ही गहरा क्षेत्र, यहां पूरी तरह से अंधेरा रहता है और जल का दबाव लाखों टन से भी अधिक होता है। सामान्य स्थिति में हम वहां कुचल जाएंगे, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र में बहुत से जीव पाए जाते हैं। ये प्रकृति का चमत्कार नहीं तो और क्या है?
0: सच में ये प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है। तो श्रोताओं, अब करते हैं समाप्त आज की चर्चा और अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए।
0: 8800440559 यानी हमारे IBRS नंबर पर और audio@cieet.nic.in पर आप अपना संदेश भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो करना मत भूलिएगा।
0: और अब सुनते हैं आज का विशेष शैक्षिक कार्यक्रम, शीर्षक है रविंद्रनाथ टैगोर।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा कविवर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन, उनकी साहित्यिक रचनाओं और कविताओं के बारे में जानकारी दी गई है। उनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को भी शामिल किया गया है और बताया गया है कि उनका व्यक्तित्व कितना बहुआयामी और विलक्षण था। रविंद्र संगीत के बारे में भी इसमें चर्चा की गई है।
0: विश्व शिक्षक रविंद्रनाथ टैगोर।

0: रविन्द्रनाथ ठाकुर के इस गीत में है निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा, चाहे कोई साथ दे या ना दे। आज भी रविन्द्र संगीत में वही ऊर्जा, वही शक्ति और वही प्रेरणा है। रविन्द्र संगीत हमारे दिलो दिमाग पर छा गया है, हमारी संस्कृति में रच बस गया है। बंगाल की माटी के कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि काव्य कृति को 10 दिसंबर सन 1913 में एशिया में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये संसार का सर्वोत्कृष्ट और दुर्लभ पुरस्कार है।
1: इस अवसर पर स्वीडिश अकादमी की नोबेल कमेटी के चेयरमैन हेरल्ड हर्जन ने कहा था,

भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने श्रेष्ठ आध्यात्मिक कविताओं की रचना की है। गीतांजलि ने बहुत से आलोचकों का ध्यान अपनी तरफ मोड़ा है और अब ये अंग्रेजी साहित्य में ही नहीं, अमेरिका और समस्त पश्चिमी दुनिया के साहित्य में भी उपलब्ध होगी। इसकी विशेषताएं हैं कवि के विचारों में संपूर्णता, कविताओं में लयात्मक संतुलन, शब्दों का चयन, और किसी अन्य भाषा में इसका अनुवाद करना मुश्किल होगा।

0: गीतांजलि के गीतों में भारत के प्रति अगाध प्रेम और श्रद्धा है।
1: हेमोर चित्तो पुन्नो तीर्थो जागोरे धीरे एई भारतेर महामानवीर सागर तीरे।
2: इस गीत में कवि ऐसी भारत की कामना करता है जहां हमारा मन निर्भय और मस्तक ऊंचा हो।
0: वे मनुष्य के कर्म को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। भजन, कीर्तन, कंठी माला सब बेकार। किसे पूछते हो अंधियारे मंदिर में तुम बंद किए सब द्वार। कृषक जहां खेती करते हैं ईश वहां है।
2: गीतांजलि में प्रतीक्षा का भाव अनेक रचनाओं में है, चाहे वो ईश्वर की हो या ऋतुओं की। इसमें कुछ गीत भावात्मक हैं, कुछ सॉनेट शैली में लिखे गए हैं। सॉनेट 14 पंक्तियों के प्रगीतों को कहते हैं जो मुक्त छंद में लिखे होते हैं। कवि रविंद्रनाथ ने इन्हीं दिनों हमारे देश का राष्ट्रगान जन गण मन लिखा और स्वयं उसे गाया भी।
3: जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ युष्कल बंगा विंध हिमाचल जमुना गंगा उत्थल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे काहे तब जय गाथा। जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे।
2: बंगाल ही नहीं, उनके गीत देश विदेश गांव शहर हर जगह गाए और सराहे जाते हैं। भारत के सुप्रसिद्ध जाने माने साहित्यकार रविंद्रनाथ ठाकुर एक सशक्त गीतकार और संगीतकार ही नहीं, साहित्य की अनेक विधाओं में उन्हें महारत हासिल है। वे एक सुविख्यात कवि, नाटककार, उपन्यासकार, कथाकार, गद्यकार, निबंधकार, व्याख्याता, कुशल गायक, चित्रकार और नाट्य अभिनेता होने के साथ साथ विश्व के एक महान शिक्षक हैं।
0: देश ने मनाई रविंद्रनाथ ठाकुर की 150वीं जयंती। इस अवसर पर तेलुगु के प्रसिद्ध कवि समालोचक एम गोपी ने ठाकुर बाड़ी कविता लिखी। प्रस्तुत अंश उसी कविता का है। जोड़ा सांको की एक पतली गली में है ठाकुर बाड़ी। उस गली में खोल दिए हैं विशाल विश्व के प्रवेश द्वार। द्वार छोटे भले ही क्यों ना हो पर विहरण है दिगंतों तक। सात मई सन 1861 को इसी ठाकुरबाड़ी में पिता देवेंद्रनाथ की 14वीं संतान रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म

हुआ। ये जगह उत्तरी कलकत्ता में है, कलकत्ता जो अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के राज में इसे बनाया गया था। बचपन में रविंद्रनाथ ने बहुत से स्कूल बदले। स्कूल के बंधन उन्हें कारागार जैसे लगते। घर पर ही उन्होंने बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, संगीत, चित्रकला आदि विषयों का अध्ययन किया। मगर घर में नौकरों का शासन भी था, जिसे रवि ने सेवकशाही तंत्र का नाम दिया। ये नौकर बच्चों को रामायण महाभारत की कथाएं सुनाते, उन्हें घेरे रहते और दंड

रविंद्रनाथ ने लगभग 7-8 वर्ष की उम्र से लिखना शुरू किया। उन्हें नए शब्दों को गढ़ने में बहुत आनंद मिलने लगा और फिर नीले कागजों की बही पर गढ़ी जाने लगी कविता। उनकी प्रारंभिक रचनाओं में बनफूल तथा कवि काहिनी विशेष महत्वपूर्ण है।

0: और फिर वो दिन भी आया जब पिता 12 वर्ष के रविंद्रनाथ को अपने साथ हिमालय यात्रा पर ले गए। प्रकृति के प्रति लगाव को देखते हुए पिता ने उन्हें वहां घूमने और अपने विचारों को व्यक्त करने की आजादी दी। यहीं रविंद्र ने प्रकृति को जाना पहचाना और उसे महसूस किया।
1: कविंद्र रविंद्र को नदी का कवि भी कहा जाता है।
0: यही प्रकृति आगे चलकर उनके काव्य सृजन का सशक्त आधार बनी। 12 वर्ष की उम्र में ही रविंद्रनाथ ठाकुर की पहली कविता अभिलाष सन 1874 में तत्व बोधिनी पत्रिका के नवंबर दिसंबर अंक में छपी। फिर दूसरी रचना भारत उस समय की अमृत बाजार पत्रिका में प्रकाशित हुई। उनका मन संगीत में रचा बसा था। उन्होंने भक्ति, प्रकृति, देश प्रेम, ऋतुओं, उत्सवों सभी के गीत गाए। उन्होंने बंगला में गीतों की स्वरलिपि साधने में कठिन साधना की थी। सांध्य संगीत और प्रभात संगीत संग्रह उनके गीतों के दो महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं। प्रभात संगीत संग्रह की एक चर्चित कविता है निर्झरेर स्वप्न भंग, जिसमें सूर्य किरण के स्वागत में झरना फूट पड़ता है, जो जिंदगी के उल्लास और आनंद का प्रतीक है।
1: बच्चों के लिए रविंद्रनाथ की पहली कविता है बृष्टि पड़े टापुर टुपुर। इसकी धुन लोकगीत जैसी है।

0: शिशु भोलानाथ आदि काव्य संग्रहों में रविंद्रनाथ द्वारा रचित बाल कविताएं हैं। बच्चों के लिए लिखी एक कविता दोपहर बड़ी मार्मिक है। इसका अनुवाद सिने जगत के प्रसिद्ध गीतकार गुलजार ने किया। ओ मां, अब मेरी छुट्टी करो ना। सुबह से पढ़ रहा हूं मैं, तुम्हारे कमरे में जाकर मैं पढ़ना खेलूंगा। अभी दोपहर है बस, कह दिया तुमने। उन्होंने बच्चों के लिए नाटक और कथाएं भी लिखी।
1: सन 1877 के आसपास इन्होंने लघु कथा कहानी की एक नई विधा को जन्म दिया। इस समय की कहानियां गल्पगुच्छ के नाम से प्रसिद्ध थीं। उनकी पहली कहानी है भिखारिणी, जो रविंद्रनाथ ठाकुर की

साधना पत्रिका में प्रकाशित हुई। इनमें उन दिनों के अनुभवों पर आधारित कहानियां हैं, जब रविंद्रनाथ ठाकुर जमींदारी की देखभाल के लिए शजातपुर सियालदेह गांव का दौरा कर रहे थे।

0: यहीं वे नदी के किनारे नौकाओं पर रहते और लोगों की समस्याएं सुनते। इनसे मिलने के लिए किसानों, मल्लाहों, केवटों, चरवाहों, कुम्हारों, यात्रियों, गायकों, बालकों, शिक्षकों सभी का मेला लगा रहता। वे अपने स्नेहयुक्त हृदय और उदारता के कारण बाबू मोशाय बन गए और इन्हीं में रविंद्रनाथ को मिलते गए अपनी कथाओं के पात्र भी।
1: जुलाई 1905, अंग्रेजी शासन ने भाषा और संस्कृति की दृष्टि से हिंदुओं और मुस्लिमों में भेद उत्पन्न करने के लिए बंग विभाजन किया। बंगीय जनता में तिलमिलाहट पनपी। रविंद्रनाथ ठाकुर ने इस अवसर पर अपने मातृभूमि से प्रेम और सांप्रदायिक एकता बनाए रखने के लिए बंगाल के लोगों का अपने गीतों द्वारा आह्वान किया।
2: আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি, চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।

0: और फिर दिल दहलाने वाली नरसंहार की घटना घटी। अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग वाली त्रासद घटना के विरोध में उन्होंने नाइटहुड उपाधि लौटाई। इस संबंध में 30 मई 1919 को उन्होंने वाइसरॉय को पत्र लिखा।
1: अपने देश के लिए मैं इतना तो अवश्य कर सकता हूँ, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो, कि मैं अपने करोड़ों देशवासियों के विरोध को वाणी दे सकूं। समय आ गया है, अब ये उपाधियों के तमगे हमारे अपमान के संदर्भ में लज्जास्पद लगते हैं।
0: रविंद्रनाथ ने नाट्य रचना के गुण विरासत में पाए। उन्होंने अपने नाटकों में बांग्ला यात्रा के लोक तत्वों और संस्कृत नाट्य परंपरा के तत्वों का सामंजस्य किया। इससे उस समय के रंगमंच को एक नया स्वरूप मिला। नाट्य से रविंद्रनाथ ने गीति नाट्यों की ओर रुख किया। उन्होंने संगीत को काव्य और नाटक का महत्वपूर्ण साधन माना है। रविंद्रनाथ ठाकुर एक शिक्षक हैं। वे जीवन और शिक्षा में सामंजस्य स्थापित करना चाहते थे। वे शिक्षा नीति अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़े रखना चाहते थे। साहित्य, संगीत एवं अन्य कलाओं को शिक्षा में स्थान दिलाने का श्रेय रविंद्रनाथ ठाकुर को जाता है। उनका मानना था कि बच्चा अपने परिवेश और पर्यावरण से जुड़कर बेहतर सीख सकता है और समझ सकता है।
2: आमादेर शांति निकेतन, यानी हमारा शांति निकेतन।
3: আমাদের শান্তি নিকেতন, আমাদের শান্তি।
2: সন 1901 में শান্তি নিকেতন আরম্ভ।

0: जिसमें रविंद्रनाथ ने शिक्षा की औपचारिक रटंत विद्या से अलग बच्चों की सृजन शक्ति के विकास के लिए भारत की प्राचीन आश्रम व्यवस्था को अपनाया। एक कवि की पाठशाला में उन्होंने लिखा,
1: बच्चे का अवचेतन संवेदनशील होता है और पेड़ों की तरह वह अपनी खुराक वातावरण से ग्रहण करता है। उसके लिए यह नियमों, रीतियों, पाठ्य पुस्तकों और पाठों से अधिक महत्वपूर्ण है।
0: शिक्षार हेरफेर निबंध में सशक्त निबंधकार रविंद्रनाथ ने मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर दिया। सामान्य स्कूलों की तुलना उन्होंने कारखानों से की है। भारतीय औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था पर रविंद्रनाथ ने एक मार्मिक नीति कथा लिखी, तोते का प्रशिक्षण, जो पाठ्य पुस्तकों को बच्चों में जबरन ठूसने पर एक करारा व्यंग्य है। इस कहानी में तोते को ऐसी भयानक कष्टपूर्ण शिक्षा दी जाती है कि तोता मर जाता है। शांति निकेतन में बच्चों को पेड़ों के नीचे शिक्षा दी जाती थी और आज भी यही पद्धति जारी है। यहां बच्चों के बहुमुखी विकास के लिए अलग अलग प्रयोगशालाएं हैं, जहां सीखने की आजादी है। अब यह विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। रविंद्रनाथ ने कहा था,
1: विश्व से एकात्म होने का अर्थ अपनी पहचान खो देना नहीं है, बल्कि सीखने सिखाने के लिए एक सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा करना है।
2: उनका मानना था इस विश्व भारती में सभी देशों के शिक्षा संस्कृति के प्रतिनिधि शामिल हों, जिससे सारा संसार एक घोंसला बन जाए। और ऐसा हुआ भी। उनके प्रयासों से ही देश विदेश के विद्वानों को इस विश्व भारती में आमंत्रित किया जा सका।
0: वे स्त्रियों की शिक्षा के हिमायती थे। उस जमाने में भी उनकी कहानी, उपन्यासों के स्त्री पात्र, कविता लेखन और स्वतंत्र चिंतन के प्रतिरूप हैं। स्त्री शिक्षा निबंध में उन्होंने लिखा था,
1: विद्या यदि मनुष्यत्व प्राप्त करने का उपाय है और विद्या प्राप्त करना यदि मानव मात्र का जन्मजात अधिकार है, तो उसे इस अधिकार से वंचित न किया जाए। जो कुछ भी जानने लायक है वही विद्या है। पुरुष को भी जानना होगा, स्त्री को भी जानना होगा।
2: रविंद्रनाथ ठाकुर ने अनेक विधाओं में लिखा, पर स्वयं को मूलतः कवि ही माना। आमी कवि, मैं कवि हूं, उन्होंने अपने 70वें जन्मदिन पर लिखा।
1: मैंने एक तपोवन का संधान करना चाहा था, शहर के भयावह घरों में नहीं, आकाश के खुले वितान के नीचे सुबह से शाम तक मैं इन लड़के लड़कियों के खेल का साथी बनना चाहता था। यही मेरा सच्चा कार्य रहा है। मेरी जगह वही है, धरती की गोद, इन पेड़ों, इन जंगलों में, इस धूल, इस तृण दल में मैंने अपना जीवन उंडेला है। जो धरती की आत्मा के निकट हैं, जो उससे ही बने, उसी में ढले हैं, जो अपना अंतिम विराम उसी में पाएंगे, मैं उन सब का मित्र हूं, मैं कवि हूं।
0: स्पेनिश, जर्मन, अंग्रेजी और विभिन्न विदेशी भाषाओं में रविंद्रनाथ की कृतियों का अनुवाद किया गया है। उनकी कविताओं की अंग्रेजी में अनुदित कृतियां हैं, गार्डनर, फ्रूट गैदरिंग, द फ्यूजिटिव क्रेसेंट मून। न केवल भारत में अपितु जर्मनी, अमेरिका, इटली आदि अनेक देशों के पाठ्यक्रम में रविंद्र साहित्य शामिल किया गया है।

सुनकर पुकार तुम्हारी, आए नहीं कोई पास तो क्या, चल दो अकेले। जो कायर हैं छुपते हैं ओट लेकर, तुम चलो अकेले। अरे अभागे खोलो मन, तुम बोलो पगले एक अकेले। रेगिस्तानों में कोई साथ छोड़े तो भी क्या है, कांटों के पांव में चुभने से होता क्या है, रक्त सने पथ पर बढ़ लेना अकेले। तूफानी रातों में दीपक लेकर कोई खड़ा नहीं तो भी तुम चलो अकेले। तड़त ज्योति पीड़ा की बलने दो एकाकी मन में, चलते चलो अकेले, चलते चलो अकेले।

0: तो श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यही समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: श्रोताओ, अभी आप एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम सुन रहे थे उमंग। FM 102.3 MHz पर हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए श्रोताओं, सुनिए कार्यक्रम खेती किसाना सेती, लेकिन पहले सुनेंगे ये आवश्यक संदेश।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

0: को नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
2: बेटा
1: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
2: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
3: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो
1: कहाँ?
3: एडमिशन कराने। खाता हुआ एक्टिव।
1: आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: नेफ्को नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: बोल बोल के थक गया।
2: क्या हुआ?
1: नया किडबैक चाहिए।
2: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
1: करेक्ट।
2: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर।
1: चले
2: ले आ गया नया किडबैक।
3: RBI कहता है
4: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।

0: कार्यक्रम खेती किसाना शेती सुन वाले सारे बहन भाई ने संदीप भाई और
1: सावित्री बहन की राम राम। संदीप भाई आज हमारा खेती किसाना शेती में विषय रहेगा खेती से संबंधित, समन्वित खेती कम लागत ज्यादा मुनाफा।
0: तो यानी आपका कहने का मतलब यू है कि हम इस तरीके से मिश्रित खेती करा के एक साथ आप ही दो दो आमदनी ले सका।
1: बिल्कुल, दो दो ले लो, तीन तीन ले लो, कितनी ले लो, किसान बहन भाई जितनी मेहनत करेगा ना संदीप भाई उतनी खेती में और अपने साथ साथ जो सहायक व्यवसाय उनमें आमदनी ले सके है।
0: बिल्कुल, देखो खेती का काम तो अपने किसान भाई पूरे साल करते रहे हैं और साथ साथ में यदि अपनी सहायक धंधे जो आपने बताया वो भी करते रहे तो अच्छा मुनाफा जो है किसान भाई ले सके हैं।
1: खेती न केवल खेती न मानना खेती नहीं बल्कि साथ साथ अन्य व्यवसायों को जोड़कर अपनी आय को सुरक्षित करने का एक बेहतरीन जरिया किसान बहन भाई मन है। क्या है समन्वित खेती, आप इस पर बातचीत करा। जब एक किसान केवल एक फसल पर निर्भर न रह के खेती के साथ साथ दूसरे व्यवसाय करें, जिस तरह पशुपालन हो गया, मछली पालन हो गया, मधुमक्खी पालन हो गया, बागवानी होगी और इस प्रकार के जो भी व्यवसाय हैं जैसे सब्जी खेती होगी, मशरूम उत्पादन हो गया, ये साथ साथ में करें ना उन कहें समन्वित खेती। और इसमें एक व्यवसाय का कचरा और या अवशेष दूसरे व्यवसाय में संसाधन के रूप में काम आ जावे हैं।
0: बिल्कुल, देखो अभी का यदि आप ही उदाहरण ले रहे हो, जैसे कई किसान भाई क्या करने लग रहे हैं कि अपने जो फसल अवशेष हैं सावित्री बहन उनमें आग लगाने लग रहे हैं। यदि किसान भाई ने साथ में मशरूम का काम भी कराया होता तो उसका जो गेहूं के जो फसल अवशेष हैं उनका कंपोस्ट बन सका था। और यदि साथ में किसान भाई ज़्यादा तामझाम नहीं करना चाहता तो यदि किसान भाई पशुपालन नहीं करता तो पशु के लिए वो तुड़े गए रूप में भी फसल अवशेष काम आ सकें।
1: बिल्कुल सही कह रहे हो संदीप भाई। देखो किसान बहन भाई ना थोड़ी सी जागरूकता तो अपनी बनाकर रखनी पड़ेगी। कोई भी खेत में आड़ी चीज जिस तरह आपने बात कही कि फसल अवशेष गेहूं के होगे, धान के होगे, धान की पराली होगी, इनका दूसरे रूप में गत्ता फैक्ट्रियों में बेच दे तो इस प्रकार का काम किसान बहन भाई कर सको अपनी अच्छी आमदनी ले सके हैं। एक आदर्श मॉडल के लिए किसान बहन भाई अपनी जमीन पर ये संयोजन कर सकें, जैसे फसल पशुपालन खेती से चारा मिलेगा और पशुओं के गोबर से खाद मिलेगी जिससे मिट्टी की उर्वरता शक्ति बनी रहेगी, दोनों काम होगे, चारा मिलेगा पशुओं काम आओगा, पशुओं से गोबर मिलेगा वो खेत में काम आओगा, अपनी मिट्टी की उर्वरता शक्ति है जो उससे अच्छी होगी।
0: बिल्कुल, और देखो आजकल तो आप MP तक के गेहूँ खरीदने लग रहे हैं ताकि रासायनिक जो गेहूँ है जो बहुत ज़्यादा खाद डाल के न जो गेहूँ है उससे बचने के लिए देखो MP तक का जो गेहूँ है वो हरियाणा में बिकने लग रहा है।
1: कई बार तो अपन देखा भाई संदीप, नाम है कट्टे ऊपर लिखा हुआ MP, वो आसे पासे की हुआ है, थोड़ी सी उसने झार झूर की अच्छी तरह करी हुआ है, मोटे मोटे दाने उन MP के नाम पे बेचे हैं और काफी ज्यादा महंगे भाव में उन आप खरीदने लाग रहे हैं। बागवानी प्लस मधुमक्खी पालन, बागों में फूल आएंगे तो मधुमक्खियों से को पराग मिलेगा जिससे शहद भी बनेगा और फसलों में परागण क्रिया भी अपनी बढ़ेगी, पैदावार भी बढ़ेगी। जहाँ आसपास मधुमक्खी के डिब्बे रखे होने संदीप भाई ओड़ा की फसल दूसरी फसल की अपेक्षा 20-30% बढ़ोतरी में मिलेगी।
0: बिल्कुल, और जो हमने विभिन्न प्रकार के जो रासायनिक छिड़काव हैं वह भी करने की जरूरत कम पड़ेगी।
1: और बात करा मछली पालन प्लस मुर्गी पालन, मुर्गियों के अवशेष मछलियों के लिए उत्तम आहार का काम करे हैं।
0: भाई आपका कहने का मतलब यू है भाई जो मुर्गियों की बीट है जो वो बाहर बगाने की जगह है उसका

0: तालाब में प्रयोग कर सके हैं जिनसे मछलियां पल जाऊंगी।
1: और समन्वित खेती के बड़े फायदे हैं, जोखिम में भी कमी हो है। अगर मौसम की वजह से एक फसल खराब हो जाए तो दूध या शहद या मछली बेच के किसान अपनी आय बनाए रखे से।
0: यानी कहने का मतलब ये है कि साथ साथ में आप ही ने जो दूसरा रोजगार शुरू कर रखा है, देखो खुबात तो अपनी थोड़ी सी बढ़ जाओगी, लेकिन जो हर महीने की होने वाली आय है वह भी अपनी बढ़ जाओगी।
1: और लागत में भारी कमी आ जाए संदीप भाई, खेत की पराली चारे के में काम आ जाए, गोबर की खाद से यूरिया डीएपी का खर्चा अपना किसान बहन भाई का कम हो जाए है। और इसी तरह बात करा शुद्ध खान पान, किसान परिवार को घर का शुद्ध दूध फल सब्जियां और शहद प्राप्त हुआ है।
0: बिल्कुल, और इसके साथ साथ है मिट्टी का जो अपना स्वास्थ्य है, देखो यदि आपने डेयरी कर रखी है तो अपनी गोबर की खाद का जो प्रयोग है अपने खेत में आप ही कर सका, हाँ जिससे रासायनिक खादों की जो जरूरत है वह अपनी कम हो जाओगी और जो अपनी जमीन है उसकी भी उपजाऊ शक्ति जो है लंबे समय तक बनी रहोगी।
1: हम तो सारे बहन भाई यूं कहना चाहेंगे, आप जब किस पशु रख रहे हो तो गोबर की खाद हर एक आपका किल्ला में हर 3 साल बाद जरूर डालते रहे, ताकि अपनी उर्वरा शक्ति बनी रहे और अपनी पैदावार अच्छी हो। हरियाणा की अभी बात करने लग रहे हैं कि जैसे हमारा हिसार है, आसपास के क्षेत्र है, वहां पर जहाँ पे पानी की उपलब्धता पशुपालन की समृद्ध परंपरा है, और वहाँ किसान धान मछली या पशुपालन सब्जी जैसे मॉडल को अपना के अपनी सालाना आय को दोगुना कर सके हैं।
0: बिल्कुल, बातचीत सौत्री बाण भैया से जारी रखेंगे, पर पहले भैया का करावांगे मनोरंजन, तो भाई सुने ही रागनी।

मेरे दोरे काट नहीं, जो सोच समझ के बात करे वो कदे बारा बात नहीं। देखिए पीठ फेर के

रोवे से तू ये भेस कवारे ने बाबुल के घरी ये उम्र बता दी पड़ी रही सब।

एके नाला की चोट तेरे भी इतना दुख होते दू तेरा गड़ घोट ये पीठ फेर के करे ये सारे ये करे घूंघट की ओट बिन समझे बेकूफ बतावे

0: देखो संदीप भाई, बहन भाई का मनोरंजन करवा दिया और आप बातचीत करने लग रहे थे किसान बहन भाई किस तरह अपनी आमदनी दोगुनी कर सके।
1: बिल्कुल। और देखो किसान भाई यदि डेयरी कर ले होंगे तो जो अपनी फसल है उस तो सावित्री बाण देखो 3 से 4 महीना में आमदनी हो है, लेकिन दूध जो है वो अपना रोज भी कहे है। और जो 10 गाय की यदि किसान भाई मिनी डेयरी कर लें तो हर महीने 40 से 60 हज़ार रुपये आराम से कमा सकें।
0: और 5 रुपए लीटर बोनस सरकारी दूध समितियों को अगर दूध देगा तो अतिरिक्त 5 रुपए पर लीटर सरकार आपने देवेगी। 20 लीटर दूध रोज बेचो, 100 रुपए रोज का एक्स्ट्रा आप कमा सको हो।
1: बिल्कुल। और इसके साथ साथ है देखो दूध के साथ हम गायों के गोबर से भी कमाई कर सका हाँ। 10 गाय से 80 से 100 किलो तक गोबर जो है हाँ प्राप्त कर सका हाँ, जिसका प्रयोग आप जैविक खेती या बायोगैस में भी कर सका हाँ। देखो सिलेंडरों की आजकल बड़ी किल्लत आप देखने ला रहे हैं, सावित्री बन होने लग रही है। यदि हमने बायोगैस का प्लांट लगा लिया तो हमें सिलेंडर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
0: और संदीप भाई बता दें कि सरकार के द्वारा जो सब्सिडी मिलने लाग रही है उनकी बात अपा करने लाग रहे हैं अपनी पशुपालन पे। मिनी डायरी 3 से 10 पशु रखने वाले जो किसान हैं उनने 25% सब्सिडी, और देसी गाय रखे तो 50% सब्सिडी मिले है। ऐसी किसान ने 50% सब्सिडी मिले है। हाईटेक डायरी यानी 20 ज़्यादा पशु जो भाई रखे हैं ब्याज में छूट प्लस 1.60 हज़ार रुपये यानी 1,60,000 रुपये तक की बिना गारंटी लोन केसीसी के जरिए मिला है।
1: बिल्कुल। और देखो केसीसी के तहत जो है किसान भाई अपने पशुओं पर भी लोन लेकिन अपना काम ना आगे बढ़ा सके है।
0: इसका नाम है पशुपालन केसीसी, अलग से हो है जिस तरह एक से दूसरा केसीसी भी हो है,
1: जैसे
0: पशुपालन
1: अपना
0: केसीसी।
1: फसलों के ऊपर किसान भाई ने केसीसी मिला है, वैसे ही पशुपालन करके भी किसान भाई जो हैं अब अपना केसीसी कार्ड बनवा के ने रुपए ले सके हैं।
0: और सरकार ने अब तक 13,244 डेयरियां स्थापित करवाई हैं।
1: और देखो अपना जो काम है यदि हमने पशुपालन कर लिया सावित्री बाण तो दूध बेच के तो आप व्यावसायिक काम करे सका है। साथ में यदि घर का शुद्ध दूध हो तो जो अपने बच्चे हैं उन्हें भी कुपोषण से बचाव होगा, बच्चे भी तंदुरुस्त रहेंगे और घर का खान पान होगा तो बाहर के मिलावटी जो चीज़ें हैं उनसे भी हमने मुक्ति मिलेगी। और जो हमारे घर के युवा हैं उन्हें भी देखो घर के घर में रोजगार मिल जाएगा।
0: युवा नहीं मिल जाएगा, महिला ने, बुजुर्ग नहीं, यानी अगर आपके घर में डायरी है तो सब नहीं रोजगार मिल जाए है। और जोखिम कम स्थिर आए, फसल खराब हो जाए नुकसान हो जाए लेकिन दूध तो हर दिन बिकेगा। बाढ़ और जैसी आपदा से भी डायरी बची रहे। पशुधन बीमा करवाएं, जोखिम और कम कर सको आप।
1: बिल्कुल। देखो जो पशुधन बीमा अपनी हरियाणा सरकार द्वारा योजना चलाई जाने लग रही है, पशुपालक भाई केवल 100 रुपए में अपने एक पशु का बीमा करवा सके हैं।
0: और अब बात करेंगे पर्यावरण और कृषि को फायदा, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा। देसी गाय का गोबर और गोमूत्र खेती में काम आ जाए है। सरकार देसी गाय पर 50% तक सब्सिडी भी देवे है।
1: बिल्कुल। और देखो जो गेहूं और धान की जगह पर यदि जो किसान भाई हैं अपना थोड़ा सा क्षेत्र कम करके ना यदि डेयरी लगा ले होंगे तो उसमें भी जो है आप चोखा मुनाफा कमा सकें।
0: और अतिरिक्त के सरकारी सुविधा मिले भाई ने बता दिया है। मुफ्त ट्रेनिंग मिले, 5 दिन की डायरी की ट्रेनिंग मुफ्त, रहना खाना भी फ्री रहेगा इसमें। पशु मेले चरखी दादरी में 50 लाख तक के इनाम का पशु मेले लगे हैं। रोडवेज में फ्री यात्रा, अंत्योदय परिवार के सदस्यों को 1,000 किलोमीटर तक की फ्री यात्रा मिले है।
1: बिल्कुल। और यदि देखो अपन द्वारा यदि जमीन कम है भाई 2 से 5 एकड़ जमीन है तो आप ही देसी गायों से जो है अपना काम शुरू कर सके हैं। और इससे जो है सरकार भी जो है इसमें हमारी सहायता करे है। यदि हम देसी गायों का पालन करें तो 50% तक की जो सब्सिडी है और इसके साथ 30 हज़ार रुपये सालाना प्रोत्साहन जो है वो भी सरकार के द्वारा दिया जावे है। और इसके साथ 5 रुपये प्रति लीटर दूध के ऊपर यदि हम दुग्ध समितियों को अपना दूध देवें तो किसान भाइयों को जरूरत है कि समय रहते विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ उठाऊं और खेती के साथ साथ जो दूसरे सहायक काम धंधे हैं उनसे भी भरपूर मुनाफा कमाऊं।
0: बात करें इबे मुर्गी प्लस मछली पालन इंटीग्रेटेड यानी पोल्ट्री फार्म भी आप कर रहे हो और साथ में मछली पालन भी कर रहे हो तो उसके क्या फायदे होंगे। हरियाणा सरकार इसने भी प्रमोट करने लग रही, क्योंकि इसमें भी लागत कम और आमदनी डबल हो जाए है। और ये सर्कुलर फार्मिंग का बेस्ट उदाहरण है, जहां एक एक का वेस्ट दूसरे के इनपुट में काम आ जाए है, लागत में भारी बचत और इससे बड़ा फायदा हुआ है।
1: यानी कहने का मतलब यो है सावित्रीबान कि एक जगह का जो कूड़ा है वो दूसरे जगह पर आमदनी का जरिया बन जाएगा।
0: मछली का फीड 60% सस्ता, मुर्गियों के बीट सीधे तालाब में जावे हैं, ये प्लेकटन पैदा कर रहे हैं जो मछली का नेचुरल फीड हुआ है। बाजार का फीड 40 रुपए प्रति किलो आवे है और ये फ्री।
1: बिल्कुल, और देखो जो जगह है उसका भी इस्तेमाल हो जावे है। यदि हमने तालाब के साथ ही अपना पोल्ट्री फार्म बना रखा है तो जो पानी की भी जो दिक्कत है वो भी अपनी कम होगी, और जो तालाब के साथ में छाया चाहिए जो तालाब ने, वो जो छाया है वो पोल्ट्री फार्म के भवन से उसने मिल जाओगे।
0: और जगह का डबल इस्तेमाल हो जाए है, तालाब के ऊपर पोल्ट्री शेड बना दें, अलग से जमीन नहीं चाहिए, एक एकड़ में दोनों हो जाएंगे, पानी का रियूज हो जाएगा, तालाब का पानी फसल में इस्तेमाल हो जाएगा। और आमदनी के जो 300 सोर्स एक साथ उन पर बात करें, जैसे मुर्गी से अंडे, अंडे और मीट की रोज कमाई, मछली से 6 महीने में तिलापिया और रोहू कतला का हार्वेस्ट।
1: यानी कि जो 6 महीने में जो है अपना मछली जो है तैयार हो जाऊंगी।
0: खाद से बात करें, तालाब की गाद और मुर्गी की लीटर बेस्ट ऑर्गेनिक खाद बने हैं जो सब्जी और बागवानी में बेच सके हैं आप।
1: बिल्कुल, और देखो इससे जो है जो अपनी रासायनिक जो आप ही खाद ले आओ हाँ उससे अपना छुटकारा मिल जाओगा, और घर की घर में जो है बहुत बढ़िया खाद किसान भाई ने मिल जाओगी।
0: और बात करें कि हरियाणा में मिलने वाली जो सब्सिडी है मछली पालन में के तहत 40% सामान्य, 60% SC और महिला सब्सिडी, 4 लाख हेक्टेयर की यूनिट पर 2.5 लाख तक सब्सिडी मिला है।
1: और इसके साथ ही मुर्गी पालन पर भी राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत 50% तक की जो है सब्सिडी दी जावे है।
0: इंटीग्रेटेड यूनिट दोनों को अलग अलग आवेदन कर सके हैं, समय 40 दिन के अंदर सब्सिडी देने का नियम है।
1: यदि अपने सभी दस्तावेज किसान भाई समय रहते पूरे करेंगे तो 40 दिन के अंदर जो है आपको सब्सिडी के नियम के तहत अनुदान मिल जाओगा।
0: और देख संदीप भाई, इसमें एक बहुत अच्छी बात है कि समय और मेहनत दोनों की बचत होगी, एक बार सिस्टम सेट हो गया तो दोनों एक साथ मैनेज हो जाए हैं, मुर्गियों को अलग से फीडिंग और मछली को अलग से फीडिंग नहीं करनी पड़ती, परिवार के सदस्य सभी सदस्य काम अलग जे हैं, महिलाएं पुरुष हो चाहे बूढ़े बुजुर्ग हो, मुर्गी और मछली पालना अच्छी तरह संभाल सके हैं।
1: क्योंकि देखो दोनों चीजें यदि एक साथ हैं तो कोई अलग से आप इन्हें समय निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
0: और इसमें रिस्क कम, स्थिर आय हो जाए, अगर फसल खराब हो जाए तो मुर्गी मछली तो रोज ही कमाई का जरिया बनी रहेगी, बाजार में अंडे मीट मछली के दोनों ही डिमांड में हमेशा रहे हैं, तालाब पानी स्टोर करे है, सूखे में भी काम आ जाए।
1: वह देखो ज्यादा बरसात होगी सावित्री बाण, और आगे जब पानी की कमी आओगी तो आप ही जो है इस पानी का यूज भी आप ही कर सका। हाँ, जब आप ही ने अपना मछली अपनी तालाब से निकाल ली है तो उस पानी को भी आप ही खेती में यूज कर सका।
0: और पर्यावरण और मिट्टी में फायदे हुए हैं, केमिकल फीड और फर्टिलाइजर केमिकल फीड और फर्टिलाइजर कम लगता है, तालाब की गाद जैविक खाद बनावे है जिससे सब्जी फसल की पैदावार भी अपनी बढ़े है, पानी की 40-50% बचत हो जाए है।
1: क्योंकि जो बारिश का पानी है उसने भी आप ही सहज के इस तालाब में रख सका, हाँ तो पानी की भी बचत होगी। तो जो भाई मछली पालन करना चाहे हैं तो वो अपने जिला मत्स्य अधिकारी से मिल सके हैं, और मुर्गी फार्म करने के इच्छुक जो भाई हैं वो जिला पशुपालन अधिकारी से मिल के न जानकारी ले सके हैं।
0: हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में ट्रेनिंग भी ले लें भाई।

0: ट्रेनिंग क्योंकि फ्री टाइम टाइम पर दी जावे हैं। शुरुआत किस तरह करें, आधा एकड़ से शुरू कर सके हैं, 2000 मुर्गी प्लस आधा एकड़ तालाब का सेटअप लगभग 8 से 10 लाख में तैयार हो जाए है, और जिसमें 50 से 60% सब्सिडी आ जाए है।
1: बिल्कुल, और यदि किसान

0: एपिकल्चर इंटीग्रेशन का है, यानी हनी और फ्रूट का मॉडल भी इसने बोलना है। हरियाणा सरकार फसल विविधीकरण के तहत इस पर 75% तक सब्सिडी देवे है, इसमें से 1+1 यानी 11 का फायदा हो जाए।
1: बिल्कुल, देखो एक तरफ जहाँ पर आप फल बेच के ना मुनाफा कमाओगे तो दूसरी तरफ आप शहद बेच के मुनाफा कमाओगे। और इसका जो सबसे अच्छा काम है सावित्रीबाई, देखो बिना कि मैं ज़्यादा आप ही ने कोई स्प्रे करे, जो अपने फल उत्पादन है वो भी ज़्यादा हो जाए, वह यदि हम साथ में मधुमक्खी पालन भी कराएं।
2: श्रोतम भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती किसाना सेती, FM 102.3 MHz पर हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम महारे गांव, लेकिन पहले सुनेंगे ये आवश्यक संदेश।
3: पुलिस?
4: मिस सीमा
3: जी,
4: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
3: क्यों? लेकिन मैं
4: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
3: डिजिटल अरेस्ट?
4: 1 लाख दो, बच जाओगे।
3: इतने पैसे?
4: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
3: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
5: हेलो मम्मा,
6: RBI कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
2: बदलो बदलो आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: कार्यक्रम हमारे गांव में एक बार फिर बहन भैया का स्वागत कर रहा है आपकी बहन सावित्री
1: और भाई संदीप। और आज है सावित्री बहन 8 मई और आज है विश्व रेड क्रॉस और थैलेसीमिया दिवस।
0: बिल्कुल संदीप भाई, किसी न किसी दिन कोई न कोई दिन विशेष दिवस के रूप में मनाया जावे है। जिस तरह 8 मई का दिवस अपन मनाने लग रहे हैं रेड क्रॉस दिवस और विश्व थैलेसीमिया दिवस के रूप में।
1: बिल्कुल, और देखो मानव कल्याण के लिए विश्व

0: रेड क्रॉस दिवस जो है इसकी बहुत महत्व है इसका। और इतिहास की यदि बात करें तो 24 जून 1859 को ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच में इटली में सोलफिनियो की लड़ाई हुई। 40,000 से ज़्यादा सैनिक जो है इसमें या तो मारे गए या फिर घायल हो गए। इन सब को देख के ने जो स्विस व्यापारी जीन हेनरी डोनुट जो व्यापार के सिलसिले में वहाँ पर गए हुए थे, तो उन्होंने देखा कि जो घायल सैनिक हमें मैदान में तड़पण लग रहे हैं, किसी प्रकार की कोई भी चिकित्सा सहायता जो है उनको नहीं मिलने लग रही है। तो जो व्यापारी अपने ड्यूनेट थे उन्होंने वहाँ की स्थानीय महिलाओं को इकट्ठा किया और सभी भाई भाई के नारे के साथ घायल सैनिकों की मदद शुरू करी। उनको भोजन दिया, पानी दिया, उनके घाव साफ किए। तो उसी से जो है जो मानवीय सहायता की जो शुरुआत थी बड़े स्तर पर वो शुरू हुई। और
1: और इस अनुभव पर ड्यूनोट ने किताब लिखी जिसमें दो सुझाव दिए। युद्ध के समय घायलों की मदद के लिए हर देश में स्वयं सेवी राहत समिति जरूर बननी चाहिए। घायल सैनिकों को तटस्थ मानकर सुरक्षा देने वाला अंतर्राष्ट्रीय समझौता भी हो।
0: इसके बाद 1863 और 64 में 1863 में ड्यूनेट और चार अन्य लोगों ने जिनेवा में कमेटी ऑफ फाइव बनाई और यही जो बाद में है ICRC बनी। और 1864 में 12 देशों ने पहला जिनेवा समझौता साइन करा और युद्ध में घायलों को तटस्थ मान के उनकी जो सहायता का प्रावधान है वो किया।
1: दिवस की घोषणा हुई 1933 में टोक्यो में 15वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रस्ताव आया। 1948 में 8 मई को आधिकारिक रूप से मनाया शुरू करेगा 1948 में 8 मई को आधिकारिक रूप से मनाना शुरू करेगा 1984 में नाम बदल के वर्ल्ड रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट डे हुआ, क्योंकि मुस्लिम देशों में रेड क्रिसेंट इस्तेमाल हुआ है।
0: और जो इस साल की सावित्री बाण जो थीम है वो है कीपिंग ह्यूमनिटी अलाइव, यानी कि मानवता के पक्ष में खड़ा होना। और यदि हम बात करें इसकी संरचना की, तो इसकी जो संरचना है उसकी स्थापना हुई थी 1863 में 191 राष्ट्रीय सोसाइटी और 18 करोड़ स्वयं से जो है इसमें शामिल हुए। और जो इसका मुख्यालय है वो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में।
1: और भाई इसके जो मुख्य कार्यक्षेत्र हैं युद्ध पीड़ित जनेवा कन्वर्सेशन जनेवा कन्वर्सन जनेवा कन्वर्सन के तहत युद्ध बंदियों और घायलों की मदद करना, आपदा राहत, भूकंप, बाढ़ पीड़ित, चक्रवात में जो राहत सामग्री हो, अस्थाई आश्रय देवे, स्वास्थ्य संबंधी जो सेवाएं हैं वे, जैसे पहला वर्ल्ड बैंक 1937 में रेड क्रॉस ने खोला था।
0: और भारत में की बात करें तो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 में हुई थी।
1: और कोविड में 1920-22 में मास्क, सैनिटाइजर वितरण, जागरूकता भी इसके तहत ही करे गए। युवा स्वयं सेवकों को प्रथम उपचार प्रशिक्षण भी दिए जावे हैं।
0: बिल्कुल। और देखो कितनी बढ़िया बात है कि जो हमारे युवा स्वयं सेवक है ये विभिन्न प्रकार के जो प्रशिक्षण लेके इसके तहत जो आम लोगों की स्वास्थ्य में सहायता है वो कर सकते हैं। और इसका जो सबसे बढ़िया उदाहरण सावित्रीवान आप ने कोरोना काल में भी देखा कि जो सैनिटाइजर बांटने का काम है, मास्क बांटने का काम है या फिर जागरूकता का काम है, तो स्वयं सेवकों ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया और अनेक लोगों की जो है जान बचाई। और हरियाणा में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की राज्य शाखा है और लगभग सभी जिलों में इसकी शाखाएं हैं, जहां पर 8 मई को रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य जांच शिविर और प्राथमिक जो उपचार है सबसे पहले जो दिया जाना चाहिए उसकी प्रशिक्षण की कार्यशालाएं लगाई जावें।
1: देखो संदीप भाई, रेड क्रॉस का मैं हर टाइम किसी भी टाइम आप चले जाओ, आपको जो अपनी स्वास्थ्य सेवाएं हैं आपको मिलेगी, और कुछ कुछ कॉस्ट पे यानी फ्री पर जैसी कॉस्ट पर सेवाएं आपको दी जावे हैं। और बहुत सारे कार्य रेड क्रॉस द्वारा दिए करे जावे हैं किसी भी जगह पे, टाइम टू टाइम ब्लड बैंक, ब्लड क्या बोला करो उसने,
0: रक्त
1: हाँ, रक्त दान दिवस टाइम टू टाइम भी लगाए जावे हैं रेड क्रॉस के द्वारा।
0: और इसके साथ साथ जो ऐसे लोग हैं जो अपनी बीमारियों का इलाज करने में सक्षम नहीं हैं, वही आर्थिक तौर पर इतने

0: नहीं है, जिनके पास पैसे कि वो अपनी बीमारियों का इलाज कर सकें, तो उनकी सहायता भी जो है रेड क्रॉस के द्वारा करवाई जावे है।
1: और रेड क्रॉस है एक जो हमारी बहुत अच्छा काम करे है हमारे स्वास्थ्य के लिए,
0: मानवता कल्याण में जो है रेड क्रॉस की जो है बहुत ही अहम भूमिका है, और विभिन्न महामारियों में युद्ध के दौरान और विभिन्न प्रकार के जो ऐसे देश हैं जहां पर स्वास्थ्य सेवाएं नहीं हैं, वहां पर भी इनके स्वयंसेवक पहुंच के लोगों का जीवन बचाने का काम करने लग रहे हैं।
1: और बातचीत तो संदीप भाई बतलाते रहेंगे, बहन भाई का मनोरंजन करवा दें, बहन भाई सुनिया रागनी
0: ओ मेरे।

पकड़े जागा, इतना कसा पकड़ गया बस, इतना कोर पकड़े जागा। तेरी डग डग नारी हाल बुढ़ापा, वो दूना जोर पकड़े जागा। आख्या तेने कम सूझे, कमजोरी तोर पकड़े जागा। आख्या तेने कम सूझे, तू ते बैरा हो जा, दांत टूट जा, ओ बैरा हो

रई लगा के मक्खन काट के थोड़ी देर फिर आ जा से रई लगा के देखे दही बेलो के मक्खन काट के दही बेलो मक्खन काट के फिर

रसोई भोजन कौन जमावेगा। तेरी सेवा कर के मुट्ठी ही भर के सेज पे कौन सेवावेगा। तेरे हांडे चून गला डकनी में।

0: तो सावित्रीबान, आज विश्व थैलेसीमिया दिवस भी है और इसकी शुरुआत जो है थैलेसीमिया इंटरनेशनल फेडरेशन TIF ने शुरू की थी और इसके संस्थापक जो हैं पेनोस एग्लेजोस ने अपने बेटे जॉर्ज की याद में शुरू की थी, जो थैलेसीमिया से जिनकी मौत हो गई थी।
1: उद्देश्य है मरे हुए मरीजों को श्रद्धांजलि और जीवित मरीजों की जीवन गुणवत्ता में सुधार करना। 2026 की थीम का गहरा अर्थ है अब छिपे नहीं बिना, निदान वालों को ढूंढना, अनदेखे लोगों का सहारा बनना। 3 लेयर में इसका संदेश है।
0: सबसे पहले तो इसका जो संदेश है छिपे हुए, भाई कई लोग जो हैं प्रेगनेंसी में या बचपन में ही थैलेसीमिया के बारे में कुछ अन जानकारी है और जो पहली स्क्रीनिंग है तो उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ जाए उनके स्वास्थ्य पर। भाई उन्हें पता है कि उनके क्या बीमारी है और किस प्रकार से जो है उनका इलाज हो सके है। और भारत की यदि हम बात करें तो भारत में जो दूसरी स्टेज है इसमें जो लाखों थैलेसीमिया के माइनर हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि वो भी इस बीमारी के जो हैं आगे पहुंचाने वाले हैं, इस कैरियर हैं इसके।
1: पहले से डायग्नोज मरीजों को भी समाज में पहचान और सपोर्ट नहीं मिलता थैलेसीमिया के मरीजों को,
0: और इसका कारण देखो जो ये बीमारी है वो बढ़ने लग रही है क्योंकि इन

0: मरीजों को यदि समाज में पहचान नहीं मिलेगी और लोगों से जो है सहायता नहीं मिलेगी तो वो जो है लंबा जीवन नहीं जी पाऊंगे।
1: थैलेसीमिया की ये जो वैज्ञानिक जानकारी है वह इस प्रकार है कि वह थैलेसीमिया होमोग्लोबिन बनाने वाले जीन में दोष आरबीसी
0: यानी
1: जल्दी
0: रेड
1: टूटने
0: ब्लड
1: एनीमिया
0: सेल
1: होना।
0: जो हैं वह जल्दी टूट जावे हैं और इससे जो है सावित्रीवान एनीमिया यानी खून की जो कमी है वह हो जावे।
1: प्रकार और गंभीरता। प्रकार जीन दोष लक्षण इलाज माइनर ट्रीटमेंट। एक सामान्य हल्की एनीमिया कोई जरूरत नहीं होती। इंटरमीडिएट दो जीन आंशिक मैदे एनीमिया कभी कभी रक्त का चढ़ना। मेजर दो जीन पूरा जन्म 6 से 12 महीने में गंभीर एनीमिया हर साल 15 से 20 दिन रक्त आयरन चिलेशन या बीएमटी।
0: यानी कि इसके इस प्रकार के लक्षण हैं भाई थकान होगी कमजोरी है जो आराम करने से भी ठीक नहीं होती त्वचा जो है पीली पड़ जाओगी पीलिया हो जाओगा बार बार जो संक्रमण के चपेट में रोगी आ जाओगा। जो बच्चे हैं उनकी वृद्धि जो है देरी से होगी और सांस फूलना छाती में दर्द रहना ये जो है इसके गंभीर लक्षण हैं।
1: भारत और हरियाणा की वह स्थिति आंकड़े बताएं कि भारत में दुनिया के थैलेसीमिया के मरीजों का 25% है। हर साल 10,000 से 15,000 बच्चे थैलेसीमिया मेजर के साथ पैदा हुए हैं। 4 करोड़ से ज़्यादा थैलेसीमिया माइनर कैरियर हैं। भारत को थैलेसीमिया कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाने लग रहे हैं।
0: और बिल्कुल और हरियाणा में यदि आप ये बात करें तो रोहतक पीजीआई में और पीजीआई चंडीगढ़ में थैलेसीमिया के डे केयर सेंटर बना रखे हैं और इसके साथ साथ जो सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पर भी मुफ्त रक्त और जो इसकी दवाएं हैं वे सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जावे हैं।
1: TBSY योजना 17 अस्पतालों में CSR फंड से BMT की सुविधा दी गई है। निदान रोकथाम और इलाज का पूरा चक्कर। CBC टेस्ट MY MCV MCH कम आए तो संदेह।
0: और इसके साथ HbA2 HbF बढ़ा हुआ हो तो इसकी पुष्टि जो है मरीज में हो जावे है।
1: जेनेटिक टेस्ट
0: म्यूटेशन
1: म्यूटेशन
0: से जो है सावित्रीबाण इससे भी जेनेटिक टेस्ट से हम पता लगा सके हैं कि व्यक्ति थैलेसीमिया पीड़ित है या नहीं है।
1: उसकी रोकथाम के लिए क्या क्या जरूरी है भाई। शादी से पहले स्क्रीन दोनों पार्टनर का HbA2 टेस्ट जरूर करवा लें। अगर दोनों माइनर हो तो बच्चे को मेजर होने का 25% खतरा रहेगा।
0: यानी कि माँ बाप में यदि थोड़े थोड़े लक्षण हैं तो बच्चे में इस बीमारी के अधिक होने के लक्षण भाई 25% तक हो जाएं।
1: प्रसव पूर्व में इसका निदान कराया जा सके। 10 से 12 हफ्ते में CVS या एमिनियो सेट्रेसिस की जांच करवा लें।
0: और जो हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम है NHM है NPPCH के तहत मुफ्त जांच और परामर्श जो है मरीज ने दिया जावे है।
1: और देखो बातचीत इस पे बतलाते रहवांगा। मनोरंजन भी जरूरी है।
0: तो भाई सुने ये रागनी

0: अरे ठोक कमती, अरे ठोक कमती, वो इधर जो छूछक का ध्यान से
1: ओ ध्यान कोना, अरांजे तेरा मेरा एक खाना से।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महारे गांव FM 102.3 MHz पर। हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए श्रोताओं, सुनिए पंजाबी गीत। कार्यक्रम का आगाज इस गीत के साथ।

0: तेरी मोहब्बत का सहारा बड़ा ही खूबसूरत है, बस ये इनायत मेहरबान मुझ पर हमेशा रखना। जी हाँ दोस्तों, हमारी नज़र इनायत हमेशा आप पर होती है और आपकी नज़र इनायत मोहब्बत हमेशा आकाशवाणी हिसार पर रहनी चाहिए। ऐसी उम्मीद हम आपसे हमेशा करेंगे और करते रहेंगे। दोस्तों, आप पंजाबी गीत सुन रहे हैं FM 102.3 MHz पर आकाशवाणी के हिसार केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आपकी नज़र हम करेंगे, इससे पहले एक छोटा सा अंतराल हम लेंगे। कहीं जाइएगा नहीं, हम लौट कर बहुत जल्द आपके पास फिर से आते हैं।
1: बदलो बदलो, आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

दोस्तों, मोहब्बत की मीठी मीठी दास्तां हमारे एहसासों को सुकून पहुंचाती है जब आप हमें चाहते हैं और कार्यक्रम को बड़ी शिद्दत के साथ सुनते हैं। फिलहाल आप पंजाबी गीत सुन रहे हैं FM 102.3 MHz पर अपनी दोस्त क्षमा के साथ। दोस्तों, कार्यक्रम का अगला नजराना हम आपकी पेशगी में पेश करेंगे, लेकिन पहले एक फिर से छोटा सा ब्रेक हम लेंगे।

0: खार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
2: दोस्तों, कार्यक्रम पंजाबी गीत में हम आपका पुनः स्वागत करते हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला नजराना।

मेरे एहसासों की खामोशियों में तू एक मोहब्बत की दास्तां बन जाता है। मेरे एहसासों की खामोशियों में तू एक मोहब्बत की दास्तां बन जाता है। बस यही तो मेरे और तेरे इश्क के रूह के एहसासों की कहानी है।

दिल की रूहानियत में बस तेरे ही ख्वाब बसते हैं। जब भी तमन्नाओं में रंग भरने की बात आती है तो बस ख्याल भर में तेरा है ख्याल भर जाता है।

90. FM 102.3 MHz पर हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए दोस्तों, पेश है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज की हमारी फिल्म है आए दिन बहार के। आइए सुनते हैं इस फिल्म से ये बहुत ही चुलबुला सा खूबसूरत नगमा।

तुम मुझे अलविदा कह गए थे फिर से हमरा बनकर आने के लिए। हम तो आज भी जवां दिल है मोहब्बत की दास्तां में, न जाने इंतजार कितना और लंबा है तेरे मेरे दरमियां होने का।

मेरे दिल की रह गुजर से तुम गुजर रहे थे मोहब्बत एहसास बनकर, और हम इंतजारे गुरूर में डूबे थे इस कदर इन अल्फाजों में कलमबद्ध होकर कि काश किसी दीवाने को हमसे भी मोहब्बत हो जाए।

0: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: श्रोताओं आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से आज की हमारी फिल्म है आए दिन बाहर के आइए सुनते हैं इस फिल्म का और इस कार्यक्रम का ये आखिरी नगमा

तेरे मेरे करीब आने का इंतजार बहुत लंबा हुआ, अब तो दिन भी बहार के हैं। आओ हम तुम टूट कर मोहब्बत कर लें एक बार फिर।

दोस्तों, इन बहारों के दिन को फिर से लौटाने के लिए आपकी दोस्त क्षमा फिर आएगी आपके लिए कार्यक्रम लेकर। इस कार्यक्रम से अब हम इजाजत चाहेंगे और आपसे ये कहेंगे कि रात 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी कार्यक्रम संदेश आपके गीत हमारे में। तो अब इस कार्यक्रम से अपनी दोस्त क्षमा को इजाजत दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज की हमारी फिल्म थी आए दिन बहार के। श्रोताओं, एफ एम 102.3

इन मेगाहर्ट्ज पर हम आपकी सेवा में आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही लम्हों बाद हम आपको आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र लिए चलेंगे समाचार संध्या के लिए। समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, आईयूएमएल, वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी लाने पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को चुना गया और श्री अधिकारी को निर्विरोध विधायक दल का नेता चुना गया।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
1: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद है। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
0: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्शों पर राज्य का विकास करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: संकेत मिल गया था कि भवानीपुर में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव में शिकस्त देने वाले शुभेंदु अधिकारी बंगाल की अगले मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे बड़े उम्मीदवार है। आखिरकार वही आजकल सच साबित हुए। परिषदीय दल के नेता चुने जाने के बाद शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ लेकर लोक भवन गए। उनके साथ दिलीप घोष, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सहित दल के कई केंद्रीय और राज्य नेता मौजूद थे। वहां राज्यपाल आरएन रवि के पास शुभेंदु ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। सांविधानिक परंपरा के पालन करते हुए बहुमत का दावा पेश किया गया और इसके साथ ही कल ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए राज्यपाल को औपचारिक निमंत्रण भी दिया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच दिन रात एक करके वहां तैयारी के काम चल रहा है। आकाशवाणी के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।
0: तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, आईयूएमएल, वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिल गया है। वे कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 51 वर्षीय जोसेफ विजय ने आज तीसरी बार राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर से भेंट कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। एक रिपोर्ट।
3: दो दिनों तक चली बैठकों के बाद तमिल वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, विदुथलाई चिरुथिगल काची, वीसीके और आईयूएमएल से समर्थन पत्र प्राप्त हो गए हैं। पार्टी ने सरकार बनाने

0: करने के लिए आवश्यक 118 विधायकों का समर्थन हासिल कर लिया है, जिसे उसे स्पष्ट बहुमत मिल गया है। अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय अब राज्य के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उनका शपथ ग्रहण समारोह जल्द ही चेन्नई में आयोजित होने की संभावना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में निर्णय राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकीय रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध कराया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: है स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के 5 बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया। पीठ ने कहा कि मादक पदार्थों के खतरे से निपटने के लिए केंद्र सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक हो गया है। मुख्य न्यायाधीश ने राज्य और केंद्र की एजेंसियों से मादक पदार्थों के खतरे को जड़ से खत्म करने को कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालयों का गठन 1 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए शीर्ष न्यायालय ने निर्देश दिया कि कोई अन्य मामले विशेष न्यायालय को नहीं सौंपे जाएंगे और सुनवाई प्रतिदिन के आधार पर की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का सशक्तिकरण और सुरक्षा केवल सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज, पर्यावरण और नागरिकों की सुरक्षा से भी जुड़ी है। नई दिल्ली में तिरंगा पर्वतीय बचाव दल के 10 वर्ष होने पर एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने दल के कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया।
2: तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के लोग वो हैं जिनकी उपस्थिति हमारी सेनाओं को संबल प्रदान करती है। आपने सैनिकों के मनोबल को बढ़ाया है। आपने हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले समुदायों को यह एहसास कराया है कि वे अकेले नहीं हैं। TMR जैसे संस्थानों का कार्य केवल रेस्क्यू तक सीमित नहीं है। आप इनडायरेक्टली बॉर्डर स्टेबिलिटी, कम्युनिटी कॉन्फिडेंस और नेशनल रेजिलियंस को भी मजबूत कर रहे हैं।
1: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल परीक्षण किया है। यह अत्याधुनिक कम लागत वाली प्रणालियों का उपयोग करने वाला पहला ग्लाइड हथियार है। एक रिपोर्ट।
3: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित DRDO की रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि को भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भूमि संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आधुनिकीकरण के प्रयासों से भूमि संबंधी सेवाओं को पारदर्शी, कुशल और परेशानी मुक्त बनाया जाएगा। इससे नागरिक

0: नागरिकों और राजस्व अधिकारियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने बताया है कि पिछले वर्ष अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे की अंतिम जांच रिपोर्ट एक महीने में जारी होने की संभावना है। गुजरात में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से जांच कर रहा है।
1: एक साल पूरा होने वाला है और वो इन्वेस्टिगेशन अभी बहुत ही सक्षम से चालू है। जब भी ये इन्वेस्टिगेशन होता है और खास करके इंटरनेशनल वाला फ्लाइट है, इसको कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। जो रिपोर्ट आता है इट विल बी अप फॉर स्क्रूटनी, कोई भी देश कर सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन देश का कर सकता है। तो हमें बहुत ही सीरियसनेस के साथ, फेयरनेस के साथ, ट्रांसपेरेंट नेचर के साथ हमें इन्वेस्टिगेशन करना है।
0: सरकार ने कहा है कि देशभर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें।
2: पिछले दो दिन में भी तो हमने लगभग 97 लाख घरों को एलपीजी सिलेंडर पहुंचाए और इसके अगेंस्ट जो बुकिंग थी लगभग 87,66,000 थी। जो हमारी कमर्शियल सप्लाई है अभी भी वो 70% पर है, लेकिन पिछले दो दिन में 15,400 टन से अधिक कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है। पिछले दो दिन में 1,11,000 से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और ट्रिनिदाद टोबैगो के संबंध इतिहास, मानवीय संपर्क और साझा आकांक्षाओं का अनूठा संगम है। ट्रिनिदाद टोबैगो के अखबार में एक लेख में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और पिछले 5 वर्षों में यह लगभग दोगुना होकर अब $35 करोड़ तक पहुंच गया है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को आयोजित इस पर्व में शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
3: वर्षा इस आयोजन के प्रमुख आकर्षण रहेंगे। आध्यात्मिक अनुष्ठानों के पश्चात प्रधानमंत्री प्रभास पाटन के सद्भावना मैदान में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बार बार हुए विनाशकारी हमलों के बावजूद सोमनाथ मंदिर आज भी स्वाभिमान और साहस के प्रतीक के रूप में अडिग खड़ा है। गौरतलब है कि 75 वर्ष पहले 11 मई को ही भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने इस पुनर्निर्मित मंदिर का उद्घाटन किया था। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: गृहमंत्री अमित शाह रविवार को बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता नई दिल्ली में करेंगे। बैठक में बाढ़ के पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ आपदाओं, विशेष रूप से बाढ़ और लू के चुनौतियों से निपटने की तैयारियों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। आयोग की अध्यक्ष विजय राहटकार ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। इनमें दुष्कर्म, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अन्य गंभीर अपराधों के मामले में दोषी व्यक्तियों के लिए पैरोल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की जाएगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
4: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में 1% से अधिक की तेजी देखी गई। सेंसेक्स 77,328 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 24,176 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 24 पैसे कमजोर होकर 94 रुपए और 48 पैसे के स्तर पर बंद हुआ।
0: चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में रिकर्व तीरंदाज सिमरनजीत कौर और कंपाउंड तीरंदाज साहिल जाधव व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। सिमरन ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की फोंग यू जू को और साहिल ने शूट ऑफ में ऑस्ट्रिया के निको विनर को हराया। भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है।

उधर दिल्ली में आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 18 ओवर में 5 विकेट पर 126 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, वीसीके, आईयूएमएल और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

निर्देशक समय लक्ष्मीपांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत, आवाज़ें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, फिल्म का नाम आया सावन झूम के।

बहारों के सपने। आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। मजरू सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत की धुन बनाई है राहुल देव बर्मन ने।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन की रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देख लो ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ब्लॉकबस्टर फिल्म मेकर की, जिसने साल 1973 से साल 1989 के बीच अमिताभ बच्चन के साथ एक के बाद एक कई सुपरहिट फिल्में बनाई और सिनेमा के इतिहास पर अपना नाम सुनहरे अक्षरों से लिखवा लिया।

0: धन्यवाद।
1: आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम बातें करेंगे जाने माने फिल्मकार प्रकाश मेहरा की। प्रकाश मेहरा का जन्म 13 जुलाई 1939 को बिजनौर में हुआ था और उनकी परवरिश दिल्ली के चांदनी चौक के इलाके में हुई। एक सामान्य परिदृश्य में पले बढ़े प्रकाश मेहरा ने आम आदमी की जिंदगी को बहुत करीब से देखा, उसके दुख दर्द, उसके जीवन की कमियों को और उसके जीवन में हो रही नाइंसाफियों को अपने जहन के भीतर जज्ब किया। तब उन्हें पता नहीं था कि वो आगे चलकर बन जाएंगे फिल्मकार और उनका नायक एक आम आदमी होगा जो बड़े बड़े कारनामे करेगा। सन 1950, प्रकाश मेहरा मुंबई आए नौकरी की तलाश में और किसी तरह से जिंदगी उन्हें फिल्मों की दुनिया में ले गई। वो बन गए प्रोडक्शन मैनेजर। बरस दर बरस प्रकाश मेहरा जिम्मेदारी भरा ये काम करते रहे और उसके बाद उन्होंने एक लकीर पार की। सन 1968, प्रकाश मेहरा के निर्देशन में पहली फिल्म आई हसीना मान जाएगी।
2: मैं

हसीना मान जाएगी शशि कपूर की एक बेहतरीन फिल्म में शुमार हुई। ये फिल्म बेहद कामयाब थी। प्रकाश मेहरा की इस फिल्म के जरिए धाक जम गई। हसीना मान जाएगी बनाने के बाद प्रकाश मेहरा ने कुछ और फिल्में बनाई और इन फिल्मों के जरिए जैसे वो अपने मुहावरे को तलाश कर रहे थे, जैसे फिल्म संसार कदम दर कदम एक लेजेंड फिल्म मेकर तैयार कर रहा था। सन 1971 संजय खान और फिरोज खान को साथ में लेकर उन्होंने बनाई फिल्म

प्रकाश मेहरा अपनी फिल्मों की कहानी पर बड़ा जोर देते थे और कोई अच्छी कहानी उनका मन मोह लेती थी। ऐसी ही एक अच्छी कहानी थी एक पुलिस वाले की कहानी, और प्रकाश मेहरा इस कहानी को लेकर अलग अलग नायकों के पास जाते रहे। ये नायक इस कहानी को ठुकराते रहे, लेकिन प्रकाश मेहरा का विश्वास कम नहीं हुआ। इस कहानी को एक तरफ रखा और सन 1972 में वो लेकर आए समाधि।

0: इसी साल उनकी फिल्म आई आन बान। आखिरकार एक के बाद एक कई फ्लॉप फिल्म देने वाले एक बेहद लंबे कद के दुबले पतले अभिनेता अमिताभ बच्चन को लेकर उन्होंने अपनी उस महत्वाकांक्षी फिल्म पर काम शुरू किया। सन 1973 20 मई का दिन फिल्म जंजीर रिलीज हुई और इस फिल्म ने अमिताभ बच्चन को बना दिया एंग्री यंग मैन। दरअसल एंग्री यंग मैन ये जो जुमला है ये नाटककार जॉन ऑसबोर्न के प्ले लुक बैक इन एंगर से लिया गया है। इसी नाम की एक फिल्म बनी है। प्रकाश मेहरा ने अमिताभ बच्चन को फिल्म जंजीर के जरिए एंग्री यंग मैन बना दिया।
1: यही है वो इलाका जहां लोग तुम्हें जानते हैं शेर खान। अब न तो वर्दी है न कुर्सी और ना ही मैं ड्यूटी पर हूँ। इलाका तुम्हारा है और मैं अकेला हूँ।
2: मतलब कब बात बोलूं साहब।

0: आज इतने बरस बाद भी फिल्म जंजीर एक कल्ट फिल्म मानी जाती है, एक कालजयी फिल्म जिसने एक बेमिसाल निर्देशक और एक जबरदस्त हीरो हिंदी फिल्म सिनेमा को दिया। फिल्म जंजीर के बाद प्रकाश मेहरा ने अगले 15 वर्षों में अमिताभ बच्चन के साथ 7 फिल्में और बनाई। आइए एक के बाद एक इन फिल्मों से होकर गुजरें। सन 1976, खून पसीना।
1: अरे खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो यारो हम भूखे ही

0: लो कसम इससे हाथ न लगाएंगे,
1: हाथ न लगाएंगे, हाथ न लगाएंगे।
0: खून पसीने की तो मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो यारो हम भूखे ही सो जाएंगे।
2: इसी साल आई अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना की अभिनय वाली बेमिसाल फिल्म हीरा।

0: 1981 प्रकाश मेहरा के करियर का एक बेमिसाल साल रहा। इस साल वो लेकर आए मुकद्दर का सिकंदर। एक बार फिर अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना एक साथ।
1: सिकंदर का मैं आऊं विशाल जी, शुरू कीजिए।
2: मंगलम भगवान
1: अपने जिगर का टुकड़ा तुम्हें सुन रहा हूँ।
2: वस्त्र कंधे पर रख
1: सिकंदर, क्या मत की कुछ बंद हो गया, जरा सी झड़प हो गई,
3: नहीं बताती दिलावर मुझे उठा कर ले गया था, सिकंदर मुझे बचा कर यहाँ ले आया, अगर सिकंदर नहीं होता तो मैं ये दुनिया में नहीं।
1: बस बस करो मेम साहब।
4: मेम साहब
1: क्या काम ना है तेरी मेम साहब, जिससे तू
4: नहीं
3: हमेशा मुझे तो सिकंदर सारी जिंदगी मेम साहब को कहता
1: है।
3: सिकंदर आज मुझे कह लेने दो, आज मुझे कह लेने दो विशाल, सारी जिंदगी सिकंदर मुझसे दिल दिल में प्यार करता रहा और मैंने इसे सिवाय नफरत का कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया।
1: सिकंदर ये तो क्या किया क्या?
0: इसी साल आई फिल्म लावारिस।
3: तुम?
5: हाँ मैं। तुमने मुझे लावारिस कहा, जानती हो लावारिस क्या होता है?
6: मेम साहब लावारिस गंदी नाली का वो कीड़ा होता है जो न जीता है न मरता है, अपना पाप समझकर लोग जिसे फुटपाथ पर फेंक जाते हैं मरने के लिए, मौत भी कम वक्त उसे पूरा नहीं खाती, अधमरा छोड़ जाती तुम्हारे जैसे इंसानों के नोचने के लिए। इस दुनिया में कौन कैसा क्यों है ये जाने बगैर कभी किसी पे छींटे मत कसना, और गुनाह के पीछे गुनाहगार कौन है ये कोई नहीं जानता।
0: प्रकाश मेहरा की फिल्में एक के बाद एक बॉक्स ऑफिस पर कमाई के नए रिकॉर्ड बना रही थी। अमिताभ बच्चन का सितारा लगातार जगमगा रहा था। जाने माने फिल्मकार मनमोहन देसाई ने प्रकाश मेहरा के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा कि शायद ही ऐसा कोई भारतीय होगा जिसने प्रकाश मेहरा की फिल्में नहीं देखी हों, एक ऐसा फिल्मकार जिसने ब्लॉकबस्टर टर्म को जन्म दिया, एक ऐसा फिल्मकार जिसने हिंदी सिनेमा में मसालेदार सिनेमा का नया व्याकरण गढ़ा और सारे देश को अपने तिलस्म की गिरफ्त में ले लिया। सन 1982 में आई नमक हलाल। सन 1984 अमिताभ बच्चन और प्रकाश मेहरा के जादुई साथ की फिल्म शराबी। कहते हैं कि जब सूरज बहुत तेज चमके उसके बाद शाम नजदीक होती है, एक के बाद एक कमाल की फिल्में देने के बाद जैसे वक्त करवट ले रहा था। सन 1989 प्रकाश मेहरा और अमिताभ बच्चन के साथ वाली एक बड़ी फिल्म आई जादूगर। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म चारों खाने चित हो गई, ऐसा लगा जैसे एक बेमिसाल फिल्मकार का जादू टूट गया, एक वक्त था जो पीछे छूट गया, एक चमक थी जो मध्यम पड़ गई, एक कहानी थी जो खत्म होने लगी। अमिताभ बच्चन के अलावा प्रकाश मेहरा ने दूसरे कलाकारों के साथ भी काम किया है। सन 1974 में प्रकाश मेहरा के निर्देशन वाली फिल्म आई थी हाथ की सफाई।
7: वादा

सन 1991 में अनिल कपूर को लेकर प्रकाश मेहरा ने बनाई जिंदगी एक जुआ। सन 1996 में जाने माने अभिनेता राजकुमार के बेटे पुरु राजकुमार को फिल्मों में उतारने के लिए उन्होंने निर्देशित की बाल ब्रह्मचारी। ये प्रकाश मेहरा के निर्देशन वाली

आखिरी फिल्म थी। इसके बाद प्रकाश मेहरा ने किसी फिल्म का निर्देशन नहीं किया। सन 1993 में आई फिल्म दलाल के निर्माता प्रकाश मेहरा ही थे। इस फिल्म के निर्देशक थे पार्थो घोष। प्रकाश मेहरा ने एक जमाने में अमिताभ बच्चन से ये वादा किया था कि जिस दिन वो हिट फिल्म नहीं बना पाएंगे उस दिन अमिताभ बच्चन के साथ काम करना बंद कर देंगे। सन 1989 के बाद प्रकाश मेहरा ने अमिताभ बच्चन के साथ कोई फिल्म नहीं की। प्रकाश मेहरा, मनमोहन देसाई और अमिताभ बच्चन, इन लोगों ने मिलकर हिंदी सिनेमा का एक नया इतिहास गढ़ा है, ब्लॉकबस्टर फिल्मों का इतिहास। वो समय जरूर बीत गया लेकिन मसालेदार फिल्मों का दौर नहीं बीता। अमिताभ बच्चन और प्रकाश मेहरा को चाहने वाले आज भी बड़े चाव से देखते हैं 70 और 80 के दशक की वो बेमिसाल फिल्में।

17 मई 2009 प्रकाश मेहरा ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया। पीछे रह गईं उनकी बनाई बेमिसाल फिल्में, वो कहानियां जिन्होंने हमें हंसाया और रुलाया, वो कहानियां जिन्होंने हमारा दिल जीता, वो फिल्में जिनके दृश्यों को देखकर हमने तालियां बजाई, वो फिल्में जिनके दृश्यों को देखकर हमने निर्देशक की वाह वाह की। आज प्रकाश मेहरा नहीं है, लेकिन उनका सिनेमा है, और उस सिनेमा का कमाल है, किसी लेखक ने कहीं लिखा, फॉर्मूला खत्म नहीं होता। प्रकाश मेहरा की फिल्मों का फॉर्मूला आज दूसरे निर्देशकों की फिल्मों में जिंदा है। फॉर्मूला कभी खत्म नहीं होता। फॉर्मूला फिल्मों में प्रकाश मेहरा हमेशा जिंदा रहेंगे।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था हिंदी सिनेमा के बेमिसाल निर्देशक प्रकाश मेहरा पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान। संपादन आकांक्षा सिंह। प्रस्तुति रमेश गोखले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कहने के, खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई के साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार, खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के सदाबहार सुरीले कार्यक्रम FM 102.3 MHz पर। हम आपकी सेवा में आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, लीजिए पेश खिदमत है व्हाट्सएप पर आधारित कार्यक्रम संदेश आपके गीत हमारे।

हर लम्हे की दीवानगी आकाशवाणी हिसार, हर पल का सुकून आकाशवाणी हिसार, हर बेकरारी का करार आकाशवाणी हिसार, और हर फरमाइश का इंद्रधनुष आकाशवाणी हिसार। आपकी नजरें नायत करा है कार्यक्रम संदेश आपके, गीत हमारे।

तुम्हारे एहसासों की बारिश रिमझिम रिमझिम बहारों के मानिंद मुझको हर लम्हा भिगो जाती है। क्या करूं मैं, तुम्हारी याद बहुत आती है। हर लम्हा तो हम मिल पाते नहीं, जो भी लम्हा मिलता है उसको जी भर कर जी लेती हूं।

जी हाँ दोस्तों, ये वो लम्हे हैं जो हम आपके साथ जी भर कर जी लेते हैं और इन लम्हों में एहसास सुकून पाते हैं। सुकून भरे एहसास सुकून के साथ आवाज की दुनिया की दोस्त क्षमा आपके साथ कार्यक्रम संदेश आपके गीत हमारे लेकर हमारे सभी चाहने वालों को मोहब्बत से भरा नमस्कार।

दोस्तों, आप बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं इस कार्यक्रम का, और इसके लिए हमें बहुत सारे व्हाट्सएप मिल चुके हैं और मिल रहे हैं। आपका इंतज़ार हम और लंबा नहीं करेंगे और कार्यक्रम का आगाज़ करेंगे आपके इन संदेशों के साथ। ये कार्यक्रम में पहला संदेश हम शामिल कर रहे हैं। ये हमें भेजा है मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट ज़िला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर। ये अगला संदेश हमें मिला है संदीप मक्कर, ज्योति मक्कर, मन्नत मक्कर और भारत मक्कर, कमल साहनी, इन्होंने हमें लिखा है, ये व्हाट्सएप भेजा है जालंधर से। बीड शहर महाराष्ट्र से हमें ये व्हाट्सएप मिला है नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री महित्रे, अंजलि करवा, बाबा साहब करवा और धनंजय और पीबी कुलथे का। ये व्हाट्सएप हमें भेजा है मंसूरी रेडियो लिसनर क्लब मुंगीसापुर से, हमें ये व्हाट्सएप मिला है मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शबिस्ता मोहम्मद नसीम, पलक लूबना और यश मंसूरी। नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से हमें ये मैसेज मिला है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही, मेराज जहां। रिंडी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। वंडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। सादुल शहर जिला श्रीगंगानगर से हमारे ये नियमित श्रोता हैं, राजस्थान से राम कुमार रेवाड और चंद्रकला रेवाड। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से हमें व्हाट्सएप भेजा है महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेश पुरी, ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी। पांडरकवाड़ा जिला यवतमाल महाराष्ट्र से हमें ये व्हाट्सएप भेजा है अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, अनुश्री और धनश्री बुरांडे। भोपालगढ़ राजस्थान से हमें ये मैसेज मिला है धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार का। आइए दोस्तों, सुनते हैं कार्यक्रम का पहला नगमा फिल्म बाजीगर से।

मेरी बेख्याली को तू ख्याल दे रहा है, ना होकर भी पास मेरे पास होने का एहसास दे रहा है। जो अब तक था खाले दिल मेरा, उसे रंगों की बरसात दे रहा है। सोने भर का ख्याल भी मुझसे दूरियां बना रहा है, क्योंकि तू तो मुझे रातों को जागने की सौगात दे रहा है।

वाकई दोस्तों, आप बाजीगर हैं और जादूगर भी हैं। आपने हमारा दिल चुरा लिया है और हमने आपके एहसासों को अपने पास बुला लिया है। दोस्तों, जब एहसास से एहसास मिलते हैं तो मोहब्बत हो जाती है। जब मोहब्बत हो जाती है तो एक दूजे का संग बहुत अच्छा लगता है। जब एक दूजे का संग बहुत अच्छा लगता है तो याद हमेशा उसी की आती है। अब यादों में वही हमारे होता है जिसको हम बेहद चाहते हैं। अब देखिए ना दोस्तों, आप हमें चाहते हैं, आकाशवाणी हिसार को चाहते हैं, तो आपकी यादों में हम हमेशा बसे रहना चाहते हैं और बसे रहेंगे, ऐसी उम्मीद हम करते हैं आपसे। और ऐसे में दिल दीवाना हो जाता है और कहीं खो जाता है, लेकिन दोस्तों हम कहीं खोएंगे नहीं, क्योंकि हमें तो आपके लिए प्रोग्राम पेश करना है। तो आइए इसी बात पर सुनते हैं कार्यक्रम का अगला नगमा। ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से हमें ये व्हाट्सएप भेजा है बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, यश प्रियान, शिवम प्रहलाद और राजेंद्र वर्मा। गांव फ्रांसी हिसार से हमें ये व्हाट्सएप भेजा है राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी ने। हांडीखेला जिला सिरसा से हमें ये संदेश मिला है राधेश्याम शर्मा, इंद्र शर्मा और सार्थक शर्मा का। गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से हमें ये व्हाट्सएप मिला है आफताब अंसारी, रियाज मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लूबना अंसारी और आलिया अंसारी। मलोट से हमें ये व्हाट्सएप भेजा है मंडी हरजी राम मलोट से, ये व्हाट्सएप हमें मिला है नथुराम शर्मा, ललित शर्मा, इंदिरा शर्मा, सुरेश शर्मा। जिला नांदेड़ येताला महाराष्ट्र से शंकर लाल जायसवाल, गणेश लाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल और कुमारी दुर्गेश्वरी जायसवाल। करणवीर हाउस भुजो केचिया भटिंडा पंजाब से परेम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दीपेंद्र वरिंद्र, कुलदीप सीमू एकम, दमन और अभिजोत। ये मारहरा दरवाजा एटा से हमें व्हाट्सएप भेजा है नबी हसन अब्बासी, नवेद हसन, सुहेल हसन, शहनाज, अनम, अशफ और रसीद वारसी। बोहड़ा गाछी पश्चिम बंगाल से हमें ये व्हाट्सएप मिला है उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, केसु तासु, अर्णव आनंद और सत्यम आनंद का। चरोदा छत्तीसगढ़ से हमें ये व्हाट्सएप भेजा है डॉक्टर नौशाद अहमद, बेगम हमीदुन, जीशान अहमद, शाहनवाज अहमद और इनका पूरा सिद्दीकी परिवार। मजनू का टीला से कमल बालूचा, मधु बालूचा, सागर, सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। मानपुर साबित जिला मुरादाबाद से शेख जियाउर रहमान, शेख अताउर रहमान और शेख हबीबुर रहमान। ये बठिंडा से हमें व्हाट्सएप भेजा है टोनिशा, पुष्पेंद्र पाल सिंह, गाड़के नगर यवतमाल महाराष्ट्र से हमें व्हाट्सएप मिला है लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पनाताई, शैलेश, प्रतीक्षा, स्वप्निल, रक्षिता, रियांश और इनका पूरा लोखंडे परिवार। ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत, संचित वायाल, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, सर्वत देशमुख और कुमारी सानवी देशमुख। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखनर सिंह जोड़ा, सिटी दीवाना, पंखा रोड जनकपुरी से पिंटू दीवाना, राजेंद्र सिंह ओबेराय। आइए दोस्तों, अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सनगमा।
दाग द फायर फिल्म से।

दिल खोने को था, बस तेरा होने ही को था। देखा तूने तो थोड़ा सा बेकरार हुआ, बेसब्र हुआ तुझमें मुझमें होने को, बस कुछ कुछ हुआ तेरा होने को।

भाई दोस्तों, दिल कहाँ खोया है, किसका हुआ है, ये तो हम अपने दिल के बारे में बता सकते हैं। हमारा दिल तो जिससे हम बेहद मोहब्बत करते हैं उसके लिए खोया है, उसी का हुआ है। और आपके दिल की तो आप जाने दोस्तों। वैसे तो हम दोस्तों आपके दिल की भी जानते हैं कि आपका दिल आकाशवाणी हिसार के लिए

खोया हुआ है, उसके एहसास आपके दिल में है और हमारे लिए बेशुमार मोहब्बत भी है। दोस्तों, हम ये भली भांति जानते हैं और आपके लिए हमारे दिल में भी बेशुमार बेमिसाल मोहब्बत है। दोस्तों, ये मोहब्बत आकाशवाणी हिसार के लिए और हमारे लिए आप यूं ही हमेशा बरकरार रखिए। फिलहाल आप सुन रहे हैं कार्यक्रम संदेश आपके गीत, हमारी अपनी दोस्त क्षमा के साथ FM 102.3 MHz पर। तो आइए इसी बात पर सुनते हैं कार्यक्रम का अगला नगमा, जाने कैसा है मेरा दीवाना। ये नगमा हम आपको सुनाएंगे, इससे पहले हम हमारे श्रोताओं के नाम लेंगे। जी हाँ, कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से हमें ये व्हाट्सएप मिला है। ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा नवेदा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय, जीवरा हिसार से वीरेंद्र भ्याण, शमशेर भ्याण, सुरेंद्र भ्याण, मनोज भ्याण, डाकघर निम्नाबाद जिला जींद हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा, जितेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर, करमजीत कौर और इनके सभी साथी। मेरठ कैंट से हमें ये व्हाट्सएप मिला है दिग्दर्शन और कविता गोड़ का। जिला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से हमें व्हाट्सएप भेजा है मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान और मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। महाराष्ट्र से सुधाकर गायकवाड़, विकास गायकवाड़, प्रीति गायकवाड़, आशा, दीपांजलि गायकवाड़, दीक्षा बागमारे और शशांक बागमारे। जवाहरनगर दुर्ग से हमें व्हाट्सएप संदेश मिला है आरसी कांबड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कांबड़े का। हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रज़ाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान और इरफान खान। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। बहादुर गंज गाजीपुर से आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आजाद। बलहार शाह से सूरज लोंडे, प्राची लोंडे और एकलव्य लोंडे। पोफाली जिला यवतमाल से जयराम सिंगड़कर, दिशांत कुमार और अर्पिता। तहसील रोडगंज डुंडवारा से के चुराही, गुड़िया बेगम, वकील प्रेमी और हम्माद जमील। आदर्श नगर मलोड पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा और निवान शर्मा। पटियाली रोडगंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से हमें व्हाट्सएप भेजा है एम खलील कुरेशी, नुसरत बेगम, एजाद कुरेशी, आकिल कुरेशी और बीबी अरिबा हबीबा। मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा। गांव हिप्परसोगा तहसील ओसा जिला लातूर से उस्मान शेख फौजी, सायरा बानो, बाबा शेख, सिमरन शेख और करिश्मा शेख। आइए दोस्तों सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा, जाने कैसा है मेरा दीवाना, कभी अपना सा लगे कभी बेगाना।

कभी वो मुझे मेरा दीवाना लगता है, तो कभी बेगाना पागल परवाना लगता है, कभी अजनबी अनजाना लगता है, तो कभी बरसों से जाना पहचाना लगता है। पर जो भी हो, मुझे वो अपना अपना सा लगता है। दूर गगन की छांव में बैठा वो मुझे मेरा सजना लगता है।

दोस्तों, जो दीवाना होता है ना, कभी वो अपना अपना सा लगता है, कभी बेगाना भी लगता है। भाई हमारा दीवाना तो बहुत ही मोहब्बत करने वाला, सादगी पसंद इंसान है, और हम भी अपने दोस्तों से, आकाशवाणी हिसार से, आपके एहसासों से सबसे बेशुमार मोहब्बत करते हैं। अब देखिए ना दोस्तों, हम आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि हम आपके लिए बार बार चले आते हैं, लेकिन दोस्तों आप हमसे इतनी मोहब्बत नहीं करते हैं। पूछे क्यों? वो इसलिए दोस्तों कि आपका कार्यक्रम में नाम शामिल हो चुका है, फिर भी आप हमें व्हाट्सएप भेज रहे हैं, ऊपर से आप ये भी लिख रहे हैं कि आप हमें नज़रअंदाज कर रहे हैं। दोस्तों, आपकी दोस्त क्षमा आपको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर रही है, हमारी भी कुछ मजबूरियां हैं जिसे आप समझें, और हम बार बार आपसे विनती करते हैं कि आपका नाम अगर एक बार शामिल हो चुका है तो आप व्हाट्सएप ना भेजें, लेकिन फिर भी आप नहीं मानते हैं। अब इसे हम क्या कहेंगे, आपकी मोहब्बत कहेंगे या फिर कुछ और, आप समझ लीजिए क्या कहेंगे। फिलहाल आप सुन रहे हैं अपनी दोस्त क्षमा के साथ संदेश आपके गीत हमारे कार्यक्रम FM 102.3 MHz पर। तो आइए दोस्तों, कार्यक्रम का अगला नजराना आपकी नजर करते हैं आप सभी दोस्तों के नामों के साथ। जी हाँ, कुमार हेड़ा सहारनपुर से हमें ये व्हाट्सएप मिला, सैयद मसरूर, शाहिन हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम सद्दाम और अदीब हसन, ये व्हाट्सएप हमें भेजा है। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोत, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोत और अंकित कांगड़ा ने। और दोस्तों हम इनका नाम

बोल चुके हैं, फिर भी ये गायकवाड़ साहब हमें लिख रहे हैं कि आप हमें नज़रअंदाज मत करें। तो आपने कार्यक्रम अगर सुना है ध्यान से तो आपको याद आ जाना चाहिए कि आपका नाम हम बोल चुके हैं भाई। रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से हमें ये व्हाट्सएप मिला, जगमाल सिंह डांगला, हैप्पी डांगला, जी एस नायक, शोभा नायक और इनका समस्त डांगला परिवार। ये हमें व्हाट्सएप मिला है। अटार नानगढ़ छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, राहुल चांदनी और गोपी वर्मा का। ग्राम भीलखेड़ी जिला राजगढ़ एमपी से धनराज बैरागी, सीमा बैरागी, किट्टू खुशी और लक्ष्मी। चंडीगढ़ से हमें व्हाट्सएप भेजा है, शेफाली, शेफी, डेविस, विमला और सतीश अनेजा ने। ये है पद्मा टॉकीज नेपानगर एमपी से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल, नीति शाह, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकस्टो, रोजी डिकस्टो, पल डिकस्टो और विलिस डिकस्टो। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से हमें व्हाट्सएप मिला है, पीएस नाहवकर, निर्मल नाहवकर, विशाल नाहवकर। मलकापुर से नारायण इंगले, मंगला इंगले, आशीष मोहकर। और श्रोताओं, हरिनगर कुरुक्षेत्र हरियाणा से हमें व्हाट्सएप भेजा है, सुरेंद्र अग्रवाल, रोहित अग्रवाल, अंकित अग्रवाल और सुशीला अग्रवाल का। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। आइए दोस्तों सुनते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सनगमा, दामिनी फिल्म से गवाह है चांद तारे, गवाह है तेरे मेरे मिलन के अपने दीवाने बन के। आइए सुनते हैं।

तेरी मेरी दीवानगी की हद तो इस कदर बेहद थी मोहब्बत की कि चांद ने खुद कहा मुझसे कि तुम तो बस एक दूजे की मोहब्बत दास्तां अल्फाज़े कलमबद्ध कर दो ताकि कोई और तुमसे मोहब्बत कर ले।

दोस्तों, क्या चांद तारे हमारे मिलन के गवाह हैं? उनको हम गवाह कह सकते हैं दोस्तों, लेकिन हमारे मिलन के तो हम खुद गवाह हैं। हम आपसे मिल रहे हैं, आपके एहसास हमें समझ रहे हैं, और आप हमसे मिल रहे हैं, आपके व्हाट्सएप संदेश हमें समझा रहे हैं कि आपके एहसास हमारे लिए क्या हैं, क्योंकि आप लिख रहे हैं कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है। भाई दोस्तों, आपसे मिलके तो हमें भी बहुत बहुत बहुत अच्छा लगता है, और आकाशवाणी हिसार को तो आपसे मिलके उसके कार्यक्रम आप सुनते हैं तो उसकी तो बात ही क्या है। आकाशवाणी हिसार को दोस्तों आप चलाते हैं, आपके संदेश चलाते हैं, आपके एहसास चलाते हैं, आपकी मोहब्बत चलाती है। फिलहाल आप अपने दोस्त क्षमा के साथ संदेश आपके गीत हमारे कार्यक्रम सुन रहे हैं FM 102.3 MHz पर। दोस्तों, आपकी दोस्त यही चाहती है कि आपके संदेश हमें लगातार मिलते रहें, आपकी मोहब्बत हमें लगातार मिलती रहे, और हम एक नए अंदाज के साथ आगे बढ़ते रहें। तो ये मोहब्बत यूं ही बरकरार रखेगा अपने दिल में एक नए जज्बे के साथ, एक नई उमंग के साथ, अपने रूह में हमें यूं ही बसाए रखेगा। तो आइए इसी बात पर सुनते हैं कार्यक्रम का अगला नगमा। ये व्हाट्सएप मिला है हमें चौधरीवास से राजू अग्रवाल, केशव, दक्ष, विवेक, प्रियांशी, गांव टोरोवाल, नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, त्रिपदा कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी और डॉक्टर प्रशांत थांदी। डॉक्टर प्रियम थांदी, बेबी वामिका और वाणी थांदी। आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंगेल, मोर जंगेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंगेल और नंदिनी जंगेल। खमरिया जमशेदपुर से हमें ये व्हाट्सएप भेजा है विपिन जायसवाल, स्वाति, देव कुमार जायसवाल और आर्य कुमार जायसवाल ने। कंवर कॉलोनी बड़वाहा, जिला खरगोन, MP से हमें व्हाट्सएप भेजा है प्रवीण शिमाली और मीना शिमाली ने। शिवाजी चौक कटनी से अनिल ताम्रकार, अमर, दिलीप वर्मा, संजय सोनी, अरुण कन्नौजिया, पवन यादव, संजीव वर्मा, सुनील जैन, रजत रजक, लालू, सोना, मोना, हनी यश और इनके मम्मी पापा। मुंगी पैठण महाराष्ट्र से बाबा साहब कणकर, साखरबाई, परमेश्वर, रोहिणी, श्रावणी, ईश्वरी और इनका पूरा परिवार। समस्तीपुर बिहार से मीरा सिंह, ज्योति सिंह, रोहतास बिहार से सोनम सिंह और अनामिका सिंह। गांव चंद्रावल, जिला फतेहाबाद से सूरजभान कासनिया, प्रेम धवन हमें व्हाट्सएप भेज रहे हैं। और दोस्तों, गणेशपुर गंज डुंडवारा एटा उत्तर प्रदेश से हम ये नाम शामिल कर चुके हैं। संबलपुर कांकेर से फागुन राम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। आइए दोस्तों सुनते हैं कार्यक्रम का ये नगमा, फिल्म रफू चक्कर से।

मोहब्बत की स्याही से हमने दिल पर जो अल्फाज कलमबद कर डाले हैं, वो तेरी मेरी एहसासे रूह की दास्ता सरेआम कर ही देगी।

है जो मंजूरे खुदा होता है। दोस्तों, दिल अगर किसी पे आ जाता है तो मोहब्बत हो जाती है, और मोहब्बत हो जाती है तो उससे बार बार मिलने को दिल करता है, उससे बातें करने को दिल करता है, और उसके साथ घंटों बिताने का दिल करता है। यही तो दोस्तों मोहब्बत की सच्ची दास्तां होती है। अब देखिए ना, आपके साथ हमारा ये एक घंटा कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। इसी को तो हम मोहब्बत कहेंगे कि वक्त का पता ना चले और हम बार बार ये कहें कि वक्त ठहर जाए। लेकिन वक्त तो दोस्तों ठहरता नहीं है, वक्त तो हमेशा चलता है, लेकिन मोहब्बत भी कभी ख़त्म नहीं होती। अगर हमें हमारे एहसासों में किसी के लिए मोहब्बत है, अब जैसे आपके लिए हमारे दिल में बेशुमार मोहब्बत है, तो ये मोहब्बत हमारे एहसासों में हमेशा रहेगी। इसलिए हम चाहते हैं कि आपके भी एहसासों में, आपकी तमन्नाओं में, आपकी भावनाओं में हम हमेशा शामिल रहें। जैसे आकाशवाणी हिसार को आप हमेशा हर लम्हा अपने साथ शामिल रखते हैं, उसके कार्यक्रम सुनते हैं। फिलहाल कार्यक्रम आप संदेश आपके गीत हमारे सुन रही हैं FM 102.3 MHz पर अपनी दो क्षमा के साथ। तो आइए कार्यक्रम का अंतिम नजराना आपकी नजरें नायत हम करते हैं फिल्म हीरो से, क्योंकि दोस्तों आप भी हमारे लिए हीरो हो। तो आपकी व्हाट्सएप हम पढ़ते हैं इस कार्यक्रम में। सेक्टर 5 कोड़ी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर राजस्थान से हमें व्हाट्सएप मिला है। रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी और हिमांश। कस्बा अग्रवाल मंडी टटीरी बागपत यूपी से हमें ये व्हाट्सएप भेजा है। आसिफ अली खान, मोमिना नाज, मुस्कान आसिफ, सादिक अली खान और सारिक अली खान। सांगली जिले के जत शहर से अल्ताफ हुजरे, सैफुल्ला, सबाहत, किरत हुजरे और रेहान शेख। बुलढाणा वडशिंगी महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभाताई मानकर, दीपाली और श्लोक कुमार। राजूर तहसील मोताला महाराष्ट्र से राज गवई, राजवीर गवई। बावड़ी गेट भिवानी से रोशनलाल पंचेरवाल, युआन पंचेरवाल, योगेश, दीक्षा, उपासना, कुलदीप, धर्मवीर खटक, प्रेम खटक, उमेश पंचेरवाल और उपेंद्र पंचेरवाल। और दोस्तों बीएडी एमपी से हमें व्हाट्सएप भेजा हुकुम कर्मकर, सुनीता कर्मकर, हार्दिक, प्राची और तन्नू कर्मकर। पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा। आइए दोस्तों सुनते हैं आप सबकी पसंद पर ये नगमा।

मेरी जिंदगी के आशियाने में मोहब्बत ने थी, फिर भी था वो मेरे बहुत करीब मेरा हमराज बनकर। नजरें ढूंढती थी उसको कि वो मेरे दरमियां हो, मेरा हमरा बनकर। हर आहट पे मुड़ जाती थी ये सोचकर कि कहीं मेरा दिल भर तो नहीं। बस इस उम्मीद में बंद दरवाजा खोलती थी कि यहाँ तो बस मेरा जाने जाना होगा।

हम हमेशा चाहते हैं कि आप हमारे एहसासों के, हमारे दिल के हीरो यूं ही बने रहें, और हम भी चाहते हैं कि हम आपके एहसासों की, आपके दिल के मोहब्बत हमेशा बने रहें। तो इसी के साथ अपनी दोस्त क्षमा को इस कार्यक्रम संदेश आपके गीत हमारे से आज इजाज़त दीजिए। फिर से एक नए अंदाज के साथ, एक नए ख्याल के साथ और एक नई उमंग के साथ आपकी दोस्त आपके लिए कार्यक्रम लेकर हाजिर होगी। तो अपनी दोस्त क्षमा को आज अनुमति दीजिए। नमस्कार, शुभरात्रि।

श्रोताओं, अभी आप व्हाट्सएप पर आधारित कार्यक्रम संदेश आपके गीत हमारे सुन रहे थे। FM 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए श्रोताओं, हिंदी समाचारों के लिए हम आपको कुछ लम्बों बाद आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र लिए चलेंगे। उसके तुरंत बाद होंगे अंग्रेजी में समाचार। समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को निर्विरोध चुना गया।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
1: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
0: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्श पर राज्य का विकास करेगी। उधर तमिलनाडु में एनडीए गठबंधन के सहयोगी एएमएम के प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर से मुलाकात की और एआईएडीएम के महासचिव एडापाडी के पलानीस्वामी को सरकार बनाने के लिए अपना आधिकारिक समर्थन पत्र सौंपा। दिनाकरन ने राज्यपाल को सौंपे पत्र में स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी मन्नारगुड़ी से नवनिर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज के समर्थन के साथ पलानीस्वामी के दावे का समर्थन करती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि समाचार चैनलों ने यह खबर फैला दी थी कि उनकी पार्टी टीवीके का समर्थन कर रही है। उन्होंने राज्यपाल से मामले की गहन जांच करने की शिकायत की है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने उन्हें आगे की कार्रवाई का आश्वासन दिया है। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और

0: वार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए हैं। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटों के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरों पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के 5 बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालय का गठन एक महीने के भीतर किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पेरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू LPG की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुगता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2025 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में रिकर्व तीरंदाज सिमरनजीत कौर और कंपाउंड तीरंदाज साहिल जाधव व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Senior BJP leader Shubhendu Adhikari will be the new chief minister of West Bengal. BJP legislature party in the state elected him the leader in a meeting held in Kolkata today, paving the way for him to become the first BJP chief minister of the state. Addressing media, Union Home Minister Amit Shah said, Mr. Adhikari's name was proposed at the meeting and since no other nomination was received, his name was finalized.
2: अभी कुछ दिन पहले ही चुनाव की
3: इलेक्शन प्रोसेस वॉज कम्प्लीटेड जस्ट अ फ्यू डेज अगो। अराउंड 8 प्रपोजल्स एंड सपोर्टिंग नॉमिनेशंस वर रिसीव्ड एंड ऑल ऑफ देम वर इन फेवर ऑफ द सेम नेम। सफिशिएंट टाइम वॉज ऑल्सो गिवन फॉर एनी अदर नॉमिनेशन बट नो सेकेंड नेम वॉज प्रपोज्ड। देयरफॉर एज द सेंट्रल ऑब्जर्वर आई डिक्लेयर शुभेंदु अधिकारी एज द इलेक्टेड लीडर ऑफ द वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव पार्टी।
2: विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: Mr. Shah expressed gratitude to the people for giving a strong verdict to the BJP despite numerous instances of violence and brutality. Mr. Shah further said that the expectations of the people of Bengal have placed on them and the mandate that they have given with hope and trust, they will make every effort to ensure that their faith is not broken in any way. Addressing the meeting, the Chief Minister Designate Shubhendu Adhikari said, Whatever guarantees have been announced by Prime Minister Narendra Modi, the BJP government in the state will fulfill all responsibilities. Tomorrow morning, the oath-taking ceremony of the government will be held at the Brigade Parade Ground. In Tamil Nadu, the uncertainty over formation of government under TVK Chief C. Joseph Vijay continues. The new twist came as IUML has rejected the reports of its support to TVK to form the government. In another development, reports are also coming in that the swearing-in ceremony, which was to take place tomorrow, will not be held. Earlier, TVK had claimed that the actor-turned-politician is all set to form the government, as he again met the governor today and staked claim to form the government, saying that he has majority numbers. Meanwhile, the Indian Union Muslim League, headed by Professor Khadir Mohiddin, has said that his party has not given a letter of support to Tamil Raghavetri Karagam or TVK. In another surprise move, AMMK party leader TTV Dinakaran, a partner in the NDA alliance, has approached the Governor Vishwanath Arlekar late evening and submitted a letter of support from lone MLA S. Kamaraj from Manarugudi for AIADMK General Secretary Edappadi K. Palaniswamy to form the government. Meanwhile, National Democratic Alliance Chief Ministerial Candidate N. Rangasamy met Lieutenant Governor K. Kailashanathan and staked claim to form the next government in Puducherry. Mr. Rangasamy handed over letters of support from majority of MLAs to the Lieutenant Governor. NDA Alliance MLAs and Alliance leaders accompanied him.